वो सब चीज़ें और वो बहुत सारी बातें मेरे पास हैं यहाँ पर आज इस शो में करने के लिए। साथ में स्पोर्ट्स अपडेट, दुनिया में क्या हो रहा है, मौसम के क्या हालचाल हैं, न्यूजीलैंड में कुछ नया हुआ है कि नहीं, और नहीं हुआ है तो भाई कुछ ना कुछ तो हम करते ही रहते हैं। ये सारी बातें और प्यारे प्यारे गाने आपके लिए बैक टू बैक।

उदित नारायण, अलका याग्निक की आवाज़ में सुन रहे थे आप ये बहुत ही खूबसूरत सा गाना फ्रॉम द मूवी लगान, जहाँ पर मेन स्टोरी जो है वो तो चली रही है और साथ में आमिर खान जो हैं वो सुपरस्टार हैं, फिर से शादी करने जा रहे हैं। इसके बारे में भी यहाँ पर कुछ बहुत फनी कॉमेंट्स में पढ़ रही हूँ इन दिस व्लॉग। बट रिसेंटली मुझे पता चला कि जब ये मूवी शूट हो रही थी इन 2001 भुज में, वहाँ पर बघा का जो कैरेक्टर है वो अमिन हजी जी ने प्ले किया था, और शार्लेट वाज द सिस्टर ऑफ जेमी जो कि कास्ट किए गए थे एज वन ऑफ द ब्रिटिश क्रिकेटर्स। और इन दोनों के बीच में ड्यूरिंग द शूटिंग ऑफ लगान एक बहुत ही प्यारी सी लव स्टोरी शुरू हुई है, एंड दे शुरू ही नहीं हुई, मुकाम तक पहुंची, उन्होंने आगे चल के शादी करी, एक क्रॉस कल्चरल मैरिज यहाँ पर देखने को मिला। और उसके बाद शार्लेट जो है वो इंडिया मूव हो गई, हिंदी सीखी, अभी इनकी दो डॉटर्स हैं भाई। तो बैकग्राउंड में एक रियल स्टोरी चल रही थी वाइल दिस मूवी वॉज बींग शॉट इन भुज।

0: Playing Bollywood's biggest hits.
1: वो दिन जब मोहब्बत खतों में होती थी।
2: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज ना

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: PFSL, providing the best home loan advice for the last 20 years. Google PFSL today. Amma's Food, 100% authentic and pure as mother's love. And Indelible Homes, your building experts known for subdivisions. Visit indelblehomes.co.nz.
1: तो बढ़ते हैं कुछ फुटबॉल अपडेट्स की तरफ, जहां पर एकदम घमासान मैच जो है ये चल रहा है बा और नसीनो के बीच में. दिस मैच हैज़ रीच्ड हाफ टाइम. बा इज़ लीडिंग 3-0 का अभी स्कोर चल रहा है, और भी बाकी आज बहुत सारे मैच अलाइन हैं. एंड कीप हमिंग अलोंग, क्योंकि यहां पर आपके लिए हम बराबर अपडेट्स जो हैं वो लेकर आते रहेंगे.

0: कुमार सानू एंड अलका याग्निक अगेन बहुत ही प्यारा डियो है, और साथ में ये जो गाना है इस मूवी के बहुत सारे पार्ट्स जो हैं वो न्यूजीलैंड में शॉट किए गए थे, और ये जो गाना है स्पेसिफिकली इट वाज शॉट इन न्यूजीलैंड। और अगर आप देखो, और अगर आपने जब भी देखा, अगर देख के मैनिफेस्ट किया, तो आज अगर आप बैठ के सोचते हो कि हम क्यों न्यूजीलैंड में हैं, और कभी खुश होते हो कभी दुखी होते हो इस चीज़ को लेकर, क्या पता आपने उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त प्रोमैक्स मैनिफेस्टेशन किया था यार, कि लाइफ में एक बार तो इस जगह पे जाना है। क्या ऐसा आपके साथ हुआ है, और हुआ है तो मुझे ज़रूर बताएं 5599 पर।
1: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
2: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं।
1: हम

0: Scan your Everyday Rewards card at Woolworths, Fresh Choice, BP, Gas, Petstock and Milk Run by Sunday, June 21st to get 2x points on your total spend. See everydayrewards.co.nz for T's and C's.
1: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
2: दादी के हाथ की चूरी हो या माँ के हाथ के पराठे, सबका फेवरेट हलवा हो या तवे पे फूली हुई रोटी, हर याद में बसी है कशिश चक्की फ्रेश आटा की वही मीठी खुशबू जो दिल भी जोड़े रिश्ते भी। Eat better, live better now with Kashish Chakki Fresh Atta and Multigrain Atta. Available in all leading stores nationwide. www.kashishfoods.co.nz.
3: अरे सुनो, मुझे इस डोसा बैटर के साथ फ्री कंटेनर मिला।
4: फ्री कंटेनर तो अच्छा है, लेकिन डोसा कैसा था?
3: डोसा तो ठीक ही था, लेकिन कंटेनर देखो कितना अच्छा है।
4: फ्री गिफ्ट्स लोग भूल जाते हैं, असली टेस्ट के लिए ही वापस आते हैं। इंट्रोड्यूसिंग द न्यू चटनी रेंज फ्रॉम अम्मास फूड, ट्रेडिशनल कोकोनट टैंगी टोमेटो और क्रंची पीनट चटनी, परफेक्ट विद अम्मास इडली और डोसा बैटर। अम्मास फूड 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव, नाउ अवेलेबल एट ग्रोसरी स्टोर्स नियर यू।
5: Karan Aujla brings his P-pop culture world tour to New Zealand. Auckland, Spark Arena, this August. Tickets at livenation.co.nz. Don't miss Karan Aujla Live.

0: Just chill.
1: वेलकम बैक, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, किया ओरा, क्या हाल चाल आपके. यहाँ मैं रक्षा आज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ. 6 बजे तक आपका और मेरा जो सफ़रनामा है वो यहाँ पर चलता रहेगा. इस घंटे की शुरुआत करने वाली हूँ मैं एक बहुत ही प्यारे से गाने के साथ, जिसमें कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ है अलॉन्ग विथ सोनू निगम. ये गाना है फ्रॉम द मूवी पुकार, जिसमें अनिल कपूर अलॉन्ग विथ दी आइकॉनिक एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित जी जो हैं वो मौजूद हैं. अभी बात यह है कि माधुरी दीक्षित जो हैं ये अभी छाई हुई हैं, हमेशा से छाई हुई थी, बट अभी रिसेंटली मैंने उनकी मूवी देखी नेटफ्लिक्स पे, माँ बहन. भाई बहुत ही मज़ेदार सी मूवी है, समथिंग डिफरेंट. इसमें माधुरी दीक्षित हैं, तृप्ति दिमिरी हैं, और साथ में अगर आप इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करते हैं तो वेरी फेमस डिजिटल क्रिएटर धारणा दुर्गा, जो कि मुझे बड़ी प्यारी लगती हैं, वो भी हैं इस मूवी में. इट्स अ डार्क क्राइम कॉमेडी. अगर आप आज बैठ के सोच रहे हो कि 6 बजे के बाद क्या करें आज शाम को, व्हेन द मंडे ब्लूज़ विल बी हिटिंग ऑल ऑफ अस हार्ड, तो ये मूवी जो है ये आप ज़रूर देख सकते हैं.

0: कहते हैं किसी चीज को अगर दिल से चाहो तो सारी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। अभी क्या हुआ है कि ये तो एक बॉलीवुड का मूवी डायलॉग था, एक्चुअली लाइफ में भी अगर आप किसी चीज़ को बड़े दिल से चाहो, उसकी तरफ 100% लगाओ, तो बहुत हाई चांसेस होते हैं आपके पास कि आपको वो चीज़ मिल जाती है। लेकिन अभी क्या है ना, माँ बाप ने भी ये स्टेटमेंट पकड़ लिया है। तो अगर आपके साथ कभी कुछ ऐसा हो रहा हो जो आप इग्नोर कर रहे हो करना, लेकिन आपके माँ बाप चाहते हैं कि आप वो चीज़ करो, तो दे कैन ऑलवेज ब्रिंग अप दिस बॉलीवुड का बहुत ही प्यारा सा डायलॉग कि भाई तुम 100% चाहो तो पहले तब जाकर होगा। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? वैसे यहाँ पर मेरे पास बहुत ही प्यारे प्यारे मैसेजेस हैं जहाँ पर मैंने पूछा था क्या आपने कभी न्यूजीलैंड आके रहना या घूमने आने के लिए मैनिफेस्ट किया था अपनी लाइफ में, लुकिंग इनटू ऑल दोज ब्यूटीफुल मूवीज़ फ्रॉम बॉलीवुड या फिर फ्रॉम द साउथ जो कि शॉट हुए हैं न्यूजीलैंड में। तो यहाँ पर बड़े प्यारे प्यारे मुझे मैसेजेस आए हैं कि हाँ, उन्होंने मैनिफेस्ट किया था और अब जो भी है दे आर वेरी हैप्पी लिविंग इन न्यूजीलैंड। इट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल प्लेस। और आगे चल के ऐसे ही आपका और मेरा साथ जो है यहाँ पर बना रहेगा। नाम है मेरा रक्षा, आपके साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ शाम 6 बजे तक।
1: बॉलीवुड के सबसे बड़े हिट गाने
2: कभी भी कहीं भी। Keep calm because Punjabi swag is on.

0: idea.
1: Streaming on Rover.
2: रेडियो पे गानों की फरमाइश की जा सकती है, अपनों के नाम संदेश भेजे जा सकते हैं, मगर रेडियो पे अपने ट्रेडिशन की खुशबू भेजनी हो तो नहीं भेज सकते ना। उसके लिए अपनों को खाने पे बुलाएं, रिश्तों को और करीब लाएं। कशिश प्रीमियम बासमती राइस, ईट बेटर लिव बेटर। फ्रॉम मोर इन्फॉर्मेशन लॉग इन टू www.kashishfood.co.nz Available at all leading stores.
3: Want to go halvesies with Mercury? Just sign up for electricity and add broadband, mobile or both, and we'll give you 50% off your monthly broadband and mobile plan for 12 months. Terms and eligibility apply. Broadband availability may vary. Mercury, bring the buzz.
4: Get a $100 digital Visa card with AMI. Buy a new comprehensive car policy online before the end of September. Visit ami.co.nz. T's and C's apply. AMI. On your side.
5: It's the final days of Big Save's Save Big Sale. Get New Zealand's best value furniture and beds and save big today. Save big on lounge suites. Lounge suites now from $19.99. Save big on beds. Get the snow bed. Queen, king or super king, only $9.99. Save big on recliners. Get two recliners for $6.99. Plus get a massive 30 months interest-free store-wide. TCs and credit criteria apply, only at Big Save.
6: And फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है।
7: हाँ, अच्छा?
6: बताओ, तो आड़ा फोकस फोकस, साड़ा कुछ नहीं।
7: मिसेस सिंह।
8: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने।
9: मॉडर्न क्लासिक शेकर स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू। कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz।
10: Big news for tradies and businesses right now at LDV. Get free accessories, fuel vouchers, sharp finance offers and deals across our range. LDV, built tough, priced right. Visit ldv.co.nz to find out more. Terms and conditions apply. Offers end 31st July while stocks last.
11: Shop jaw-dropping 60% off winter busters and peak store-wide savings at Briscoe's massive midwinter sale. Get out of the cold and snap up winter's hottest savings. Sale ends Monday at Briscoe's. See online for T's and C's.
12: Non-stop Bollywood. Playing Bollywood's biggest hits.
13: Just chill.
14: वेलकम बैक। हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स पे, मैं रक्षा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और देखते हैं हमारे पॉडकास्ट सेक्शन में इस बार क्या नया लेकर आए हैं आपके लिए सैंडी और रुज़्बे इन अनफिल्टर्ड। तो यहाँ पर बात हो रही है निवेदिता विज के साथ, हु एंड देयर इज अ डिस्कशन अराउंड थैलेसीमिया एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द साउथ एशियन कम्युनिटी। तो इस पॉडकास्ट को अगर आप सुनते हैं तो ये कुछ फॉलोइंग चीज़ें हैं जिसके रिगार्डिंग आपको थोड़ी क्लैरिटी आएगी। एक सिंपल स्क्रीनिंग जो है वो फैमिली का फ्यूचर चेंज कर सकती है, तो तब तक इंतज़ार ना करें जब तक कि ये बहुत ज़्यादा देर हो जाए। साइलेंट कैरियर्स द हिडन जेनेटिक थ्रेट फेसिंग साउथ इंडियन फैमिलीज़ जो है, अगेन अगर आप जितना अर्ली आप जाओगे और पता लगाओगे, स्क्रीनिंग कराओगे, उतना बेटर होगा। अर्ली थैलेसीमिया स्क्रीनिंग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है बिकॉज ये एक वाइटल चीज़ है जिसको एड्रेस करना हर हाउस होल्ड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड वाई आर साउथ एशियन पीपल, और ये सबसे मुद्दे की बात है, एट हायर रिस्क फॉर थैलेसीमिया। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये आपके लिए यहाँ पर आउटलाइन किए गए हैं, तो ज़रूर ज़रूर जाकर जो है इस पॉडकास्ट को सुने। मैं भी आज इसको सुनने वाली हूँ। टाइप करें ड्राइव और इसे भेज दें 5599 पर।

जेन जी जो है बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है. आई थिंक पिछले एक साल से हम जेन जी के तरीकों के बारे में बहुत बात कर रहे हैं. अभी कॉकरोच जनता पार्टी भी इंडिया में शुरुआत जिसकी हो चुकी है. अभी मैं इस पार्टी के न्यूज़ को इतना फॉलो नहीं कर रही हूँ, बट यहाँ पर एक मैंने बहुत ही अच्छा आर्टिकल पढ़ा अबाउट हाउ फॉर जेन जीज़ लाइफ डजन जस्ट हैपन ऑफलाइन बट साइमल्टेनियसली ऑन स्क्रीन्स भी एक स्पेस जो है जहाँ पर आइडेंटिटी को एक्सप्लोर किया जा रहा है, एक्सप्रेस किया जा रहा है एंड रीडिफाइन किया जा रहा है. दिस इज़ नॉट समथिंग रैंडम दैट दे आर डूइंग. बहुत ही अच्छा रैंडम कलेक्शन ऑफ मोमेंट्स सिर्फ ये नहीं शो कर रहे हैं, बट इट्स अ वेरी केयरफुल क्राफ्टेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ देयर पर्सनैलिटीज, लाइफ स्टाइल, वैल्यूज. तो जो भी एस्थेटिक चॉइसेस हैं, कैप्शंस हैं, इवन अगर दे आर साइलेंट रिगार्डिंग समथिंग ऑन अ सर्टेन इशू, दैट इज सेंडिंग सिग्नल अबाउट हु समवन इज.

0: में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है, लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rowa.nz पर सुने।
1: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
2: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
1: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800-46-26-26 today.
2: Available at selected branches. T's and C's apply.
3: Turn winter into progress at Rebel Sport. Save up to 40% on selected Nike, New Balance and Puma. From training gear to winter layers, score epic savings on some of the biggest brands in sport. Hurry, these deals and more only at Rebel Sport. See online for T's and C's.
4: Beating pump prices is easy when you take a bus and you won't even have to wait long. There are 45 bus routes around Auckland that run at least every 15 minutes from 7 a.m. to 7 p.m. 7 days a week. And a whole bunch that keep running till midnight with reduced frequency, so you can spend your money on a night out instead of just getting there. Chances are, there's a frequent or late night bus that's going your way. Check the AT Journey Planner, then just turn up and go.
5: The King Living Winter Sale is on now. Save up to 50% on Australian-designed, award-winning furniture. Come home to the future of furniture. Come home to King. Sale on now. Shop online or visit a King Living showroom today.
6: बाढ़ किसी वक्त भी आ सकती है। क्या आप तैयार हैं? बारिश शुरू होने का इंतजार ना करें। गटरों को साफ रखें। खुली चीजों को बांध लें। अपने परिवार की सुरक्षा के लिए इमरजेंसी प्लान तैयार रखें। अभी की गई तैयारी बाद के तनाव से बचा सकती है। तूफान से आगे रहें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। अधिक जानकारी के लिए विजिट aucklandemergencymanagement.govt.nz/floods।
7: वो इनडेलिबल होम्स वाली कहानी सुनाओ ना।
8: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year Master Builder Guarantee, awards pour in.
9: Award goes to Indelible Homes.
8: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favourite Master Builder.
0: Kahani of Indelible Homes.

0: Just chill.
1: वेलकम बैक. यहाँ पर बहुत ही मजेदार सा आफ्टरनून संडे का शो लेकर मैं रक्षा आपकी खिदमत में हाजिर हो चुकी हूँ. और कुछ ही दिन पहले, चार दिन पहले, दी आइकॉनिक, दी लेजेंडरी एंड माई मोस्ट फेवरेट गुलजार साहब जी का बर्थडे था, जहाँ पर मैंने कुछ जी बहुत मज़ेदार से बट आई वॉज जस्ट गोइंग थ्रू हिज वर्क एंड द कलेक्शन. और बहुत ही अच्छा इन्होंने अर्ज़ किया है, फरमाया है, तेरे बदलने का दुख नहीं है मुझको, तेरे बदलने का दुख नहीं है मुझको, मैं तो अपने यकीन पर शर्मिंदा हूं. मतलब क्या बात करते हैं यार, क्या बात करते हैं. तुम लौट कर आने की तकलीफ मत करना, हम एक ही मोहब्बत दो बार नहीं किया करते. मतलब ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल. सो आई एम अ बिग फैन कि आप भी

0: Men.
1: Unfiltered with Sandy and Rizvi. क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished Instagram friendly stories हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं. यहाँ कहानियाँ होती हैं raw, emotions होते हैं real और conversations होते हैं बिना mask के.
2: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ आते हैं.
1: Unfiltered with Sandy and Rizvi on Rowa, Spotify or anywhere you get your podcast.
3: रेडियो पे गानों की फरमाइश की जा सकती है, अपनों के नाम संदेश भेजे जा सकते हैं, मगर रेडियो पे अपने ट्रेडिशन की खुशबू भेजनी हो तो नहीं भेज सकते ना. उसके लिए अपनों को खाने पे बुलाएं, रिश्तों को और करीब लाएं. कशिश प्रीमियम बासमती राइस. ईट बेटर, लिव बेटर. फ्रॉम मोर इन्फॉर्मेशन लॉग इन टू www.kashishfood.co.nz. अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स.
4: Absolutely everything is on sale at Freedom. Get up to 60% off absolutely everything. Plus, take an additional 10% off for a limited time. Hurry, sale must end soon. Only at Freedom.
5: Imagine waking up a millionaire. Powerball's mid-year millionaire promotion is on now. For your chance to win one of three $1 million prizes, get a triple dip at your local Lotto NZ store or online. Prizes drawn Saturday 4th of July. T's and C's apply.
6: At Kogan Mobile, we want to help Kiwis experience mobile.

वेलकम बैक। दोपहर के 2 बज चुके हैं और आप हम अलॉन्ग कर रहे हैं मेरे यानी रक्षा के साथ ओनली ऑन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स। थोड़ी टाइम पहले मैं बात कर रही थी दी आइकॉनिक दी लेजेंडरी एंड समवन आई टोटली अडोर गुलजार साहब जी के बारे में, जिनका बर्थडे हमने लास्ट वीक सेलिब्रेट किया है। और बहुत प्यारा लिखते थे, बोलते थे, गाते थे, जो भी एग्जिस्टेंस ही बहुत ज़्यादा सॉलिड थी इनकी। और इनका कहना ये था कि मिलता तो बहुत कुछ है ज़िंदगी में, गौर फरमाइएगा, मिलता तो बहुत कुछ है ज़िंदगी में, बस हम गिनती उन्हीं उसी की करते हैं जो हासिल ना हो सकता है। भाई ये बहुत ही एकदम फैक्ट है, ये लाइफ का बहुत बड़ा फैक्ट है कि और जब जो चीज़ मिल जाती है फिर उसकी उतनी कदर भी नहीं रहती, फिर हम नेक्स्ट, वो कहते हैं ना, ग्रास इज़ ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। बढ़िया, क्या लेजेंड है ये, मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। और ऐसी बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें और प्यारे प्यारे गाने मैं आपके लिए लेकर आने वाली हूँ इस घंटे भी। स्टे ट्यून्ड।

घोस्टिंग एक ऐसा टर्म है जो मिलेनियल्स के साथ भी बहुत ही कॉमन है, जेंजी अल्फा जहां पर भी है। घोस्टिंग को जनरली काफ़ी खराब वे में देखा जाता है, बट यहाँ पर मैं एक लड़की के बारे में पढ़ रही थी जिसने एक आर्टिकल लिखी है अराउंड हाउ घोस्टिंग अ फ्यू पीपल इन हर लाइफ क्रिएटेड सम बैड रिप्यूटेशन, बट साइकोलॉजिकली जो है वो बहुत अच्छा फील करने लगी एंड इट फेल्ट लाइक अ सेल्फ प्रोटेक्शन प्रोटेक्टिव फंक्शन फॉर हर सेल्फ। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको थोड़ा बैलेंस कर सकते हैं, मतलब जरूरी नहीं कि आप घोस्ट करो, बट मे बी यू कैन हैव अ कन्वर्सेशन या फिर सिलेक्टिवली इग्नोर किया जा सकता है। बट आजकल मैं इधर आई थिंक लास्ट एक महीने में मैंने काफ़ी सारे पॉडकास्ट और आर्टिकल्स ऐसे पढ़े हैं जहाँ पर आजकल जो लोग हैं बीइंग मिलेनियल्स हो जाएं जेंजी हो जाएं, एवरीवन वांट्स टू कीप देयर ह्यूमन इंटरेक्शन टू द पॉइंट। ज़्यादा किसी को इंटरटेन करना, ज़्यादा लोगों के से क्वेश्चन पूछना या उनसे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको आंसर करना आजकल की जो दुनिया में लोग हैं ये पसंद नहीं कर रहे हैं जैसा पहले किया जाता था। अगर आपको याद है हमारी फैमिलीज़ में ग्रोइंग अप जो भी सवाल जिसका जो मन में आता था वो सवाल करता था, आप इरिटेट हो या नहीं हो लेकिन आंसर तो आपको करना ही करना है। तो दिस इज़ दैट अदर टाइम्स जब एक्चुअली घोस्टिंग को एक सेल्फ प्रोटेक्टिव मेकानिज़म के जैसा देखा जा रहा है साइकोलॉजिकली, एक अच्छे मेंटल हेल्थ के लिए लोग आजकल ये कर रहे हैं। तो एज एन ऑडियंस आपको क्या लगता है, अगर आप मुझे सुन रहे हैं कि दिस इज़ समथिंग विच शुड बी डन, दिस इज़ समथिंग विच इज़ एक्चुअली गुड फॉर अस, या फिर इससे क्या होता है आपकी रेजिलियंस चली जाती है और आप चीज़ों को सिर्फ इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हो, इसका एक अलग अगर आप एंगल देखो तो ये भी है, मुझे ज़रूर बताएं आपके नाम के साथ 5599।

0: driving you home? The Drive Show with Sandy and Rusby.
1: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
2: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
3: वो भी आई लव यू वाला।
2: मैडम ने पकड़ लिया भी, यहाँ पे किसने बनाया? वो एक लड़की थी, वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा।
3: अच्छा आप दिलजीत हो?
2: आए आए बताओगे यार।
0: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
4: Sydney is on sale now at Flight Center. Experience iconic attractions, harbour views and savings of up to $500 on Sydney City stays. Book online or in store today. T's and C's apply. Flight Center, your center for travel.

इफ यू आर समवन जो कि क्लासिक गुजराती ह्यूमर में इंटरेस्टेड है या अगर आपने अभी तक देखा नहीं है तो आपको जरूर जाके देखना चाहिए बिकॉज यहाँ पर नी एक्सचेंज ऑफर स्टारिंग द लेजेंडरी सिद्धार्थ रांदेरिया गुज्जू भाई प्रोडक्शंस जो है ये होने वाला है ऑन फ्राइडे द 3rd of July एट 7:30 PM विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर में। आपको बस मैं बता देना चाहती हूँ कि इसके टिकट्स जो हैं इसको लास्ट मिनट नहीं छोड़ने का, ये बहुत ही जल्दी जो है ये बिक जाते हैं। दिस इज़ अ शो फॉर द होल फैमिली, तो आप अपनी पूरी फैमिली को ले कर जा सकते हैं इस गुजराती ह्यूमर को वॉच करने के लिए। टिकट्स आपको मिल जाएंगे premiertickets.co.nz पर।

जसलीन रॉयल हर्षदीप कौर की आवाज कैटरीना कैफ है इस गाने में, जो जिन्होंने बहुत ज्यादा वेट लूज किया था जब वो इस गाने को शूट कर रही थी, बिकॉज शी वॉज गोइंग थ्रू अ ब्रेकअप फेज। तो भाई स्टार्स के साथ भी ऐसा होता है, एवरी वन इज़ अ ह्यूमन एट द एंड ऑफ द डे। यहाँ पर बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें हम जो हैं कर रहे हैं, मतलब मैं और आप कर रहे हैं, आपके प्यारे प्यारे मैसेजेस भी मुझे आ रहे हैं। अगर आपके घर में एनिवर्सरी है, बर्थडे है, बातचीत करना चाहते हैं, बस हाई बोलना चाहते हैं, आप मुझे एक टेक्स्ट सेंड कर सकते हैं 5599 पे। आगे चल के हम बातें करेंगे हाउ टू अडैप्ट इन इन द लाइफ स्टाइल और कल्चर वी हैव इन न्यूजीलैंड। बाई चांस अगर आप एक स्टूडेंट हैं जो कि अभी हाल फिलहाल में न्यूजीलैंड में आए हैं, या फिर आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ माइग्रेट हुए हैं, क्या चीज़ें हैं, कैसे यहाँ का मौसम बदलता है, कैसे यहाँ पर पार्टीज़ जो हैं इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, किस तरीके से यहाँ पे आप वर्क लाइफ बैलेंस, देखो अभी बैलेंस है नहीं मेरा इसीलिए कल्चर निकल के आया, वर्क लाइफ बैलेंस आप मेंटेन या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, इसके बारे में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स एंड बातें मैं लेकर आऊँगी आपके लिए। स्टे ट्यून्ड।

0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: पूरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे.
2: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर.
3: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप. West side है ना, west side of Auckland है ये. We have lots of fun basically with the cold weather.
2: कौन है?
3: Hunua और Waitakere.
2: अच्छा, Hunua west में.
3: किधर है Hunua?
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
4: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels everyone, big or small. Bring home the fortune.
0: Weekdays, 6 to 10 a.m.
5: At Bunnings, you know you're going to get the lowest prices every day. Because where you find a competitor's lower price on the same in-stock item, we'll beat it by 15%. Conditions apply. See website for details.
6: Bunnings Warehouse.
5: Lowest prices are just the beginning.
7: A lot of injuries happen on the weekend, so if you're out and about, or just out in the backyard, have a and ask yourself, if you get hurt, who gets harmed? Find out more at acc.co.nz.
8: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111.
9: Indelible Homes, your building expert.
10: From friends to lovers to chaos. Get ready for a crazy ride. Cocktail 2, starring Shahid Kapoor, Kriti Sanon and Rashmika Mandanna.
11: कोई भी रिश्ता जब नया होता है ना, exciting होता है क्योंकि वो नया होता है.
12: सब अपनी अपनी expiry date के साथ आता है. और expiry date के बाद तो दवा भी जहर बन जाती है, right?
10: Cocktail 2, now showing in cinemas. Distribution partner Forum Films. Rating TVC.
13: This dry July, do something good for yourself and for others. Go alcohol-free for 31 days and raise funds for Kiwis affected by cancer. Do good, feel good. Go dry this July. Sign up now at dryjuly.co.nz.
0: The beat of Bollywood.
14: World's best, hamari koi branch nahi hai.
15: वेलकम बैक. मैं रक्षा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ. एंड एज अ स्टूडेंट जब मैं न्यूजीलैंड में आई थी आज से तकरीबन 8 साल पहले, किसी ने मुझे नहीं बताया था कि यहाँ ऑकलैंड में, न्यूजीलैंड में, एक दिन में 4 मौसम देखने को मिलते हैं. तो मी इन माई बेस्ट आउटफिट विथ माई हील्स ऑन, जैसा मैं बैक पहले दिल्ली में रहती थी, मैं वैसा ही ट्रैवल करके कॉलेज जाना शुरू करी. एंड उसके बाद तूफ़ान, बारिश, सब कुछ होनी शुरू हो गई. तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं, अगर आप अपनी फैमिली के साथ न्यूली माइग्रेट हुए हैं, पहला चीज़ प्लीज़ राइट इट डाउन, यहाँ का जो वेदर है बहुत नॉटी है एंड बहुत अनप्रडिक्टेबल है. सो हमेशा ड्रेस अप लेयर्स में करें, और एक वाटर प्रूफ जैकेट अगर आप कैरी करेंगे, इवन इफ़ द मॉर्निंग इज़ लुकिंग सनी, तो वो एक गोल्ड क्या बोलते हैं, मैं आपको एक गोल्ड सजेशन दे रही हूँ यहाँ पर. इसके अलावा एक चीज़ और याद रखना, अगर आप एक माइग्रेंट हैं और आप फर्स्ट टाइम न्यूजीलैंड में आए हैं, काम काम काम तो होता रहेगा, बट द ब्यूटी अबाउट दिस प्लेस इज़ दैट यू ऑल्सो नीड टू स्ट्राइक अ बैलेंस, बिकॉज देर इज़ अ लॉट टू सी. देर इज़ अ लॉट टू सी. अभी मुझे ऐसा लगता है कि इतने साल जो मैं न्यूजीलैंड में रही हूँ, अभी भी कितना कुछ है देखने के लिए. हर 5-10 मिनट में एक नई खूबसूरत सी चीज़ यहाँ पे पॉपअप हो जाती है, बट अब उसको देखने के लिए टाइम निकालना पड़ेगा. और अगर आप सिर्फ काम काम और काम करते रहेंगे तो फिर टाइम कैसे निकलेगा. सो अ वर्क लाइफ बैलेंस, दो इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव प्लेस टू लिव, कॉस्ट ऑफ लिविंग काफ़ी हाई है, वो भी मैनेज करना है. तो यहाँ पर लाइफ स्टाइल का मेन फोकस होता है, बहुत हैवी फोकस होता है ऑन वर्क लाइफ बैलेंस. तो वो आपको थोड़ा करना पड़ेगा ताकि आप एक्सप्लोर कर सकें यहाँ के लोकल बीचेस, पार्क्स एंड द रीजनल हाइक्स.

वेलकम बैक। दोपहर के 3 बज चुके हैं। संडे बहुत ही जल्दी बीत रहा है हमेशा की तरह, और मंडे की तरफ जो है फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली हम बढ़ते जा रहे हैं। बट समय तो बढ़ेगा, समय तो जल्दी ही निकलने वाला है, इसको हम रोक तो सकते नहीं हैं। लेकिन हम बहुत दूसरी चीज़ें कर सकते हैं, आप और मैं यहाँ पर बातचीत, प्यारे प्यारे गाने, टू यू नो जस्ट बी रेडी जो आगे आने वाला है। एनीवेज, यहाँ पर आपके लिए मैं कुछ वेदर अपडेट्स लेकर आई हूँ फॉर दिस कमिंग वीक। आज जैसा कि धूप छाँव लगा हुआ है, साथ में बारिश हो रही है, सो दिस कमिंग वीक इज़ ऑल्सो नॉट लुकिंग ग्रेट इन टर्म्स ऑफ लाइक अ वेरी सनी वीक। तो मंडे सोमवार जो है आइसोलेटेड शावर्स रहेंगे, लेकिन बीच में थोड़ा क्लियर अप होगा जहाँ पर धूप और छाँव बीच बीच में आपको और मुझे देखने को मिलेगी, जैसी कि हमारी ज़िंदगी है। मैक्सिमम टेम्परेचर 16, मिनिमम 9। मंगलवार भी कुछ ऐसा ही रहने वाला है, और साथ में बुधवार और थर्सडे बृहस्पतिवार जो है, इस दिन तो आप भूल जाएं इस बार सन को देखना, बस चुपचाप अगर ऑफिस डे है आपका ऑफिस में काम करते रहेंगे, बाहर सिर्फ बारिश बारिश और बारिश होने वाली है और बहुत सारी ठंड होने वाली है। बट वॉकिंग इनटू द वीकेंड, इट लुक्स लाइक कि जो आगे आने वाला वीकेंड है ये हमारे लिए सनी होने की संभावना है। सो आई एम ऑलरेडी लुकिंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट वीकेंड। आपका क्या कहना है?

0: लव स्टोरी आप जरूर हेट कर सकते हैं, लेकिन प्यार जो है इसको कैसे कोई हेट कर सकता है? लव इज द मतलब आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इमोशन वी फील, राइट? एनीवेज इस इमोशन से बाहर आते हैं और दूसरे इमोशन की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर फुटबॉल में नासिनो और बा के बीच में मैच हो रहा था, फीजी एफ ए कप की हम बात कर रहे हैं, और यहां पर बा जो है इसने क्लीन विन जो है ये एस्टैब्लिश करी है, 6-0 का फाइनल स्कोर रहा है। और साथ में ये बताना चाहती हूँ कि इसके बराबर अपडेट्स, स्कोर के अपडेट्स और क्या हो रहा है, सारे स्पोर्ट्स के अपडेट आपके लिए हम बराबर लेकर आते रहते हैं ओनली ऑन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स।
1: फुटबॉल अपडेट्स ब्रॉट टू यू बाय PFSL, प्रोवाइडिंग द बेस्ट होम लोन एडवाइस फॉर द लास्ट 20 इयर्स। गूगल PFSL टुडे।

0: brought to you by PFSL, providing the best home loan advice for the last 20 years. Google PFSL today. Amma's Food, 100% authentic and pure as mother's love. And Indelible Homes, your building experts known for subdivisions. Visit indelibleHomes.co.nz.
1: देखते हैं फुटबॉल में आज क्या चल रहा है. जैसा कि मैं आपके लिए ऑलरेडी अपडेट्स लेकर आ रही हूँ, मैच जो नसीनू और बा के बीच में चल रहा है, साथ में सुवा और नावुआ भी आज आमने सामने हैं. लंबा सा रेवा जो है ये आमने सामने होने वाला है. ग्रुप ए के ये मैचेस हैं. साथ में 5 बजे शाम को नादरोगा एंड लोतोका जो है ये भी आज आमने सामने आने वाले हैं. इनके सारे बराबर अपडेट्स मैं आपके लिए लेकर आती ही रहूँगी. ओनली ऑन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स.

0: के दिन चाहे 20 को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी। बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशन, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव कॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755। मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम।
2: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
1: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
2: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
1: और दैट्स नॉट गुड। हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
3: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111। रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 years.

गुरु रंधावा एंड निकिता गांधी की आवाज में है ये गाना. एंड आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस ब्यूटिफुल विंटर जिसकी शुरुआत हो जाती है मंथ ऑफ जून में. काफ़ी चिल सा माहौल चल रहा है. बट इसमें एक चीज़ जो आप और मैं देखना पसंद करते हैं दैट इज़ विंटर लाइट्स, जो कि बहुत मज़ेदार सा यहाँ होस्ट होता है ऑकलैंड में एट डिफरेंट प्लेसेस. तो मैं आपको कुछ जगह बताना चाहती हूँ जहाँ पर अगर आप अभी तक नहीं गए हो या अगर आप लुक फॉरवर्ड कर रहे हो तो आप जाके देख सकते हो. पहला है विंटर लाइट कैथीड्रल. ये फ्री इवेंट है, ये आउटिया स्क्वायर में आप देख सकते हो. अभी से लेकर 5 जुलाई तक ये आपके लिए अवेलेबल है. विंटर लाइट्स फेस्टिवल जो कि हॉविक हिस्टोरिक विलेज में है, जो कि 20 जून जो है इसको इसकी शुरुआत हो रही है. फिर विंटर लाइट्स एनचैंटेड इवनिंग्स जो हैं ये अभी से लेकर 25 जुलाई तक चलेगा एट रेनबोज एंड. ताकापुना विंटर लाइट्स विच इज़ वन ऑफ माय वेरी फेवरेट्स ताकापुना में 30 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक जो है ये चलेगा. साथ में वेक्टर लाइट्स ऑन ऑकलैंड हार्बर ब्रिज. सो ये जो है ये आपके लिए समाप्त हो चुका है, ये 16 से 18 जून तक था. कोई बात नहीं, बाकी जो 4 हैं ये आपके और मेरे लिए अभी भी मौजूद हैं. तो अगर आप विंटर लाइट्स देखना पसंद करते हैं आप अपनी फैमिली के साथ अपने बच्चों को लेकर जा सकते हैं.

0: Bollywood.
1: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
0: वो दिन जब मोहब्बत खतों में होती थी.
2: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज ना.

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

शाम हो चली है, चाय पीने का टाइम हो चुका है, मतलब टी टाइम हो चुका है। अभी चाय पीने वाले चाय पियेंगे, कड़क चाय, कॉफी पीने वाले कॉफी पियेंगे, बट यार संडे इवनिंग को कड़क चाय का मजा कुछ और ही है। तो यहाँ पर आपके लिए मैं एक छोटा सा रिडल लेकर आई हूँ। कौन सी ऐसी चीज है जो जिसकी शुरुआत टी से होती है? सो व्हाट बिगिंस विद टी एंड्स विद टी एंड हैज टी इन इट। बिगिंस विद टी एंड्स विद टी एंड हैज टी इन इट। अपना जो आंसर है आप मुझे भेज सकते हैं 5599।

rock and roll. Download Rover to listen Hum 80s Jukebox.

0: सब कुछ आपका ही है।
1: वेलकम बैक, हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स पे, मैं रक्षा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और देखते देखते शाम के 4 बज चुके हैं, अगले 2 घंटे भी आप और मैं यहाँ पर बहुत सारी बातें करने वाले हैं। लेकिन मैं बात करने वाली हूँ अबाउट द फिनाले ऑफ FIH हॉकी विमेंस नेशनल कप, जिसमें आप और मैं अभी डिसाइड करने वाले हैं कि भाई हम किसकी साइड हैं। बट कभी कभी होता है कि डिफ़िकल्ट हो जाता है यार कि डिसाइड करना किसकी साइड है, बिकॉज ये जब 2 टीम आमने सामने खेल रही हैं। चलिए इसके बारे में और भी बातें करेंगे, स्टे ट्यून्ड।

सो FIH हॉकी विमेन्स नेशनल कप न्यूजीलैंड का जो फिनाले है वो होने वाला है आज शाम को इन बिटवीन न्यूजीलैंड एंड इंडिया. ये दोनों अभी फाइनल में आमने सामने होने वाले हैं. बहुत मेहनत करके दोनों पहुंचे हैं और अभी अगर आप एक ऐसे पर्सन जो न्यूजीलैंड में रहता है और इंडियन है तो थोड़ा हो जाता है कि भाई किस साइड को आप सपोर्ट कर रहे हो. ये नॉर्मल ह्यूमन चीज़ है, इसमें कुछ गलत नहीं है. बट मैं जानना चाहती हूँ किसको सपोर्ट कर रहे हो आप, मेरी साइड से. उसके बाद आप और मैं हम एक इक्वेशन निकालेंगे भाई किधर कितना सपोर्ट है. बट वेरी प्राउड ऑफ बोथ ऑफ दीज टू टीम्स, बहुत मेहनत करके यहाँ पहुँचे हैं एंड ऑल द बेस्ट. जो अच्छा खेलेगा वो आज जीतेगा.

हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन्स दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन्स।

बहुत ही खूबसूरत सा गाना अदनान सामी की आवाज फ्रॉम द मूवी साथिया, जो कि मेरे टॉप 10 मूवीज में आती है. मतलब इसको मैं रीवॉच करती रहती हूँ, और साथ में इसके गाने जो हैं वो बहुत मज़ेदार है. अगर आप बाइक पे हो बाइक वाला गाना, ट्रेन पे हो ट्रेन वाला गाना, प्यार में हो प्यार वाला गाना, टकरार में हो टकरार वाला गाना, हर तरीके का गाना जो है इस मूवी में मौजूद है. एंड ऑफ कोर्स विवेक ओबरॉय एंड रानी मुखर्जी. बट यहाँ पर जवाब का टाइम आ चुका है, राइट आंसर फाइंड करने का टाइम आ चुका है. मैंने आपसे पूछा था व्हाट इज़ दैट वन थिंग दैट बिगिंस विद टी एंड्स विद टी एंड हैज़ टी इन इट. तो इसका सही आंसर है टी पॉट. और तो यहाँ पर बस एक ही सही आंसर आया है मुझे, जो कि है रवि जी का, जो मनुरेवा से हमें सुनते आ रहे हैं. थैंक यू सो मच रवि, दिस इज़ ब्रिलियंट. एंड बाकी लोग भी नियर पहुँचे बट बिल्कुल सही जवाब नहीं दे पाए. वैसे मेरे पास आंसर था तो मैं भी दे पाई, वरना मैं भी सिमिलर सिचुएशन में होती. वैसे ऐसी बहुत सारी बातें और प्यारे प्यारे गाने आपके लिए बैक टू बैक.

गाने में जो शब्द यूज़ किया गया है उफ़ो, ये मेरी एक आध दो दोस्त हैं जो एक सेंटेंस में दो बार उफ़ो यूज़ करती हैं। और मैं सच बता रही हूँ, जब तक मैंने इस गाने को सुना नहीं था ना, आई यूज़ टू गेट इरिटेटेड। और मुझे लगता है कि लड़के बहुत कम इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, लड़कियां ही ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं। अगर आप मुझसे सहमत हैं तो आप अपनी सहमति भी मुझे मैसेज में भेज सकते हैं 5599 पे। बट इस शब्द से, इस वर्ड से, उफ़ो उफ़ो उफ़ो, ये ना मतलब मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुकी थी एक टाइम पे, बिकॉज मेरी जो दोस्त थी, जो मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, दिस माई गर्ल फ्रेंड्स, हमेशा इस शब्द का इस्तेमाल करती थी। लेकिन पता नहीं कुछ हुआ, जैसे ही ये शब्द इतना मशहूर हो गया, मतलब इतना फेमस हो गया कि इसके मतलब गाने में आ चुका, और गाना जो है इसको हम नेम भी करते हैं उफ़ो, उसके बाद से मुझे कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई। मतलब क्या है ये, मतलब हर चीज़ फेमस होने के बाद कुछ और लगने लगता है, हमारा विजन चेंज हो जाता है। क्या ये बात सही है कि ऐसा होना चाहिए? एनीवेज, ऐसी बहुत सारी बातें हम करते रहेंगे। मेरा नाम है रक्षा, आपके साथ, आपकी खिदमत में। आज मैं हाजिर हूँ दोपहर 12 से 6 बजे तक।

अनप्लान वीकेंड्स आर दी बेस्ट, और ये मैं एकदम क्या बोलते हो स्टैम्प लगा के बोल सकती हूँ कि इस वाला जो मेरा वीकेंड है इसको मैंने बड़ा प्लान किया, आई मीन सैटरडे को मेरा बड़ा प्लान किया, और अभी तक जो मैंने कल प्लान किया था मेरा ख़त्म नहीं हुआ गाइस। सो गोइंग अहेड मैं अब से प्लान नहीं करूँगी, ऐसा मैंने सोचा है। नाम है मेरा रक्षा, स्वागत है आपका यहाँ हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स पे। आपके लिए मैं एक संडे का बहुत ही मज़ेदार सा शो लेकर आई थी, आखिरी घंटे में हूँ मैं आपके साथ उस शो में, लेकिन यहाँ 24/7 आपके इंटरटेनमेंट का हम पूरा ध्यान रखते हैं 104.2 FM पे, साथ में रोवा ऐप जो है इसके साथ भी आप दुनिया के किसी भी कोने से किसी भी टाइम जो है हमें सुन सकते हैं।

सुष्मिता सेन बीवी नंबर वन में स्टार की गई थी और इस गाने में वो सबसे ज़्यादा स्टार जो हैं वो दिखी हैं अलॉन्ग विद सलमान खान। तो उसी से याद आया कि भाई सुष्मिता सेन को एक टाइम पर गोल्ड डिगर जो है ये स्टैम्प करके हर जगह न्यूज़पेपर पे यहाँ वहाँ फैला दिया गया था, और जिनके साथ इनको गोल्ड डिगर बोला गया था, मतलब जिनको ये डेट कर रही थी, दैट पर्सन इज़ ऑल्सो क्वाइट वेल्दी। तो अभी उनका इंटरव्यू आया जिसमें उन्होंने बोला कि भाई गोल्ड डिगर तो मैं हूँ, सुष्मिता तो कभी गोल्ड डिगर थी ही नहीं, बिकॉज वो ही मैक्सिमम टाइम पे करती थी। तो आई थिंक इट्स हाई टाइम कि हम 370 रुपीज़ की बिरयानी और इन सब चीज़ों से ऊपर उठ जाएं और रियलिस्टिक बातों को करना शुरू करें। क्या कहते हैं आप, क्या थॉट प्रोसेस है आपका इसके अराउंड, ये भी आप शेयर कर सकते हैं 5599।

0: इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ कहानियाँ होती हैं रॉ, इमोशंस होते हैं रियल और कॉन्वर्सेशंस होते हैं बिना मास्क के।
1: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ आते हैं।
0: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पे ऑन रोवा, स्पॉटिफाई और एनीवेयर यू गेट योर पॉडकास्ट।
2: Does someone in your house sound like this? Or like this? Does the wheezing and coughing stop them getting out and living a normal life? They need to take the cough test. Go to coughtest.co.nz. Take the cough test and show it to the doctor. Coughtest.co.nz. It's free. Prescription medicine. Medicines have risks and benefits. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland.
3: Shop jaw-dropping 60% off winter busters and peak storewide savings at Briscoe's massive midwinter sale. Get out of the cold and snap up winter's hottest savings. Sale ends Monday at Briscoe's. See online for T's and C's.
4: MediaWorks complaints. How can I help?
5: I've got this ad going around and around and around in my brain, and it's all because of you guys.
4: Thank you.
5: It's all I can think about.
4: What does it sound like?
5: Yeah, I'd rather not.
4: Go on, why don't you have a crack?
5: Okay, got a plumbing problem.
4: Oh, I need a bit more than that.
5: They've got your back.
4: That's starting to ring a bell. Why don't you sing it to me?
5: Oh, okay.
6: There's no better plumber to give it a crack.
4: Oh, wow. You're actually good. Do you want a job?
5: No. I want a plumber.
7: Advertise with MediaWorks. New Zealand listens to us.
8: Oh my, oh my. Grey South Road, greater than ever.
9: South Auckland's buses just became a lot better.
8: Weymouth Road, way better buses.
9: With better bus routes, more frequent buses, more early morning and late night buses, and more.
8: Woody, no worries. MIT, A-OK.
9: Search AT Better South Auckland Buses for details.
8: Airport, got your transport.
9: Then turn up and go.
10: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा। न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काऊ घी। जब खाने में होगी इतनी शुद्धता, इतना स्वाद, तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा। कशिश प्योर देसी घी, अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड। खुशियाँ पकाएं, खुशियाँ खिलाएं।
0: ट्रेलर टॉकीज ऑन बॉलीवुड बज। नॉनस्टॉप बॉलीवुड।
11: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं।
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स।
12: अगर कोई आपको ये सवाल पूछे कि आपका पर्पस क्या है लाइफ में, तो भाई घबराने का नहीं, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जिनको पता ही नहीं होता है कि ऐसी कोई चीज़ भी होती है और पर्पस होना भी ज़रूरी है। और इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है वन ऑफ आर बॉलीवुड सुपरस्टार्स, जिनको मैं बड़ा पसंद करती हूँ, सैफ अली खान, जिनको ऑन स्पॉट ये क्वेश्चन किया गया। एंड सैफ ने बड़ा अच्छा ऑनेस्ट आंसर दिया कि कभी इतना फोकस ही नहीं किया कि लाइफ में, समझ रहे हो क्या मतलब, पर्पस होना चाहिए या पर्पस जैसी कोई चीज़ भी लाइफ में आगे बढ़ते हुए हमें लेके चलना चाहिए। आई थिंक मुझे भी ऐसा लगता है कभी कभी रिटायर्ड मैक्स करना बहुत ज़रूरी है ना। रिटायर्ड मैक्स इज़ अ टर्म जिसको, जो मैं इधर इस साल इस टर्म से इंट्रोड्यूस हुई हो, जहाँ पर आप आज के बारे में सोचते हो और आप आज को जीते हो और आप आज में हर चीज़ करते हो, आगे पीछे कुछ सोचने का नहीं। अपना आज 100% स्ट्रेट कर लो तो ऑटोमेटिकली सब ठीक हो जाएगा। दैट्स रिटायर्ड मैक्सिंग। अगर आप चाहें तो इसके बारे में और पढ़ सकते हो और मैं भी आपके लिए और भी बातें लेकर आऊँगी। बट देन अगेन, दिस इज सो रिलेटेबल प्रो मैक्स फॉर मी कि अगर कोई आपसे ये चीज़ें पूछे कि तुम्हारा पर्पस क्या है, तो ज़रूरी थोड़ा ना हमेशा कि हर चीज़ का पर्पस हो, और इतना लोड क्यों लेने का, क्या कहना है आपका?

दे। भाई देश दुनिया की पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है समझना बहुत मुश्किल हो गया है भाई। अभी इटली के जो प्राइम मिनिस्टर हैं और डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, ये इनका जो सारा समय है ये जा रहा है एक दूसरे से लड़ाई करने में। इसमें इटालियन प्राइम मिनिस्टर की गलती थोड़ी कम है, और ऑफ़ कोर्स डोनाल्ड ट्रंप जो बोलते हैं कुछ भी बोल देते हैं। और ऐसा उन्होंने कहा कि फ़ोटो उन्होंने इसलिए ली इनके साथ क्योंकि इन्होंने उनको रिक्वेस्ट किया था, लिटरली बेग किया था। इसके ऊपर इटालियन प्राइम मिनिस्टर जो है वो काफ़ी चिढ़ गई और उन्होंने अपना स्टेटमेंट डाला कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी बोलते रहते हैं। एंड फॉलोइंग विच एक बहुत इंपॉर्टेंट विजिट था इटालियन प्राइम मिनिस्टर का टू यूएस, वो भी कैंसिल कर दिया गया। स्ट्रेट ऑफ हर्मीज भी पता नहीं अभी ज़िंदगी के ऐसा होते जा रही है, धूप छाँव, खुल रहा है बंद हो रहा है, खुल रहा है बंद हो रहा है, यही चलता जा रहा है। देश दुनिया की खबर में, पॉलिटिक्स में गाइज अभी यही चल रहा है। ऐसी बहुत सारी बातें आगे चल के ओनली ऑन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स biggest hits।

थैंक यू सो मच मेरा साथ निभाने के लिए। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया आज मुझे आपके साथ। मैं काफ़ी टाइम के बाद आज वापस आके ये शो जो है ये आपके साथ कर रही थी, एंड आई हैड एन अमेजिंग टाइम। एंड मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हमेशा जाने से पहले एक चीज़ जो है ये मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, और हमेशा ये कहती हूँ कि आप अपना ध्यान रखें, बहुत सारा ध्यान रखें, और अपनों का और भी ज़्यादा ध्यान रखें, एंड डोंट फॉरगेट टू कीप हमिंग अलॉन्ग।

0: The Breakfast Show with VJ and Pooja.
1: पूरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
3: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप। West side है ना, west side of Auckland है ये। I have lots of fun basically with
2: क्या?
3: The cold weather।
2: कौन है?
3: Hunua और Waitakere।
2: अच्छा Hunua west में?
3: किधर है Hunua?
0: The Breakfast Show with VJ and Pooja.
4: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune.
0: Weekdays 6 to 10 a.m.
5: अरे सुनो, मुझे इस डोसा बैटर के साथ फ्री कंटेनर मिला।
6: फ्री कंटेनर तो अच्छा है, लेकिन डोसा कैसा था?
5: डोसा तो ठीक ही था, लेकिन कंटेनर देखो कितना अच्छा है।
6: फ्री गिफ्ट्स लोग भूल जाते हैं, असली टेस्ट के लिए ही वापस आते हैं। इंट्रोड्यूसिंग द न्यू चटनी रेंज फ्रॉम अम्मास फूड। ट्रेडिशनल कोकोनट, टैंगी टोमेटो और क्रंची पीनट चटनी, परफेक्ट विद अम्मास इडली और डोसा बैटर। अम्मास फूड, 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव। नाउ अवेलेबल एट ग्रोसरी स्टोर्स नियर यू।
7: Everything you love about Auckland is about to get closer than ever before when the City Rail Link opens this year. New stations will make getting into the city and across Auckland easier and more convenient, because all those trains, buses and ferries, they're connecting to make one super simple network. Night out with friends? See you there. Favourite band in town? Let's go! The new City Rail Link will make it all happen. Search ATCRL to discover more. So, where will you go?
8: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है। हाँ, अच्छा बताओ, तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं।
9: मिसेस सिंह,
10: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने।
4: मॉडर्न क्लासिक शेकर स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू। कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz।
0: हम टाइम चेक, हम न्यूज, ब्रॉट टू यू बाय लॉजिक फाइनेंस लिमिटेड, चेंजिंग लाइव्स विद लॉजिक।
11: Good evening to you. I'm Jeff Bryan with the latest at 6. A major overhaul of how New Zealanders save for retirement has been proposed by the National Party. It would make KiwiSaver compulsory for all workers from 2028. And Prime Minister Christopher Luxon also took the chance to have a crack at the Green Party's new tax policy.
12: Yeah, we've just seen a crazy Green policy today, talking about increasing taxes, putting a wrecking

ये बात जो मैं कहने जा रहा हूँ, इसका आभास या फिर ये अगर आपको बहुत ही जल्द रियलाइज़ हो जाए, आप इसको रियलाइज़ कर ले जल्द से जल्द, तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकता है। आवश्यकता से अधिक बातचीत, ज़रूरत से अधिक लगाव, ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीद और आवश्यकता से अधिक भरोसा, ये हमेशा आपको आवश्यकता से अधिक कष्ट देता है। I'll leave it with you। आइए, आप सभी का हम स्वागत कर रहे हैं ऑन संडे नाइट मेलोडीज। मैं हूं जिकाश। रात 12 तक हम आपके साथ यहां पर रहने वाले हैं। टुडे इज द 21st ऑफ जून एंड टुडे दुनिया भर में सोल्स्टिस को सेलिब्रेट किया जा रहा है। इफ़ यू नो यू नो, इफ़ यू डोंट नो, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। जहाँ पर विंटर है, विंटर सोल्स्टिस आज मनाया जा रहा है। जहाँ पर समा है जिस कंट्रीज में, उस कंट्री में समा सोल्स्टिस ये सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो हम भी आज इस सेलिब्रेशंस में शामिल होंगे और एक भरा पूरा कार्यक्रम आपके लिए हम लेकर आए हैं। आई होप विंटर हैजन बीन टू हार्श ऑन यू। मुझे तो लगता है कि इस साल का विंटर हैजन बीन रियली ब्रूटल। जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ, अगर बारिश ज़्यादा ना हो, ठंड से तो हम निपट ही लेते हैं। तो आई होप यू आर ऑन द सेम पेज। आज कार्यक्रम में आपके लिए हम ढेर सारे अपडेट्स लेकर आए हैं। बहुत सारे स्पोर्टिंग इवेंट्स हुए हैं। विल फिल यू ऑन द रिजल्ट्स। और आने वाले सप्ताह फीफा में कौन कौन सी टीम क्या कर दिखाने वाली है, इसके बारे में हम बातें करेंगे। अगर आपकी टीम की जीत हुई है इन सुपर रग्बी, वेल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू योर टीम, एंड फॉर द अदर्स बेटर लक नेक्स्ट ईयर जब सुपर रग्बी दोबारा शुरू होगी। ऑल ब्लैक्स की तैयारियां भी शुरू हो चुकी है टू नेम द टीम दैट विल बी प्लेइंग अगेंस्ट फ्रांस अर्ली इन जुलाई। तो इस पर भी हम बातें करेंगे। और कम्युनिटी में क्या कुछ हो रहा है, ये भी हम देखते हुए आज के इस कार्यक्रम को एंजॉय करने वाले हैं। आइए शुरुआत करते हैं इस घंटे की विद द ऑसम वॉइस ऑफ अय्यार रहमान। स्वागत कर रहे हैं आपका। क्योरा, नमस्कार।

104.2 FM और रोवा पर संडे नाइट मेलोडीज का मजा आप ले रहे हैं. मैं हूँ जिकाश. एंड फीफा वर्ल्ड कप कल है 22 तारीख जून, और कल जो पहला मैच होगा इट्स बिटवीन स्पेन एंड सऊदी अरेबिया. ग्रुप एच का ये मैच है, और उसके बाद बेल्जियम ईरान खेलने वाले हैं. वैसे पहला मैच कल सुबह 4 पर शुरू होगा, सेकंड मैच बेल्जियम ईरान के बीच में 7 AM पर होने वाला है. वेरी इंटरेस्टिंग मैच ये रहेगा, क्योंकि ईरान और न्यूजीलैंड के बीच में जो खेल हुआ ये 2-2 गोल से बराबर रहा है. तो इफ़ ईरान विंस दिस वन दे'ल हैव एन एज ओवर न्यूजीलैंड. बेल्जियम ये काफ़ी अच्छी टीम है. वैसे अभी तक बहुत सारे ऐसे मैचेस हुए हैं जहां पर स्कोर्स या फिर आउटकम्स वेर प्रिडिक्टेबल, एंड कुछ मैचेस ऐसे भी हुए हैं जहां पर लोगों ने सोचा नहीं था कि ऐसा परिणाम सामने आएगा. वैसे द थर्ड मैच हैपनिंग टुमारो बिटवीन यूरुग्वे एंड केबो वर्डी, ये होगा ग्रुप एच टेबल के अंतर्गत सुबह 10 पर. एंड देन न्यूजीलैंड एंड इजिप्ट ग्रुप जी के अंतर्गत ये खेल होने वाला है एट 1 PM. इजिप्ट इज़ अ फॉर्मिडेबल साइट, एंड न्यूजीलैंड हमारे ऑल वाइट्स दे आर ऑल्सो अ प्रोमिसिंग साइट. सो आई वुड बी रूटिंग फॉर न्यूजीलैंड एंड आई विश दे गेट अ विन आउट ऑफ दिस मैच एज वेल. सो दीज वेर आर द फोर मैचेस जो कल खेले जाएंगे इन द फीफा वर्ल्ड कप 2026 पूल मैचेस के अंतर्गत.

0: फोन पर आपके साथ हैं जिकाश।
1: रामलीला 2026 के बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं, तो डेट आप मार्क कर ले, 8 अगस्त 2026। वेन्यू है द वैदिक सेंटर, 32 ग्लासगो एव पापाटोटो में, मनुकाओ में। ये ऑसम सा वेन्यू है जहां पर बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। तो यहां पर चार चांद लगने वाले हैं ऑन द 8 अगस्त, जब रामलीला की टीम आपके लिए परफॉर्म करने वाली है। एक डिवाइन थिएट्रिकल एक्सपीरियंस है जिसके लिए तैयारियां बहुत ही ज़ोरों शोरों से चल रही है। जितने भी आर्टिस्ट्स हैं ये बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं टू परफेक्ट देयर डायलॉग डिलीवरी एंड टू कैरी देयर कैरेक्टर्स ऑन स्टेज एज इट शुड बी डन। तो डेट वंस अगेन 8 अगस्त, रामलीला, न्यूजीलैंड आर्ट एंड कल्चर चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा लाया जा रहा है। एंड आई एम प्राउड टू से हम इज़ द मीडिया पार्टनर्स। मैं इस रामलीला का पार्ट रहा हूँ लास्ट ईयर भी, इस साल भी कुछ ज़रूरी किरदार हम निभा रहे हैं टुगेदर विथ विजय वर्मा। एंड इफ़ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ऑसम ऑसम इवेंट, तो आप स्टॉल्स खरीद सकते हैं, यू कैन बिकम ए स्पॉन्सर एज वेल। तो स्पॉन्सरशिप इंक्वायरीज के लिए और स्टॉल्स अगर आपको यहाँ पर रखना है, क्योंकि क्राउड बहुत ज़्यादा रहने वाली है, इन एक्सेस ऑफ 500 पीपल यहाँ पर आने वाले हैं, क्योंकि ऐसा ही कुछ लास्ट ईयर हुआ था। मास्टर अशोक है जो इसके जिनके नेतृत्व में इसकी तैयारी हो रही है। मास्टर अशोक को आप कॉल कर सकते हैं ऑन 021-179-5459 पर, दैट इज 021-179-5459 टू गेट डिटेल्स अबाउट स्पॉन्सरशिप, या फिर यहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट्स को शोकेस करना चाहते हैं। इट विल बी एन ऑसम ऑसम अपॉर्चुनिटी, क्योंकि पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ यहाँ पर आने वाले हैं, छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग तक लोग यहाँ पर आने वाले हैं। आप फैमिली एनवायरनमेंट में आप अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं या फिर प्रमोट कर सकते हैं। वंस अगेन, न्यूजीलैंड आर्ट एंड कल्चर चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ में रामलीला 2026 8 अगस्त को होगा। एंड मीडिया पार्टनर्स, हम हमारे साथ में होकर आप इसको एक अलग ही जरिए से एंजॉय और एक्सपीरियंस करने वाले हैं।

0: के दिन चैट 20 को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी, बसेस बिलबोर्ड्स ट्रेन स्टेशंस स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव कॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी कशिका ऑन 021-769-755। मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: Do you need a washing machine, dryer, fridge or dishwasher today? Big Saves Big Whiteware deals are on today. Get a Robinhood 6.5kg washing machine only $3.98 or a Samsung 310-litre fridge only $8.99. We have heaps of stock. Take it home today. Get New Zealand's best value whiteware from only $3.98. Plus get a massive 30 months interest-free store-wide. T's and credit criteria apply, only at Big Save.
2: Of Bollywood.
3: World's best, our good brands here.
4: Gujarati comedy. Now, अगर आपने खिचड़ी देखी है, I am very limited with Gujarati content, लेकिन खिचड़ी जो दो seasons आई थी, मैंने तो इसके बहुत मजे लिए हैं. And सिद्धार्थ रंडेरिया, गुज्जू भाई productions, इनके बारे में तो आप जानते ही होंगे. If you are a Gujarati and you love Gujarati comedy, इनके द्वारा एक बहुत ही ऑसम ऑसम शो लाया जा रहा है, एन इवनिंग ऑफ लाफ्टर एंड एंटरटेनमेंट विद गुज्जू भाई नी एक्सचेंज ऑफर, जिसमें खुद लेजेंडरी सिद्धार्थ रंडेरिया नज़र आने वाले हैं. ये एक ब्रांड न्यू कॉमेडी है जहां पर गुज्जू भाई ही फाइंड्स हिमसेल्फ कॉट अप इन दी अनयूजुअल एक्सचेंज ऑफर, जो लीड अप करता है टू सीरियस अ सीरीज ऑफ हिलेरियस मिसअंडरस्टैंडिंग्स, unexpected twists and laugh out loud situations. इसमें बहुत सारे witty dialogues, relatable family moments और classic Gujarati humor आप बहुत ज़्यादा enjoy करने वाले हैं. Date आप लिख लें, अपने कैलेंडर में mark कर लें, 3rd of July और Victory Convention Center, Auckland में ये awesome show होने वाला है शाम 7:30 PM से. PremierTickets.co.nz पर tickets बिक रहे हैं एंड बहुत ही जल्द ये टिकट्स सोल्ड आउट होने वाले हैं. तो अगर आप चाहते हैं टू एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ गुजरात्स मोस्ट लव कॉमेडी कैरेक्टर ऑन स्टेज, आपको टिकट्स ले लेने हैं फ्रॉम premierTickets.co.nz से.

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता, महसूस

104.2 FM और रोबा के जरिए मैं जिकाश आपके साथ में शामिल हूँ संडे नाइट मेलोडीज में दिल से कार्यक्रम का मजा आप ले रहे हैं। टुडे इज द 21st ऑफ जून एंड आज है विंटर सोल्स्टिस। विंटर सोल्स्टिस क्या है? जैसे समर सोल्स्टिस होता है वैसे ही विंटर सोल्स्टिस होता है एंड दिस डेट मार्क्स द शॉर्टेस्ट डे ऑफ द ईयर। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि आज के दिन में 24 आवर्स नहीं थे। शॉर्टेस्ट डे मतलब कि सबसे कम सनलाइट आज हमने

छोटा दिन था, तो छोटा दिन रात लंबी होने वाली है। एंजॉय करते रहे, ऐसे ऐसे तमाम इम्पोर्टेंट जानकारियाँ हम आपको प्रदान करने वाले हैं। वैसे डेलाइट आवर्स इन ऑकलैंड आज के लिए अप्रोक्सीमेटली 7:33 AM से लेकर 5:11 PM के बीच में सन हमको नज़र आया है, प्रोवाइडिंग ओनली अबाउट 9 hours and 38 minutes ऑफ डेलाइट। और कल से एस्ट्रोनॉमिकली कल से द अमाउंट ऑफ डेलाइट दैट वी रिसीव विल बी मोर देन व्हाट वी डिड टुडे। इसके कुछ कल्चरल सिग्निफिकेंस भी है, इसके बारे में हम जानकारी इसी घंटे पर आपके साथ में शेयर करने वाले हैं। जुड़े रहिएगा, आप सभी का स्वागत कर रहे हैं ऑन हम संडे नाइट मेलोडीज में। नमस्कार, क्योरा।

How many of you have used Wikipedia? जब artificial intelligence readily available नहीं था, I'm talking about 10 years ago. तो अगर आप कुछ भी सर्च करते थे ऑन द इंटरनेट तो विकिपीडिया वाज वन वेबसाइट जहां पर ढेर सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती थी. लेकिन विकिपीडिया पर सभी इन्फॉर्मेशन सही नहीं होते हैं. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप कुछ रिसर्च कर रहे हैं, डू नॉट रिलाय ऑन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम विकिपीडिया. हो सके तो उस इन्फॉर्मेशन को आप वेरीफाई कर ले विथ सम अदर रिलायबल सोर्सेज. लेकिन क्यों विकिपीडिया के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभी हाल ही में आपने तो सुना होगा कि यूएस और ईरान के बीच में पीस डील साइन हो चुका है. तो इसको लेकर किसी ने क्वेश्चन किया कि व्हाट वाज द आउटकम ऑफ ईरानियन एंड यूएस वो. तो विकिपीडिया, वेल बीइंग विकिपीडिया, इन्होंने अपना जवाब दिया. विकिपीडियाज एंट्री ऑन द 2026 ईरान वो हैज़ रिपोर्टेडली लिस्टेड द आउटकम एज एन ईरानियन विक्ट्री. नाउ आई डोंट वॉन्ट टू गो इन टू द पॉलिटिक्स कि ईरान की जीत हुई है या फिर यूएस की जीत हुई है. दे हैव कम टू अ पीस डील एंड दैट इज़ व्हाट मैटर्स, क्योंकि वो फिलहाल के लिए रुक गया है. किसकी जीत हुई है ये इम्पोर्टेंट नहीं है. आई थिंक ह्यूमैनिटी शुड बी द विनर एट द एंड ऑफ द डे. तो विकिपीडिया पर द क्लासिफिकेशन इज बीइंग सीन एज ए रिफ्लेक्शन ऑफ द करंट डिस्कशन एंड कंसेंसस अमंग विकिपीडिया एडिटर्स आफ्टर द 3 month कॉन्फ्लिक्ट. वंस अगेन, विकिपीडिया पर जाकर आप मनगढ़ंत कहानी डाल सकते हैं, इसको कोई वेरीफाई नहीं करता है. तो डू नॉट बिलीव एवरीथिंग यू गेट आउट ऑफ विकिपीडिया. विकिपीडिया इज़ अ क्राउड सोर्स्ड प्लेटफॉर्म वेयर वॉलंटियर एडिटर्स अपडेट पेजेस यूजिंग अवेलेबल रिसोर्सेज, सो सच एंट्रीज कैन चेंज एज न्यू इन्फॉर्मेशन एंड रिपोर्ट्स इमर्ज. अकॉर्डिंग टू द एंट्री, द वो बिगेन ऑन 28th ऑफ फेब विथ यूएस इजरायली स्ट्राइक्स अंडर ऑपरेशन एपिक फ्यूरी. The conflict reportedly ended on June 17 with the Islamabad Memorandum of Understanding, which was mediated by Pakistan. By Pakistan hero ban gaya in dono ke beech mein. The agreement included a ceasefire, reopening of Strait of Hormuz, and steps towards sanctions relief. It also opened the way for further negotiations on unresolved issues between the involved sides. However, because Wikipedia pages can be edited and updated over time, the classification should be treated as a developing interpretation rather than a final historical judgment. So, aapko kya lagta hai? Have you been following this US-Iran war closely? Did US come out victorious, ya phir did Iranian regime got their way out of this? Very interesting hai, aur bahut hi interesting hone ja raha hai ki peace deal mein kya kuch par agreement hua hai.

This year is a massive year for World Cup events क्योंकि एक और जहां पर FIFA World Cup जारी है वहीं पर Women's T20 World Cup भी जारी है and लगभग 6 दिनों में अब Junior World Championship 2026 Junior Rugby World Cup that is Under 20 World Cup रग्बी ये भी शुरू होने वाला है तो इस पर भी जानकारियां हम आप तक पहुंचाएंगे मैचेस की ओर देखें तो सैटरडे 27 जून आने वाले शनिवार से ही गेम्स शुरू हो जाएंगे और इसके पूल्स की ओर हम थोड़ी देर बाद में आपको बताएंगे कि कौन कौन से पूल्स में कौन कौन सी टीमें शामिल है एंड कौन कौन से मैचेस आपको एकदम से ज़रूरी है कि यू फॉलो एंड वॉच क्योंकि फिजी अंडर 20 और न्यूजीलैंड अंडर 20 टीम दोनों इस टूर्नामेंट में खेल रही हैं

वर्ल्ड रग्बी अंडर 20 पिचेस के बारे में बताने से पहले आपको हम जल्द से फिल इन कर दें अबाउट T20 वीमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप, ये भी जारी है एंड अभी थोड़ी देर में खेल शुरू होने वाला है इन इंग्लैंड, जहां पर वेस्ट इंडीज और श्रीलंका खेलेंगे फ्रॉम 9:30 PM। राइट नाउ बैक टू वर्ल्ड अंडर 20 रग्बी चैम्पियनशिप, और यहाँ पर चार पूल्स में चार टीम्स है, ऑल टुगेदर 16 टीम्स इन दिस ईयर्स वर्ल्ड कप। पूल ए में साउथ अफ्रीका, वेल्स, जॉर्जिया, यूरुग्वे। पूल बी में न्यूजीलैंड, इटली, स्कॉटलैंड और जापान है। पूल सी में है अर्जेंटीना, इंग्लैंड, आयरलैंड और USA। पूल डी में फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और स्पेन के साथ में फिजी अंडर 20 की टीम है। पहला मैच 27 जून को शुरू होगा एंड लोकल न्यूजीलैंड समय अनुसार रात को 9 बजे पहला मैच होगा। इसके साथ सेकंड मैच भी एट द सेम टाइम खेला जाएगा, अर्जेंटीना वर्सेस USA एट द एफकला स्टेडियम, और इटली वर्सेस स्कॉटलैंड इन द AIA अरेना इन कुटाइसी इन जॉर्जिया। ऑन द सेम डे 27 जून को 11:30 रात पर इंग्लैंड और आयरलैंड खेलेंगे एट द एफकला स्टेडियम, और फिर न्यूजीलैंड और जापान भी एट 11:30 PM AIA अरेना में खेलने वाले हैं इन जॉर्जिया। जैसे जैसे ये गेम्स और भी नज़दीक आते जाएंगे, मतलब लेटर इन दिस वीक, वी विल कीप यू अपडेटेड एंड हमारे सोशल्स को फॉलो करते रहे। आई एम ऑन लीव फ्रॉम द 27th of June, तो अगले सैटरडे से आई एम आउट ऑफ द कंट्री, मैं जा रहा हूँ फिजी टू स्पेंड विंटर बट इन अ ट्रॉपिकल कंट्री। तो होपफुली वेदर उधर ठीक ठाक रहे एंड आई विल सी यू गाइज आफ्टर 2 weeks, लेकिन बीच बीच में आई विल कीप यू अपडेटेड अबाउट ऑल द मैचेस दैट आर हैपनिंग इन दैट पर्टिकुलर वीक ओ एज लॉन्ग एज आई एम इन फिजी। तो लेट्स कीप इन टच हमारे सोशल्स पर या फिर माई पर्सनल ID जिकाश प्रसाद आप सर्च करें ऑन फेसबुक, दे आरंट मैनी, तो आप यू विल लैंड अप ऑन माई यू विल लैंड ऑन माई प्रोफाइल जिकाश प्रसाद ऑन फेसबुक, या फिर आप इंस्टा पर लुकअप करें इन सिंक विद जिक्स, इन SYNCWITHJIKS एंड यू विल गेट टू माई प्रोफाइल, वहाँ पर आप मुझे फॉलो करें एंड देट वे वी कैन कीप इन टच वाइल आई एम अवे फ्रॉम रेडियो। तो आई एम वेरी मच एक्साइटेड अबाउट अंडर 20 वर्ल्ड कप और आई एम ऑल्सो एक्साइटेड अबाउट माई हॉलीडे, तो आई विल कीप यू पोस्टेड, फॉलो करें मुझे।

संडे नाइट मेलोडीज़ का मज़ा आप ले रहे हैं, मैं हूं जिकाश, आपका साथ देता चल रहा हूं राइट टिल मिडनाइट। और आपको आपसे एक बात करनी थी अबाउट putting yourself out there on social media. Now, I'm not saying about content creators. Content अच्छा है तो ज़रूर आप शेयर करें, लेकिन कई ऐसे सारे लोग हैं जो अपने ज़िंदगी के हर एक खुशी के पल को कैप्चर करके डालते हैं सोशल मीडिया पर। क्या ये अच्छी बात है या फिर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए? Now, मैं किसी तरह का ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ। I came across an article, मुझे बहुत ही अच्छा लगा पढ़कर, और ये कुछ साइकेट्रिस्ट है जिन्होंने अपनी राय दी है अबाउट दिस सिनारियो की। लोग हमेशा, कुछ लोग हैं जो हमेशा अगर कहीं पर घूमने जाते हैं तो बहुत सारे फ़ोटोज़ लेकर डाल देते हैं, कुछ भी छोटा मोटा अचीव करते हैं फ़ोटोज़ लेकर डाल देते हैं, एंड कुछ लोग हैं जो दिखावे के लिए कई सारे फ़ोटोज़ डालते हैं। तो एक मानसिक चिकित्सक है, इनका क्या कहना है अबाउट दिस सिनारियो, इसके बारे में हम कुछ बातें करेंगे आने वाले घंटे पर। तो यूं ही हमारे साथ जुड़े रहे, सम आई ओपनर, सम डिटेल्स अबाउट व्हाट यू शुड बी पोस्टिंग, व्हाट यू शुडन बी पोस्टिंग। क्योंकि अगर आप नज़र, बुरी नज़र पर विश्वास करते हैं कि बुरी नज़र होती है, तो वेल दिस आर्टिकल माइट ब्रिंग यू सम रिलीफ।

0: idea.
1: Streaming on Rover.
2: The beat of Bollywood.
3: World's best. हमारी कोई ब्रांच नहीं है. Wow.
2: Dil se. Dil se.
4: Hey Bula, welcome back to Sunday Night Melodies, जहां पर मैं जिकाश आपका साथ दे रहा हूं. पिछले घंटे पर हमने कहा था एक सिनेरियो के बारे में हम आपसे बातें करेंगे, जहां पर आपने भी देखा होगा, शायद आपके भी फ्रेंड्स सर्कल में कुछ ऐसे लोग हैं फेसबुक पर या फिर इंस्टा पर जो एक हर एक छोटी सी छोटी चीज़ को फोटो के साथ सोशल मीडिया पर डाल देते हैं. एंड ऐसे कुछ लोग हैं जिनको मैंने अनफॉलो करके रखा है, क्योंकि इट्स नॉट कि जेलसी होती है, बस वाहियात लगता है कि छोटी सी छोटी चीज़ ये दुनिया भर को बताना चाहते हैं. और कुछ लोग हैं जो इस बात से डरते भी हैं कि ऐसा करने से शायद बुरी नज़र लग जाती है. पर्सनली बुरी नज़र का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं जब वेकेशंस पर जाता हूँ या फिर कुछ अच्छा खाता हूँ, कुछ अच्छा समय बिताता हूँ, आई नॉर्मली फॉरगेट अबाउट टेकिंग पिक्चर्स, क्योंकि Me and my family, we just indulge into the moment. और कुछ खाने की चीज़ है तो बस आनंद लेकर उसको खाते हैं, उसको enjoy करते हैं. और कभी कभार ट्रिप पे जाने के बाद हम ये सोचते हैं कि यार फोटोज़ तो लिए ही नहीं, लेकिन मज़े बहुत किए हैं. तो ऐसा ही एक सिनारियो आया इन एन आर्टिकल जो मैं पढ़ रहा था, जहाँ पर एक 31 साल का पुरुष है. इन्होंने कहा है कि इनको प्रमोशन हुआ, प्रमोशन मिला, खुश थे,

ओके तो अगर आप एक ऐसे व्यक्ति है हु पोस्ट्स एनीथिंग एंड एवरीथिंग अबाउट देयर पर्सनल लाइफ ऑन सोशल मीडिया या फिर आप ऐसे किसी को जानते हैं जो ऐसा करता है दिस आर्टिकल इज़ फॉर यू. एक आर्टिकल आया है जहाँ पर एक व्यक्ति ने सवाल किया है. इन्होंने कहा है कि मैं 31 साल का हूँ, हाल ही में मुझे प्रमोशन मिला है, बाहर से देखने पर मेरी ज़िंदगी ठीक लगती है लेकिन मैं एक अजीब समस्या से जूझ रहा हूँ. जब भी मेरे साथ कोई अच्छी बात होती है तो मुझे उसे तुरंत सोशल मीडिया पर शेयर करने की इच्छा होती है. अगर लोग बधाई दें, तारीफ करें तो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन अगर अपेक्षा के अनुसार रिएक्शन ना मिले तो खुशी अधूरी लगती है. कई बार ऐसा हुआ है कि किसी अचीवमेंट को लेकर मैं सिर्फ तब तक उत्साहित रहा जब तक लोग मैसेज करते थे, कमेंट्स आते थे. बाद में वही अचीवमेंट मुझे खास नहीं लगा. क्या मैं अपनी खुशी बाहर ढूंढ रहा हूँ? अगर हाँ तो इससे कैसे बाहर निकलूँ? तो ये सवाल एक व्यक्ति ने किया है. तो एक्सपर्ट्स ने कुछ कमेंट्स किए हैं. एक्सपर्ट डॉक्टर द्रोण शर्मा जो एक कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट है आयरलैंड यूके में, और इन्होंने कहा है कि ये सिर्फ आपकी कहानी नहीं है, सोशल मीडिया के दौर में बड़ी संख्या में लोग इस अनुभव से गुजर रहे हैं. यहाँ बात ये नहीं है कि अपनी खुशी साझा करना गलत है, सवाल ये है कि हमारी खुशी का स्रोत सोर्स हमारा अचीवमेंट है या फिर दूसरों का वैलिडेशन. यहीं से शुरू होती है बाहरी मान्यता यानी एक्सटर्नल वैलिडेशन की कहानी. क्या आप ऐसे हैं? कल्पना कीजिए कि आपने महीनों मेहनत करके कोई लक्ष्य हासिल किया है. पहले आपकी खुशी इस बात से तय होती थी कि आपने कितना सीखा है, कितनी मेहनत की है, कितना आप आगे बढ़े हैं, लेकिन अब आपकी खुशी का एक हिस्सा इस पर निर्भर हो गया है कि आपकी पोस्ट पर कितने लाइक्स आए हैं, किसने बधाई दी है और किसने बधाई नहीं दी है. यहीं पर उपलब्धि का केंद्र बदल जाता है. पहले सवाल होता था कि क्या मैंने अपना लक्ष्य हासिल किया है, क्या मैंने अच्छा काम किया है. अब सवाल बन जाता है कि लोगों ने क्या सोचा है, क्या पर्याप्त रिएक्शंस, क्या पर्याप्त प्रतिक्रिया मिली है, क्या मेरी सफलता दूसरों को प्रभावित कर पाई है या नहीं. धीरे धीरे अचीवमेंट की असली खुशी पीछे छूट जाती है और उसकी जगह सोशल वैलिडेशन ले लेता है. खुशी के दो चेहरे हैं, आंतरिक और बाहरी, इंटरनल और एक्सटर्नल. मनोविज्ञान से उपलब्धियों से मिलने वाली खुशी को मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांटा जाता है, आंतरिक खुशी यो पर्सनल इंटरनल हैप्पीनेस और बाहरी खुशी. इस पर और भी हम बातें करेंगे इसी घंटे पर थोड़ी देर में.

0: अब दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rowa.nz पर सुने।
1: Tori and Ben didn't think they needed a DVS system.
2: We've got double glazing.
1: Have you still got that cold, damp feeling?
3: Yeah, we do.
1: So Tori and Ben got DVS home ventilation and its fresh air in, stale air out technology went to work, making their rooms drier and healthier. Say no to that cold, damp feeling. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without it.
4: Turn winter into progress at Rebel Sport. Save up to 40% on selected Nike, New Balance and Puma. From training gear to winter layers, score epic savings on some of the biggest brands in sport. Hurry, these deals and more only at Rebel Sport. See online for T's and C's.
5: It pays to switch to Tower. Switch today and get $200 off new house insurance and $100 off new comprehensive car insurance. Use promo code BIGSWITCH. T's and C's and eligibility criteria apply. Switch to Kiwi, switch to Tower.
6: वो इनडेलिबल होम्स वाली कहानी सुनाओ ना।
7: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year master builder guarantee, awards pour in.
8: And award goes to Indelible Homes.
7: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favorite master builder.
0: कहानी of Indelible Homes.
9: हम बात कर रहे थे अबाउट पर्सनल खुशी। क्या ये निर्भर होता है आपके अचीवमेंट पर, आपकी खुद की खुशी से, या फिर आपकी खुशी एक्सटर्नल वैलिडेशन पर निर्भर होती है। तो आर्टिकल मैं पढ़ रहा था अबाउट अ पर्सन जिन्होंने कहा है कि जब मैं कुछ हासिल करता हूँ तो खुशी मेरी उस बात पर सीमित होती है कि इस पर रिएक्शंस कितने मिले हैं, सोशल मीडिया पर लाइक्स कितने मुझे आए हैं। तो मनोवैज्ञानिक का कहना है कि उपलब्धियों से मिलने वाली खुशी को मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांटा जाता है। आंतरिक खुशी, मतलब कि ये वो खुशी है जो भीतर से आती है, जब आप सोचते हैं मैंने मेहनत की है, मैंने कुछ नया किया है, मैंने कुछ सीखा है और मैंने एक लक्ष्य को प्राप्त किया है। ये खुशी अपेक्षाकृत स्थिर होती है, ये लंबे समय तक बनी रहती है क्योंकि इसका स्रोत आपके भीतर से है। ये पर्सनल हैप्पीनेस है, आपकी पर्सनल हैप्पीनेस। बाहरी खुशी क्या है? ये खुशी दूसरों के रिएक्शन से पैदा होती है। लोग प्रभावित हुए हैं या नहीं, सबने बधाई दी है या नहीं, या फिर मेरी उपलब्धि को नोटिस किया जा रहा है या नहीं। ये खुशी बुरी नहीं है। समस्या तब होती है जब ये खुशी का मुख्य स्रोत बन जाए, क्योंकि बाहरी प्रतिक्रियाएं हमेशा आपके नियंत्रण में नहीं होती हैं। आप कितना भी अच्छा कर ले, अगर आप सोचते हैं कि दूसरों के वैलिडेशन के बिना ये बेकार है, तो भाई ये गलत बात है। सोशल मीडिया और डोपामाइन का खेल। जब हम सोशल मीडिया पर कोई उपलब्धि पोस्ट करते हैं और लोगों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलती है, तो मस्तिष्क में डोपामाइन नामक न्यूरोट्रांसमीटर सक्रिय होता है। डोपामाइन को अक्सर फील गुड हार्मोन कहते हैं, फील गुड केमिकल कहा जाता है, लेकिन वास्तव में ये केवल खुशी से नहीं बल्कि इनाम मिलने की उम्मीद से भी जुड़ी होती है। यही कारण है कि लोग बार बार नोटिफिकेशन चेक करते हैं, कितने लाइक्स आए हैं, कितने कमेंट्स आए हैं, कितनी स्टोरी देखी गई है। धीरे धीरे दिमाग सीखने लगता है कि उपलब्धि से ज़्यादा रोमांच प्रतिक्रिया में है। तब व्यक्ति अनजाने में ये मानने लगते हैं कि जब तक लोग मेरी सफलता को अप्रूव नहीं करेंगे, तब तक वह पूरी तरह रियल नहीं लगेगी। यही से निर्भरता शुरू हो जाती है, योर डिपेंडेंस ऑन एक्सटर्नल वैलिडेशन। और कई सारे लोग हैं जो इसके पीछे भागते हैं, मेहनत करते हैं लेकिन मेहनत का फल तब तक नहीं एंजॉय करते हैं जब तक बहुत सारे लोगों ने आपको बधाई नहीं दी हो। सोशल मीडिया कैसे बन जाता है एक अदृश्य जज, वेल, सोशल मीडिया एक मंच है, लेकिन कई लोगों के लिए ये धीरे धीरे एक मनोवैज्ञानिक जज की तरह काम करने लगता है। हम खुद से पूछने लगते हैं कि क्या मेरी उपलब्धि पर्याप्त बड़ी थी, क्या लोग प्रभावित हुए हैं, क्या मैं दूसरों जितना सफल हूँ। कंपैरिजन शुरू हो जाता है। कई बार लोग कंपेयर करने लगते हैं कि मेरी फ़ोटो पे कितने लाइक्स आए हैं, मेरे फ्रेंड के फ़ोटो पे लाइक्स उतने ज़्यादा क्यों हैं। तो जब इस झमेले में आप पड़ जाते हैं, जो असली खुशी आपकी मेहनत से आपको मिली है, जिसको आपको इंजॉय करना चाहिए, वो इंजॉयमेंट आप लूज़ कर देते हैं। तो सोचिएगा इसके बारे में, शायद इस प्रॉब्लम से आप भी जूझ रहे हैं। टेक अ स्टेप बैक और ये देखें कि वास्तव में आपको खुशी किस चीज़ से मिलनी चाहिए, लोगों के वैलिडेशन से या फिर पर्सनल अचीवमेंट से।

डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, ये कहावत आपने सुनी होगी। एंड ऐसा कुछ मेरे साथ भी अभी थोड़ी देर पहले हुआ अबाउट एन आर्टिकल जिसका शीर्षक है कि आम खाने का सही तरीका क्या है। एंड आई वाज लाइक, आम खाने का सही तरीका, ये क्या बात हुई? आम आप जैसे भी चाहे वैसे खा सकते हैं, कच्चा, पक्का, नमक लगाकर, मिर्च डालकर, उसकी सब्जी बनाकर, गोडम्मा कहते हैं ना आई थिंक, वो बनाकर, अचार बनाकर, कई तरह से आप खा सकते हैं। तो मैंने कहा कि यार ये आर्टिकल क्यों है इस पर, तो इसको मैंने पढ़ा और कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है। ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ में थोड़ी देर में मैं शेयर करूंगा। फिलहाल मैं हूं जिकाश, सन्डे नाइट मेलोडीज का मजा आप ले रहे हैं। Playing Bollywood's biggest hits.

0: उस पे, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ कहानियाँ होती है रॉ, इमोशंस होते हैं रियल और कॉन्वर्सेशंस होते हैं बिना मास्क के।
1: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ थे।
0: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पे ऑन रोवा, स्पॉटिफाई और एनीवेयर यू गेट योर पॉडकास्ट।
2: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा। न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काउ घी। जब खाने में होगी इतनी शुद्धता, इतना स्वाद, तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा।
3: मुझे भी।
2: कशिश प्योर देसी घी, अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड। खुशियाँ पकाए, खुशियाँ खिलाए।
4: At Bunnings, costs are kept low by buying in bulk, so you save more. And that means low prices for all kinds of useful supplies, like all-set 50-litre modular storage container, only $8.99. Finished Quantum dishwashing tablets, 72-pack, $34.99. Philips LED Cool Daylight 19-watt globe, only $24.95. Where you find a competitor's lower price and the same in-stock item, we'll beat it by 15%. Conditions apply. See website for details.
5: Bunnings Warehouse.
4: Lowest prices are just the beginning.

वेलकम बैक टू संडे नाइट मेलोडी, जहां पर मैं जिकाश आपका साथ दे रहा हूं। नाउ आम जो इंपोर्ट किया जाता है न्यूजीलैंड में, क्योंकि यहां पर तो आम होते नहीं है, लोग कोशिश कर रहे हैं पेड़ उगाने की, लेकिन एज अ फल अभी तक कहीं पर हमने आम के पेड़ पर आम लगा हुआ नहीं दिखा है। मैंने घर पर बोए हैं, 2-4 पेड़ हो चुके हैं लगभग आधे आधे मीटर के, तो देखते हैं कि मेरा आम प्रोजेक्ट कैसा जाता है। लेकिन आम खाने का सही तरीका, एक्सपर्ट डॉक्टर अनु अग्रवाल जो कि सीनियर क्लिनिकल डाइटिशियन है एंड फाउंडर ऑफ ए वेरी प्रोफाउंड इंस्टीट्यूट है, इनसे पूछा गया कि आम खाने का सही तरीका क्या है। इन्होंने जवाब दिया कि इसका कोई तय तरीका नहीं है, देयर इज नॉट अ डेफिनेट वे टू ईट आम, लेकिन बेसिक हाइजीन से जुड़े कुछ तरीके अपनाए जा सकते हैं और तरीके और कैसे आम खाए कैसे ना खाए। तो कुछ ग्राफिक्स है, आम खाने का सही तरीका है कि खरीद कर सीधे फ्रिज में आम आप ना रखें, दो या पाँच घंटों तक आप इसको पानी में भिगो कर रखें, धोकर पोंछ कर तब फ्रिज में रखें, खाने से 1 घंटे पहले आप निकाल लें, दोबारा पानी में ना भिगोएं, सुबह खाली पेट आप आम ना खाएं, डिनर के बाद आम ना खाएं, देर रात को आप आम ना खाएं, बेस्ट टाइम है लंच के बाद आप आम खाएं, शाम 4 बजे खा सकते हैं, दिन में सिर्फ 1 आम खाएं। क्या आप ऐसा करते हैं? क्योंकि इंडिया से जो आम आते हैं बड़े मज़ेदार हैं, फिजी में भी बहुत रसीले बहुत ही स्वादिष्ट आम मिलते हैं, लेकिन उतनी बड़ी स्तर पर यहाँ पर एक्सपोर्ट नहीं होते हैं फिजी से आम, लेकिन इंडिया से जो आम आते हैं, केसर आम हो गया और कई सारे आम हैं, मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहे हैं, और इन्होंने बताया है कि साथ में फाइबर या प्रोटीन लेना चाहिए, क्योंकि कई लोगों का प्रॉब्लम है कि आम खाने के बाद फिर पेट अपना काम करने लगती है। सवाल, आम नॉर्मल पानी में भिगोने चाहिए या ठंडे पानी में? जवाब है कि आम को नॉर्मल पानी यानी रूम टेम्परेचर वाले पानी में भिगोना बेहतर होता है, क्योंकि इससे अच्छे से सफाई हो जाती है, फल का स्वाद और टेक्सचर भी नहीं बिगड़ता है। क्या पानी में नमक डालकर आम धोनी चाहिए, बेकिंग सोडा डालकर धोनी चाहिए? यस, क्योंकि जितने भी इम्पोर्टेंट वेजिटेबल्स होते हैं इनमें केमिकल स्प्रे किए जाते हैं ताकि कोई भी तरह के कीटाणु या फिर इंसेक्ट्स बाहरी कंट्री से न्यूजीलैंड आए, तो इसको धोना बहुत ही ज़रूरी है, बेकिंग सोडा से धोए तो बहुत ही अच्छा है। आम की सतह पर जमी गंदगी और धूल हटाने में बेकिंग सोडा या फिर नमक बहुत ही मदद करती है, इससे कीटनाशक कम करने में मदद मिलती है। जैसे कि मैंने कहा, साफ फल हेल्थ के लिए सुरक्षित होता है। कितनी देर भिगोए, 1 घंटा पर्याप्त है, इतनी देर में सतह पर लगी गंदगी धुल जाती है। और बड़ा ही यू नो आई नेवर थॉट कि इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी जब मैं इस आर्टिकल को पढ़ूंगा। तो देयर यू गो, आपको शायद कुछ नई बातें पता चली है कि किस तरह से आम को साफ कर सकते हैं, किस तरह से इसको अच्छी तरह से आप रख सकते हैं। और भी बड़ा लंबा आर्टिकल है, अगर समय रहा तो कुछ और बातें रिलेटेड टू आम आपसे हम करेंगे आम तौर पर।

0: कृष्णा अभिषेक और राजीव ठाकुर। राजीव ठाकुर इनका स्क्रीन प्रेजेंस और कॉमिक टाइमिंग बहुत ही अच्छी है। हाँ, जब कपिल शर्मा के शो में आते हैं आई थिंक ही हैज दैट कैरेक्टर कि इनको लोग कुछ भी बोलकर चले जाते हैं एंड आई थिंक दैट इट दैट इज़ व्हाट हिज कैरेक्टर इज सपोज टू बी इन कपिल शर्मा शो। वहीं पर कृष्णा अभिषेक, ये भी कमाल के कॉमेडियन हैं। ये दोनों न्यूजीलैंड आ रहे हैं फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम टू परफॉर्म और सॉरी टू से VIP सीट्स आर नाउ सोल्ड आउट। तो bookmyevent.co.nz पर जाए और अपने लिए बचे जितने टिकट्स हैं उनमें से जितने चाहिए आप जल्द से ले लें ताकि आप मिस ना करें योर चांस टू कैच दीज कॉमेडी लेजेंड्स लाइव इन एक्शन। 18 जुलाई को विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर पर ये दोनों आने वाले हैं और ऑनलाइन अगर बुकिंग आपको नहीं मिल रही है, अगर आप तकलीफ से गुजर रहे हैं ट्राइंग टू बुक ऑनलाइन, तो यू कैन कॉल ऑन 0210-432-720 क्योंकि ट्राइविजन इवेंट्स दे आर प्रेजेंटिंग अ नाइट ऑफ प्योर एंटरटेनमेंट विद कृष्णा अभिषेक एंड राजीव ठाकुर लाइव ऑन स्टेज। तो हंसने के लिए तैयार हो जाए, लोटपोट होने के लिए तैयार हो जाए, इनसे मिलने के लिए तैयार हो जाए क्योंकि 18 जुलाई को विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर पे एक हंसी का समा बांधने आ रहे हैं कृष्णा अभिषेक एंड राजीव ठाकुर। इनके दोनों के बीच में क्या स्किट्स होने वाले हैं, क्या प्लान करके आने वाले हैं और किस तरह की कॉमेडी होने वाली है, ये तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। गेट रेडी टू लाफ लाइक नेवर बिफोर इन दिस awesome ग्रेट कॉमेडी नाइट हैपनिंग ऑन द 18th ऑफ जुलाई विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर। टिकट ज़ोरों से बिक रहे हैं, बहुत समय नहीं बाकी है आपको आपके पास कि आप टिकट्स आराम से ले, जल्द से अभी आप जाएं bookmyevent.co.nz और वहां से अपने लिए आप टिकट्स ले सकते हैं।
1: हम पर आपके साथ

0: शो विद सैंडी एंड रुस्बी।
1: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
2: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
3: वो भी आई लव यू वाला।
2: मैडम ने पकड़ लिया भी हाँ किसी ने बनाया, वो एक लड़की थी वो बोलती जहाज तो बना रहा था बेटा।
3: अच्छा आप दिलजीत हो?
2: आए आए बताओगे यार।
0: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manuko and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jeku.
4: Non-stop Bollywood.
5: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं।
4: हम playing Bollywood's biggest

समय हो चुका है कि आपके लिए हम बारिश करें, गजलें बारिश या फिर गजलों की बारिश होने वाली है इस एक घंटे में 9 से 10 बजे के बीच में सनडे नाइट मेलोडीज में। हर रविवार को ये कार्यक्रम आप एंजॉय करते हैं, तो आप सभी का इस्तकबाल कर रहे हैं इन दिस ऑसम ऑसम बेहतरीन आवा ऑफ ग्रेट गजल्स और दिल को छू जाने वाले आवाज़ें जो हैं ये आपके लिए हम पेश करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं जगजीत सिंह एंड चित्रा सिंह की आवाज़ों से। ये अगला जो शेर है इसे आपने देखा होगा, फिल्म कभी कभी 1976 में आई थी और द ऑसम वॉइस ऑफ अमिताभ बच्चन। उस तरह से तो मैं नहीं कह पाऊँगा पर कोशिश ज़रूर रहेगी। तो आइए, तेरा हाथ हाथ में हो अगर, तेरा हाथ हाथ में हो अगर, तो सफ़र ही असली हयात है, मेरे हर कदम पर है मंजिले, तेरा प्यार घर मेरे साथ है। मेरी बात का मेरी हम नफज, तू जवाब दे या ना दे मुझे, तेरी एक चुप में जो है छुपी, वो हजार बातों की बात है। तेरा हाथ हाथ में हो अगर, तो सफ़र ही असली हयात है, मेरी ज़िंदगी का हर एक पल तेरे हुस्न से है जुड़ा हुआ, तेरे होठ थिड़के तो सुबह है, तेरी जुल्फ बिखरे तो रात है। तेरा हाथ हाथ में हो अगर,

एक बहुत ही लोकप्रिय गज़ल गायिका है और ये पाकिस्तानी सिंगर भी है, सॉन्ग राइटर भी है, गिटार भी बजाती है, एक्ट्रेस है और एक सोशल वर्कर भी है। और इनके द्वारा कई नज़म गाए हुए हैं और कई सारे गज़ल है जो आप चेकआउट कर सकते हैं। इनका नाम है हदीका कियानी। 1972 में इनका जन्म हुआ था। एक पाकिस्तान से है और जैसे कि हमने कहा कि शी इज़ अ वेरी टैलेंटेड लेडी और सिर्फ गाना बजाना, गाने लिखना, गिटार बजाना ही नहीं, ये एक सोशल वर्कर भी है जो फिलहाल शी इज़ फोकसिंग ऑन हर एनर्जी एंड ऑन हर म्यूज़िक एंड इम्पैक्टफुल फिलेंथ्रोपिक काम भी कर रही है। अभी हाल ही में इन्होंने यूके का टूर किया है टू रेज फंड्स फॉर गाज़ा। तो इनके बारे में आप और भी पढ़ सकते हैं और इनका एक अभी हाल ही में रिलीज़ हुआ है किस्सा नाम का एक गाना, एक गज़ल जिसमें इन्होंने कहा है कि फीचर्स माय लेट मादर खावर कियानी, इनकी ब्यूटीफुल पोएट्री है फ्रॉम हर बुक शीशो का नगर। इसे आप चेकआउट कर सकते हैं सूफी स्को पर और मई महीने में इसको रिलीज़ किया गया है। उन्हीं की आवाज़ में आइए ये अगला गज़ल आपके लिए हम पेश करें।

0: Get ready, New Zealand. Hum is proud to bring you Stick with Hum, your chance to support the Vantage Black Sticks women at the upcoming FIH Hockey Women's Nations Cup. Experience world-class international hockey right here at home as top teams battle for glory. Plus, you could win a double pass to the games. Simply listen for the cue to call from your announcer, then text hockey to 5599 to enter. Stick with Hum and get behind our Vantage Black Sticks women.
1: JB Hi-Fi is celebrating its stunning new store at Newmarket on the 25th of June from 5pm with grand opening specials for 4 hours only. Don't miss out on huge savings only at JB Newmarket Thursday, 25th June, 5 to 9pm. JB, you've done it again.
2: अरे सुनो, मुझे इस डोसा बैटर के साथ फ्री कंटेनर मिला।
3: फ्री कंटेनर तो अच्छा है, लेकिन डोसा कैसा था?
2: डोसा तो ठीक ही था, लेकिन कंटेनर देखो कितना अच्छा है।
3: फ्री गिफ्ट्स लोग भूल जाते हैं, असली टेस्ट के लिए ही वापस आते हैं।
4: इंट्रोड्यूसिंग द न्यू चटनी रेंज फ्रॉम अम्मास फूड, ट्रेडिशनल कोकोनट, टैंगी टोमेटो और क्रंची पीनट चटनी, परफेक्ट विद अम्मास इडली और डोसा बैटर। अम्मास फूड, 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव, नाउ अवेलेबल एट ग्रोसरी स्टोर्स नियर यू।
5: Shop jaw-dropping 60% off Winter Busters and peak store-wide savings at Briscoe's massive midwinter sale. Get out of the cold and snap up winter's hottest savings. Sale ends Monday at Briscoe's. See online for T's and C's.

0: Bollywood.
1: Hum.
0: Playing Bollywood's biggest hits.
2: गज़लों का समा बंधा हुआ है हम पर संडे नाइट मेलोडीज़ में मैं जिकाश आपका साथ देता चल रहा हूँ। और जब गज़लों की बारे में बातें होती हैं तो आई लाइक डूइंग शेर व शायरी, पढ़ना अच्छा लगता है। पहले लिखता भी था, अभी समय नहीं मिलता है तो नहीं लिख पाता हूँ। लेकिन एक शेर है जो एक शायरी कविता है जिसको आपके साथ में मैं शेयर करना चाहता हूँ। एंड आई थिंक दिस विल गो रियली वेल विद दी नेक्स्ट गज़ल बाय पंकज उदास जी। तो कविता कुछ इस प्रकार से है, इसका शीर्षक है जीवन की हम सफ़र। प्यार तुझको हाय मैं करूँ किस कदर, तू मेरी जीवन संगनी मेरे जीवन की हम सफ़र। बड़ी मुश्किल है तेरी अदाएं इस कदर झेलना, फिर भी चाहते हैं दीवाने तेरे संग खेलना। तुझको कैसे बनाया होगा उस बनाने वाले ने, वह भी मदहोश हुआ होगा मदिरा तेरे मैखाने में। तेरे क्या जलवे हैं जानम, तू वफा सभी की कहलाती है। जो महसूस तनाव को करता, तू उसे नशे में बहलाती है। क्या तारीफ करूँ तेरी, तू देवों में पूजी जाती है। हर महफिल में मेहमानों से पहले मदिरा जी आती है। हर जगह तुम्हारा है वर्णन, चाहे देखो शास्त्र पुराण वेद, फिर कौन है बेवकूफ़ ऐसा जो करता मध्यपान निषेध। तुम से तो देवी हर मानो हद से ज़्यादा है डरते, तुमसे तो हे देवी हर मानो हद से ज़्यादा है डरते। तुम कहती हो कि मैं हूँ खराब, फिर भी लोग सेवन है करते।

21 तारीख जून है आज, और आज अगर आपने अपना बर्थडे मनाया है तो आप सभी को अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे आपको हम विश कर रहे हैं। एंड आशा करते हैं कि आज आपने जो एक्सपेक्ट किया था, जिनसे भी एक्सपेक्ट किया था, वो सारे सभी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल हुए हैं एंड यू आर हैप्पी। दैट्स व्हाट मैटर्स। और आपकी खुशी, आप की प्रसन्नता, ये आप पर निर्भर होती है। तो डोंट गिव दैट अपॉर्चुनिटी टू एनीवन एल्स कि आपकी खुशी के आधार कोई और बन पाए। अगर आपका बर्थडे है, दिस इज़ योर डे, आपने जिस तरह से चाहा उस तरह से गुजारा है, शायद जो तोहफे आपने चाहे थे वो अभी नहीं मिले हैं, तो भाई खुद कोशिश करें कि वो खुद के लिए आप खरीद पाए या फिर उसकी उपलब्धि कर पाए। अ वेरी हैप्पी बर्थडे फ्रॉम माय एंड, फ्रॉम हियर हम FM की ओर से। बस यही आपके लिए हम प्रार्थनाएं करते हैं कि जैसा आज के दिन स्पेशल है, वैसे ही आप स्पेशल हो काफ़ी लोगों के लिए। एंड बस यही दुआएं करते हैं कि खुशियां, कामयाबी आपका पता ढूंढते ढूंढते आप तक पहुंच जाए, और जितना प्यार आपको आज मिला है उससे 10 गुना ज़्यादा आपको आने वाले दिनों में मिले। आने वाला साल आपके लिए बहुत बहुत बहुत लकी रहे और एक सेहतमंद सुखद जीवन आप व्यतीत करें। आप वेरी हैप्पी बर्थडे, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे आपको हम विश कर रहे हैं। 10 बजने को आए हैं दी टीम जो नाइट शिफ्ट करने के लिए आई हुई है, ये काम शुरू करने वाली है। तो होपफुली आपने अपना सेफ्टी चेक्स कर लिया है, आपके सेफ्टी इक्विपमेंट्स PPE ये सभी ठीक ठाक है, यू आर ऑल इक्विप्ड सेफली टू एग्जीक्यूट योर जॉब फॉर टुनाइट। एंड कल सुबह काम ख़त्म करके जैसा आप आए थे घर से, वैसे ही हंसी खुशी और सक्सेसफुली आप लौटेंगे। जो लोग काम ख़त्म कर रहे हैं, हड़बड़ी मत कीजिए, अच्छी तरह से आप अपना काम ख़त्म करके साइन ऑफ करके अपने घर की ओर जाइए, आराम से हमें सुनते हुए, विदाउट एनी हड़बड़ी, विदाउट जल्दबाजी किए आप सफ़र का मज़ा लेते हुए घर पहुँचे और फिर आराम फरमाएं, यही हम चाहते हैं। आइए इस घंटे की शुरुआत करते हैं विद कुमार सानू और अलका याग्निक।

0: Bollywood.
1: World's best हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
2: FIFA World Cup 2026 ये तो आप देख ही रहे हैं एंड इसके बारे में अपडेट्स आप तक हम पहुंचाते रहते हैं. कल सुबह भी दोबारा खेल शुरू हो जाएंगे इन दिस वर्ल्ड कप टूर्नामेंट. और क्या आपकी टीम ने अभी तक उतना ही अच्छा खेला है जितना आपने सोचा हुआ था? अगर यस तो वेल ये सही बात है, अगर नहीं तो होपफुली दे डू बेटर इन द मैचेस दैट आर येट टू बी प्लेड. वैसे कल के बारे में हम देखें, 22 जून स्पेन और सऊदी अरबिया ये पहला मैच खेलने वाली है हमारे समय अनुसार सुबह 4 बजे. बेल्जियम ईरान ये सुबह 7 बजे खेलेंगी. यूरुग्वे और केप वेरे ये 10 बजे खेलने वाली है. इन द अकॉर्डिंग टू मी द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैच फॉर ग्रुप जी इज़ न्यूजीलैंड एंड इजिप्ट. न्यूजीलैंड मस्ट विन दिस मैच टू कीप देयर होप्स अलाइव टू क्वालिफाई फॉर द नॉकआउट स्टेजेस. इससे पहले बेल्जियम ईरान भी ग्रुप जी में ही है और ईरान को भी इट्स अ डू ऑर डाई सिचुएशन फॉर ईरान. बेल्जियम तो जीतना ही चाहेगी इस खेल को, लेकिन ईरान अंडर इमेंस मेंटल प्रेशर क्योंकि इनको ट्रेवल सेंक्शंस लगे हुए हैं. 24 आवर्स के बीच में USA जाना है, खेल खेलना है और लौट कर USA छोड़ देना है. तो वेरी इंटरेस्टिंग कि इतने मेंटल प्रेशर के बाद भी ईरान की टीम दे आर परफॉर्मिंग. तो कल 4 मैचेस होंगे एंड इसके अपडेट्स हम आपके साथ शेयर करते चलेंगे टुमारो.

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: के लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे, नो ब्रोकर चार्ज, बस ट्रस्टेड एडवाइस, हर डील बनाए परफेक्ट राइट।
1: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स, लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक,
0: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो, हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो, सब कुछ मिलेगा यही, अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए।
1: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी, कॉल 9846-9934 or search PFSL. T's and C's, lending and credit criteria apply.
2: Everything you love about Auckland is about to get closer than ever before when the City Rail Link opens this year. New stations will make getting into the city and across Auckland easier and more convenient because all those trains, buses and ferries, they're connecting to make one super simple network. Cool. Getting to work? Easy. Coffee with friends? Just go. The new City Rail Link will make it all happen. Search ATCRL to discover more. So, where will you go?
3: JB Hi-Fi is celebrating its stunning new store at Newmarket on the 25th of June from 5pm with grand opening specials for 4 hours only. Don't miss out on huge savings only at JB Newmarket Thursday, 25th June, 5 to 9pm. JB, you've done it again.
4: अरे सुनो, मुझे इस डोसा बैटर के साथ फ्री कंटेनर मिला।
5: फ्री कंटेनर तो अच्छा है, लेकिन डोसा कैसा था?
4: डोसा तो ठीक ही था, लेकिन कंटेनर देखो कितना अच्छा है।
5: फ्री गिफ्ट्स लोग भूल जाते हैं, असली टेस्ट के लिए ही वापस आते हैं।
6: इंट्रोड्यूसिंग द न्यू चटनी रेंज फ्रॉम अम्मास फूड, ट्रेडिशनल कोकोनट, टैंगी टोमेटो और क्रंची पीनट चटनी, परफेक्ट विद अम्मास इडली और डोसा बैटर। अम्मास फूड, 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव, नाउ अवेलेबल एट ग्रोसरी स्टोर्स नियर यू।
7: Nissan Big Deals, सिर्फ 22nd June तक. Select new Navara models पर पाइए $5,000 तक की बचत, plus accessories भी. Take advantage with the big one on X-Trail and discover the Patrol V8. Backed by Nissan's up to 10-year warranty. T's and C's apply.

Hey, welcome back to हम जहाँ पर Sunday Night Melodies का मज़ा आप ले रहे हैं। करण औजला ये बहुत सारे लोगों के बहुत बहुत बहुत फेवरेट सिंगर है, और क्यों नहीं, क्योंकि इनका अंदाज ही अलग है। तो अगर आप इनको पसंद करते हैं, यू शुड नो कि ये दोबारा आने वाले हैं अगस्त 25 को टू परफॉर्म एट द स्पार्क एरेना। ही इज ब्रिंगिंग हिज पीपॉप कल्चर वर्ल्ड टूर टू ऑकलैंड, और ये बहुत ही भव्य होने वाला है, बहुत ही भारी होने वाला है। इसके लिए एक ड्रॉ कल सुबह किया जाएगा फॉर डबल पास, एंड अभी आपके पास मौका है। आपको कै आई लिखकर भेजना है 5599 पर। कै आई लिखे, सेंड इट टू 5599। You'll go into the draw to win a double pass in the breakfast show with Vijay and Pooja kal subha jab ye dobara wapasi karenge. So if you want to be part of this awesome concert August 25th ko Spark Arena mein, ek to aap draw mein shamil ho jaiye, dusra aap livenation.co.nz par jaye and apne liye tickets reserve kar le, kyunki this is going to be a sell out show. प्रीसेल्स शुरू हो चुके थे, कई सारे टिकट्स बिक चुके हैं, और जो बचे कुचे हैं ये भी बहुत ही जल्द बिक जाएंगे। डू नॉट वेट फॉर अगस्त, क्योंकि अगस्त होते होते ये सभी टिकट्स बिक जाने हैं। तो कई यही लिखे, सेंड इट टू 5599 एंड आपको ड्रॉ में शामिल किया जाएगा, जहां पर डबल पास आप कल जीत सकते हैं।

0: rock and roll. Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
2: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
1: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800-46-26-26 today.
2: Available at selected branches. T's and C's apply.
3: From friends to lovers to chaos, get ready for a crazy ride. Cocktail 2, starring Shahid Kapoor, Kriti Sanon and Rashmika Mandanna.
4: कोई भी रिश्ता जब नया होता है ना, exciting होता है क्योंकि वो नया होता है.
5: सब अपनी अपनी expiry date के साथ आता है. और expiry date के बाद तो दवा भी जहर बन जाती है, right?
3: Cocktail 2, now showing in cinemas. Distribution partner Forum Films. Rating TVC.
6: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है.
7: हाँ. अच्छा,
6: बताओ तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं.
7: मिसेस सिंह.
8: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन ने.
2: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन, फोकस किचन, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू. कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz.
9: As a baby, I was burnt in hot water.
10: At 5, I got burnt when I got too close to a gas heater.
11: When I was a toddler, my feet were burnt from a hot bath.
12: Serious burns happen every day over winter. Remember, this National Burns Awareness Month, everyday burn hazards are hotter than they look. Help the Burn Support Group support survivors and whānau. Text BURN to 4499 to make a $3 donation now.
3: Keep calm because Punjabi swag is on.
13: Hey, hey, hey.

सोशल मीडिया बैन फॉर अंडर 16s ये ऑस्ट्रेलिया में हो चुका है एंड यूके हैज फॉलोड सूट. इंग्लैंड हैज आल्सो बैन्ड सोशल मीडिया फॉर किड्स अंडर द एज ऑफ 16. लेकिन क्या ये अंडर 16s सोशल मीडिया बैन काम करता है? इफ़ यू आर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, अगर आप वहाँ पर रहे हैं या फिर वहाँ घूम कर आए हैं, हैव यू सीन दिस डू गुड फॉर द किड्स इन ऑस्ट्रेलिया? डू लेट मी नो. The PM's about turn on Australian style ban suggest a dead duck administration grasping for a legacy. This is out of UK. A ban could push young people towards darker, harder to regulate parts of the web. ऐसा हो भी सकता है क्योंकि जब आपको भी अगर आपकी कोई पसंदीदा चीज़ है ये आपसे छीन ली जाए तो आप कोई ना कोई जरिया ढूंढेंगे टू गेट इट बैक. तो शायद बच्चे भी ऐसा कर सकते हैं. In this article, the writer has said ki it's funny what the pressure of ticking clock can do to a prime minister. Hannah Banks, unhone kaha in the New Statesman. Just a few months ago, when more than 60 Labour MPs signed an open letter calling for a social media ban for under 16s, Keir Starmer wasn't convinced. His own teenage children, he told MPs, that had benefited from using social media. प्राइम मिनिस्टर ने सोचा था कि नहीं, ऐसा नहीं होगा. बट विद अ लीडरशिप चैलेंज लूमिंग, द पैनिकिंग प्राइम मिनिस्टर हैज सडनली लैच्ड ऑनटू दिस पॉपुलर पॉलिसी. ही अनाउंस्ड दिस वीक दैट फ्रॉम नेक्स्ट ईयर अंडर 16s वुड बी बैन फ्रॉम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इंक्लूडिंग स्नैपचैट, टिकटॉक, यूट्यूब, एक्स एंड इंस्टाग्राम. आई एम नॉट प्रिपेयर्ड टू कॉम्प्रोमाइज ऑन द सेफ्टी एंड हैप्पीनेस ऑफ आवर चिल्ड्रन. ऐसा ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है. हालांकि इनिशियली ये इसके खिलाफ थे. तो क्या आप सोचते हैं कि ऐसा कुछ न्यूजीलैंड में भी होना चाहिए? आई थिंक अ टोटल बैन तो नहीं, लेकिन रेस्ट्रिक्शंस होना चाहिए इफ़ इट कैन बी वर्कड आउट विथ मेटा, विथ फेसबुक, विथ इंस्टाग्राम, की द टाइप ऑफ कंटेंट दैट गेट्स फिल्टर्ड डाउन टू आवर किड्स. ये टोटली फिल्टर्ड होना चाहिए एंड एनीवन दैट्स ओवर द एज ऑफ 16 डू नॉट शुड नॉट हैव एक्सेस टू किड्स अंडर द एज ऑफ 16. क्योंकि भाई दुनिया में अच्छे लोग भी हैं और दुनिया में बुरे लोग भी हैं. एक स्ट्रॉन्ग रेटोरिक है, एक क्रिटिक है जिन्होंने कहा है कि इन ऑस्ट्रेलिया अ सिमिलर बैन हैज़ प्रूवन ऑलमोस्ट टोटली इन इफेक्चुअल. सम 70% ऑफ द पेरेंट्स हुज चिल्ड्रन यूज्ड सोशल मीडिया बिफोर द बैन से दे स्टिल डू. ऑस्ट्रेलियाज ई सेफ्टी कमिश्नर हु इज़ इन चार्ज ऑफ एनफोर्सिंग द बैन हैज़ सेड दैट इट्स लाइकली it's like trying to fence the ocean. Samudra mein ghere banane ka kaam ye kar rahe hain. There are countless reasons why blanket bans don't work. Kyunki iske piche research nahi kiya gaya ki kis tarah se ban karne wale. There's so many other things on the internet jo bacche indulge kar sakte hain agar aap unke social media access ko band karenge. To I think there are a lot of things to be weighed out before saying yes, there should be a blanket ban on social media for under 16s.

0: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
1: Non-stop Bollywood.
2: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं।
1: हम playing Bollywoods.

104.2 FM और रोबा के जरिए से आप इस कार्यक्रम का मजा ले रहे हैं। संडे नाइट मेलोडीज में मैं जिकाश आपका साथ दे रहा हूं। अगर अभी आपने ट्यून इन किया है, आप सभी का हम स्वागत कर रहे हैं। जितने भी हमारे राइड शेयर ऑपरेटर्स हैं, अगर आप बोल्ट चलाते हैं, अगर आप उबर चलाते हैं और क्या है वहाँ पर, डोला आई थिंक, और टैक्सी ड्राइवर्स जितने भी हैं, और लॉन्ग हॉल ऑपरेटर्स, अगर आप ट्रक एंड ट्रेलर को मैनेज कर रहे हैं अभी और लंबी यात्रा तय कर रहे हैं, हमें आप सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। आई होप यू आर एंजॉयिंग द प्रोग्राम एज वेल। याद रहे, जहाँ पर आपको ब्रेक लेना है, मेक श्योर यू टेक ब्रेक्स। अगर आपको थोड़ी सी थकावट महसूस हो रही है, आप एक सेफ जगह ढूंढ कर अपनी गाड़ी को पार्क कर ले, गाड़ी से निकले, थोड़ा सा यू नो फ्रेश एयर ले और कुल्ला कर ले, और फिर आराम करने के बाद दोबारा अपनी यात्रा शुरू करें, ताकि अपनी मंजिल तक आप सही सलामत पहुंच सके। ये आपसे हम गुजारिश कर रहे हैं। आइए इस घंटे की शुरुआत करते हैं विद द ऑसम ऑसम वॉइस ऑफ उदित नारायण। फाइनल आवर है, फाइनल आवर में आपका सुकून हम आपको लौटा रहे हैं। ज़्यादा हम बकबक यहाँ से नहीं करेंगे, बस अ लाइनअप ऑफ वेरी ऑसम मेलोडियस सेमी गोल्ड ट्रैक्स आपके लिए हमने ढूंढ लिया है, और इसे आप एंजॉय करें, हम भी इसको उतना ही एंजॉय करेंगे। क्योरा

0: एक पल में जो आकर गुजर जाता है ये हवा का वो झोंका है और कुछ नहीं। प्यार कहती है ये सारी दुनिया जिसे एक रंगीन धोखा है और कुछ नहीं।
1: The beat of Bollywood.
2: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
3: पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हो या आप फ्यूचर की तरफ शिफ्ट कर रहे हो, स्मार्ट चॉइस अब सिंपल है। वे सिटी GWM हैवल, हैवल का हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड रेंज पे डिस्काउंट्स और सिर्फ 4.95% फाइनेंस ऑफर्स। आज ही वे सिटी ऑटो ग्रुप पहुँचे और जिमी टेलर और उनकी टीम से मिले। लिमिटेड टाइम ऑफर, टीज एंड सीज अप्लाई। फॉर मोर इन्फो विजिट वे सिटी ऑटो ग्रुप .nz और सर्च फॉर वे सिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल्स।
4: From climate change to a lack of loose change, from small changes to changes in global power, change is constant. And so is the news on this station, your source for everything changing. In association with RNZ News, change is in the air.
5: Bunnings brings you the lowest prices on Solid Energy 15-litre kindling box, just $13.40. Where you find a competitor's lower price on the same in-stock item, we'll beat it by 15%. Conditions apply. See website for details. Lowest prices are just the beginning.
6: As a baby, I was burnt in hot water.
7: At 5, I got burnt when I got too close to a gas heater.
8: When I was a toddler, my feet were burnt from a hot bath.
9: Serious burns happen every day over winter. Remember, this National Burns Awareness Month, everyday burn hazards are hotter than they look. Help the Burn Support Group support survivors and whānau. Text BURN to 4499 to make a $3 donation now.
10: आज तो मैं वेदर के बारे में बताना भूल ही गया, तो जल्द से देख लेते हैं कि आने वाला सप्ताह कैसा होने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट वीक इज माय फाइनल वीक इन NZ बिफोर आई हेड आउट फॉर अ हॉलीडे। तो आज है संडे, मंडे को धूप और बदली का सिलसिला रहने वाला है, पार्टली क्लाउडी विद अ चांस ऑफ शावर अंटिल आफ्टरनून, लेकिन शावर होने के चांसेस बहुत कम है, तो ठीक ठाक ही मौसम रहने वाला है। ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे को शावर्स आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं, फ्यू शावर्स ऑन ट्यूसडे, वेंसडे को रेन ईजिंग इन द आफ्टरनून एंड थर्सडे को शावर्स और पश्चिम दिशा से हवाएं आपको लगने वाली है। 17 डिग्रीज ओवरऑल टेम्परेचर रहने वाला है, एवरेज टेम्परेचर फ्रॉम मंडे टिल थर्सडे इज 17 डिग्रीज, दिन में ओवरनाइट 9 से लेकर 11 के बीच में टेम्परेचर रहने वाला है। फ्राइडे को बारिश थम जाएगी लेकिन बदली छाने वाली है, 14 डिग्रीज टेम्परेचर फ्राइडे के लिए है, ओवरनाइट टेम्परेचर फ्राइडे को ठंड पड़ने वाली है, 8 डिग्रीज टेम्परेचर होने वाला है।

ऑलराइट, अब तो हमारे यहाँ से जाने का वक्त हो चुका है। आशा है कि आपने कार्यक्रम को एंजॉय किया है, हमने भी बहुत एंजॉय किया, आपकी मंजिल तक हमने आपको पहुँचाया है, तो आपको हमारा साथ देने के लिए थैंक यू हम कह रहे हैं। अगर सफ़र में है तो केयरफुली आप सफ़र तय करें, अपनी मंजिल तक एकदम से सुरक्षित आप पहुँचें। हम आपसे मिलेंगे अब कुछ हफ्तों के बाद में, क्योंकि हम जा रहे हैं अपने एनुअल लीव पर। आप अपना भरपूर ख्याल रखिएगा, हम जब लौट कर आएंगे तो आशा करते हैं कि आप भी एकदम से फिट एंड फाइन हालात में हमें दोबारा मिलेंगे जब रेडियो पब पर हम आपसे मिलने को आएंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, जो भी कर रहे हैं मेक श्योर यू सेफ आउट देयर, अपनों का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, हम आपसे मिलेंगे बाद में। तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि, हैव अ ग्रेट वीक अहेड, शब खैर।

0: driving you home? The Drive Show with Sandy and Rusby.
1: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
2: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
3: वो भी आई लव यू वाला।
2: मैडम ने पकड़ लिया, अभी यहाँ पे किसने बनाया, वो एक लड़की थी, वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा।
3: अच्छा आप दिलजीत हो?
2: आए आए बताओगे यार।
0: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
4: Reliance Ventilation System.
5: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि crying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
4: Moisture और ventilation का problem लगता है।
5: और पता है मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है।
4: Oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer. और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं।
6: Contact Reliance Ventilation System on 0800 787 111. Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 18 years.

0: The Breakfast Show with VJ and Pooja.
1: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे.
2: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर.
3: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप. West side है ना, west side of Auckland है ये. We have lots of fun basically with the cold weather.
2: कौन है?
3: Hunua और Waitakere.
2: अच्छा, Hunua west में.
3: किधर है Hunua?
0: The Breakfast Show with VJ and Pooja.
4: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune.
0: Weekdays, 6 to 10 a.m. From friends to lovers to chaos. Get ready for a crazy ride. Cocktail 2, starring Shahid Kapoor, Kriti Sanon and Rashmika Mandanna.
5: कोई भी रिश्ता जब नया होता है ना, exciting होता है, क्योंकि वो नया होता है.
6: सब अपनी अपनी expiry date के साथ आता है. और expiry date के बाद तो दवा भी जहर बन जाती है, right?
0: Cocktail 2, now showing in cinemas. Distribution partner Forum Films. Rating TVC.
7: अरे सुनो, मुझे इस डोसा बैटर के साथ फ्री कंटेनर मिला.
8: फ्री कंटेनर तो अच्छा है, लेकिन डोसा कैसा था?
7: डोसा तो ठीक ही था, लेकिन कंटेनर देखो कितना अच्छा है.
8: फ्री गिफ्ट्स लोग भूल जाते हैं, असली टेस्ट के लिए ही वापस आते हैं.
9: इंट्रोड्यूसिंग द न्यू चटनी रेंज फ्रॉम अम्मास फूड. ट्रेडिशनल कोकोनट, टैंगी टोमेटो और क्रंची पीनट चटनी, परफेक्ट विद अम्मास इडली और डोसा बैटर. अम्मास फूड, 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव. नाउ अवेलेबल एट ग्रोसरी स्टोर्स नियर यू.
0: The beat of Bollywood.
10: World's best. हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
0: Night flight

0: मारलो थोड़ा सा जिलो थोड़ा थोड़ा मारलो
1: दुनिया में आई हो तो लव कर लो दुनिया में आई हो तो लव कर लो थोड़ा सा जिलो थोड़ा

0: पट मत लपट झपट चल हट बाजू हट नट खट हट जा। मैंने देखा जब तेरी नजरों के थ्रू,
1: कभी 101 कभी 102,
0: उस दिन से हुआ फीवर ये शुरू,
1: कभी 101 कभी 100।

चाहे आप हम के दिन चैट बीस को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी, बसेस बिलबोर्ड्स ट्रेन स्टेशंस स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव कॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755. मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स। Playing Bollywood's biggest hit.

0: स्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: Hey girl.
3: Hey boy.
2: Would you be my baby doll?
3: Sure. If

0: वो दिन जब मोहब्बत खतों में होती थी।
1: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

बच्चों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

rock and roll. Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.

0: अब दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rowa.nz पर सुने।
1: Some things belong in a warm home. A cup of tea, a cozy hot water bottle, a steaming hot bowl of soup. In homes just like yours, serious burns happen every day, especially to curious little hands over winter. Everyday burn hazards are hotter than they look. Help the Burn Support Group support survivors and whānau. Text BURN to 44999 to make a $3 donation now.

0: दे।
1: निकले थे हम हलवा खाने, मुंह ही जल गया है।

हमने जाग जाग की ऐसी भागम भाग कि हम कभी आ गए कभी हुआ गए कभी आ गए कभी हुआ गए कभी इधर भागे फिर तुमने दिया ये पान तो आई हमरी जान में जान तो आई हमरी जान

इठलाती है, बल खाती है, तन का चंदन वो छलक छलक झलकाती है, वो नैन द्वार से तन में आके मन में ज्वाला जगाती है, वो चंद्रमुखी है, वो मृगनैनी है, वो चंद्रमुखी है, वो मृगनैनी है, वो रूपवती है।

0: gentlemen.
1: Unfiltered with Sandy and Rizvi. Kyunki duniya mein already bahut sare perfect polished Instagram friendly stories hain aur unka humse koi lena dena nahi. Yahan kahaniyan hoti hain raw. Emotions hote hain real aur conversations hote hain bina mask ke.
2: Raja, mantri, chor, sipahi sab yahan aate hain.
1: Unfiltered with Sandy and Rizvi on Rowa, Spotify or anywhere you get your podcast.
3: अरे सुनो, मुझे इस डोसा बैटर के साथ फ्री कंटेनर मिला।
4: फ्री कंटेनर तो अच्छा है, लेकिन डोसा कैसा था?
3: डोसा तो ठीक ही था, लेकिन कंटेनर देखो कितना अच्छा है।
4: फ्री गिफ्ट्स लोग भूल जाते हैं, असली टेस्ट के लिए ही वापस आते हैं।
5: इंट्रोड्यूसिंग द न्यू चटनी रेंज फ्रॉम अम्मास फूड, ट्रेडिशनल कोकोनट टैंगी टोमेटो और क्रंची पीनट चटनी, परफेक्ट विद अम्मास इडली और डोसा बैटर। अम्मास फूड 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव, नाउ अवेलेबल एट ग्रोसरी स्टोर्स नियर यू।

0: रेडियो पे गानों की फरमाइश की जा सकती है, अपनों के नाम संदेश भेजे जा सकते हैं, मगर रेडियो पे अपने ट्रेडिशन की खुशबू भेजनी हो तो नहीं भेज सकते ना। उसके लिए अपनों को खाने पे बुलाएं, रिश्तों को और करीब लाएं। कशिश प्रीमियम बासमती राइस, ईट बेटर लिव बेटर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग इन टू www.kashishfood.co.nz, अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स।
1: रेडी टू एस्केप एंड गेट रिवॉर्डेड विद सिंगापुर एयरलाइंस? बुक योर गेटअवे विद स्पेशल फेयर्स टू डेस्टिनेशंस अक्रॉस यूरोप, एशिया एंड बियॉन्ड, एंड रिसीव अ बोनस $150 प्रीजी कार्ड व्हेन यू बुक ऑनलाइन यूजिंग योर मास्टर कार्ड। दैट्स एन एक्स्ट्रा $150 टू स्पेंड इन सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, दिल्ली, लंदन एंड मोर। एस्केप the cold and book your 2026 getaway today at singaporeair.com. Hurry, deals end June 26. T's and C's apply.
2: As a baby, I was burnt in hot water.
3: At 5, I got burnt when I got too close to a gas heater.
4: When I was a toddler, my feet were burnt from a hot bath.
5: Serious burns happen every day over winter. Remember, this National Burns Awareness Month, everyday burn hazards are hotter than they look. Help the Burn Support Group support survivors and whānau. Text BURN to 4499 to make a $3 donation now.
6: Bunnings brings you the lowest prices on Solid Energy 15-litre kindling box, just $13.40. Where you find a competitor's lower price on the same in-stock item, we'll beat it by 15%. Conditions apply. See website for details. Lowest prices are just the beginning.
7: Time check. By Logic Finance Limited, changing lives with logic.
8: Morning, I'm Grace Cocker with the latest at 6. A new poll suggests 2/3 of voters from across the political spectrum are against the selling of public conservation land. Forest and Birds' Richard Capey says a proposed law change could put 60% up for grabs.
9: We've got 4,000 wonderful native species in New Zealand that are unfortunately threatened or at risk. And actually the last thing we need to be doing is placing them at even greater risk by selling off their habitat.
8: The Greens' latest tax policy is taking aim at the wealthy, claiming too many people are competing for scraps. Co-leader Marama Davidson says the mega-rich and major corporations don't contribute fairly.
10: This pushes up prices, weakens wages, and makes it harder for ordinary people to make ends meet.
8: Efforts towards peace with Iran remain a battleground of conflicting statements. At the talks currently underway in Switzerland, US Vice President J.D. Vance spoke of progress.
11: Iran has been a driver of regional instability. Now we see a future where everybody can work together.
8: But President Trump has posted fresh threats and the flow on the Strait of Hormuz remains unclear. In sport, a career-best performance from Matt Henry has led the Black Caps to a 253-run win in the second cricket test against England at the Oval. The pace bowler taking 11 wickets for captain Tom Latham.
12: Couldn't think of a better man to be in that position today and to get all the wickets as testament to the work he puts in.
8: And to Rugby League with Machinery House, a 38-20 NRL win for the Warriors over the Cowboys under the roof in Christchurch.
7: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill.
13: Hum par shok soochnaye aap tak laate hai. Anne's Funeral Home and On-Site Cremations.
14: Suchit kiya jata hai ki नगम्मा के पति यानी मोनिका, प्रिया, क्रिस्टीन और राहुल के पिता कृष्णमूर्ति आचार्य उर्फ बॉब हैंडीमैन की मृत्यु हो गई। अंतिम दर्शन के लिए अंतिम दर्शन कल रात 7 से 8 बजे तक रहेगा और अंतिम संस्कार बुधवार को 3:30 बजे एंड्स फ्यूनरल होम एंड ऑन साइट क्रिमेशंस 11 बोल्डउड प्लेस वीरी में किया जाएगा। श्रद्धांजलि और जानकारी के लिए आप 0211-771-181 पर संपर्क कर सकते हैं। नगम्मा देवी के पति यानी मोनिका, प्रिया, क्रिस्टीन और राहुल के पिता कृष्णमूर्ति आचार्य उर्फ बॉब हैंडीमैन की मृत्यु हो गई। अंतिम दर्शन कल रात 7 से 8 बजे तक रहेगा और अंतिम संस्कार बुधवार को 3:30 बजे एंड्स फ्यूनरल होम एंड ऑन साइट क्रिमेशंस 11 बोल्डउड प्लेस वीरी में किया जाएगा। श्रद्धांजलि और जानकारी के लिए आप 0211 7711 पर संपर्क कर सकते हैं। रीटा, सरिता और पोल की मां यानी शनील, प्रनील, रिया और सिमी की नानी, मबा मिशन हॉस्पिटल की भूतपूर्व कर्मचारी गोविंदम्मा की मृत्यु हो गई। अंतिम संस्कार आज 1 बजे एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रमेशंस 11 बोल्डरवुड प्लेस वीरी में किया जाएगा। श्रद्धांजलि और जानकारी के लिए आप 022-093-9749 पर संपर्क कर सकते हैं। रीटा, सरिता और पोल की मां यानी शनील, प्रनील, रिया और सिमी की नानी, मबा मिशन हॉस्पिटल की भूतपूर्व कर्मचारी गोविंदम्मा की मृत्यु हो गई। अंतिम संस्कार आज 1 बजे एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रमेशंस 11 बोल्डरवुड प्लेस वीरी में किया जाएगा। श्रद्धांजलि और जानकारी के लिए आप 022-093-9749 पर संपर्क कर सकते हैं। ऑकलैंड की किरण सिंह, रोहिणी देव और उषा राय की मां यानी चार्ल्स स्ट्रीट सुबह के स्वर्गीय मनीराम की पत्नी चंद्रवती सिंह की मृत्यु हो गई। अंतिम संस्कार की सूचना बाद में दी जाएगी। श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आप 19 रीगन रोड पापाटोई टोई जा सकते हैं या 279-3894 पर संपर्क कर सकते हैं। ऑकलैंड की किरण सिंह, रोहिणी देव और उषा राय की मां यानी चार्ल्स स्ट्रीट सुवर के स्वर्गीय मनीराम की पत्नी चंद्रवती सिंह की मृत्यु हो गई। अंतिम संस्कार की सूचना बाद में दी जाएगी। श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आप 19 रीगन रोड पापाटोई जा सकते हैं या 279-3894 पर संपर्क कर सकते हैं। भूरा एंड जोखन लिमिटेड सुबह के स्वर्गीय जय नारायण जोखन की पत्नी यानी रजनीश सेन, अंजनीश, जयंत, मोहिनीश और रोविन जोखन की मां, होटन स्ट्रीट सुबह की भूतपूर्व निवासी माउंट रॉस्किल की कमलावती जोखन उर्फ केवला की मृत्यु हो गई। अंतिम संस्कार शनिवार को 1 बजे वतुवांगा शमशान भूमि में किया जाएगा। श्रद्धांजलि और जानकारी के लिए आप 022-332-6843 पर संपर्क कर सकते हैं। भूरा एंड जोखन लिमिटेड सुबह के स्वर्गीय जय नारायण जोखन की पत्नी यानी रजनीश सेन, अंजनीश, जयंत, मोहिनीश और रोविन जोखन की मां, होटन स्ट्रीट सुबह की भूतपूर्व निवासी माउंट रॉस्किल की कमलावती जोखन उर्फ केवला की मृत्यु हो गई। अंतिम संस्कार शनिवार को 1 बजे वतुवांगा शमशान भूमि में किया जाएगा। श्रद्धांजलि और जानकारी के लिए आप 022-332-6843 पर संपर्क कर सकते हैं।
13: शोक सूचनाएं वीकडेज पर सुबह 6 तथा 11 बजे, शाम 6 बजे और वीकेंड्स पर दोपहर 12 बजे पर प्रसारित की जाएगी।
7: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
15: शिद्दत के साथ करते हैं।
7: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स। Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800-462626.
14: 12.5 degrees temperature abhi Auckland mein feel kar rahe hain. Aaj ka high 16, overnight kam se kam 9 degrees rahega. Aaj tadke subah kuch halki barish ho sakti hai, baad mein mausam saaf ho jayega. Sunrise 7:33 am par aur sunset aaj ka sham 5:13 par hoga.
7: Breakfast show with Vijay and Pooja,
16: brought to you by Fortune, with whole grains and essential vitamins. Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
7: Breakfast catch up.
14: 8 मिनट हो रहे हैं 6:00। नमस्कार, अ वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। वेलकम टू द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा। मंडे 22 जून है, आज की ये सुबह आपको मुबारक हो। आपको भी अ वेरी गुड मॉर्निंग।
3: गुड मॉर्निंग, नमस्ते, आप सभी को भी अ वेरी गुड मॉर्निंग। आज की सुबह की बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी ओर से।

0: जबकि ये तो रहेगा ही, लेकिन साथ ही साथ आपकी सुबह को एकदम इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग बनाने की पूरी कोशिश ये भी हमारी ओर से हम जारी रखेंगे। मतलब कोशिश तो यही करेंगे, और जहां पर हम आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेकर आए तो वहीं पर एंटरटेनमेंट का भी ख्याल रखा जाए, इस बात का ख्याल हम जरूर रखेंगे।
1: और इन सभी चीजों के बारे में हम जानकारियां आपको देंगे इस घंटे। आज का हमारा सनी साइड अप स्टोरी बस थोड़ी ही देर में होगा।

0: Sunnyside Up.
1: सत्रह मिनट हो रहे हैं, 6:00 आज की सनी साइड अप स्टोरी जो है इट्स अबाउट डिफाइनिंग वर्क प्लेस कल्चर्स, किस तरह से स्टीरियोटाइप कर दिया गया है और व्हाट द रियलिटी हैज़ बीन ऑन द ग्राउंड। तो क्या हुआ कि लास्ट वीक एक पर्सन जो है इन्होंने जाकर अपने मैनेजर के साथ और ऑफिस में जो कुछ हुआ वो लिंक्डइन पर शेयर किया और उसके बाद इसको लेकर काफ़ी बातें हुई हैं। एंड दिस पर्सन इज ए फुल टाइम प्रोफेशनल और एक दिन सुबह सुबह काफ़ी नर्वस होकर ये अपने ऑफिस गए मंडे मॉर्निंग एंड ही वाज डिस्ट्रैक्टेड, ही वाज एंग्शियस क्योंकि वो दिन उनके बच्चे का पहला दिन था ऑफ प्री स्कूल।
2: ओह ओके।
1: और ये एक किसी भी पेरेंट के लाइफ में बहुत बड़ा बड़ा माइलस्टोन होता है। एंड उन्हें ऑफिस आना था तो ही कुड नॉट गो टू द स्कूल और ही वाज मिसिंग हिज चाइल्ड और थिंकिंग अबाउट कि यू नो उसका पहला दिन एंड आई एम नॉट देयर फॉर द चाइल्ड और वो सारी चीज़ें। तो उनके मैनेजर ने उनके इस एंग्जाइटी को नोटिस किया और उनके पास गए एंड सीधे पूछ लिया कि क्या हुआ, तुम ऐसे डेस्क पर क्यों बैठे हो। तो एम्प्लॉय ने उन्हें समझाया कि क्या सिचुएशन है एंड द मैनेजर वेरी क्लियरली ऑर्डर्ड हिम कि अपना लैपटॉप बंद करो, लॉग ऑफ करो, गो बैक होम टू बी प्रेजेंट विद हिज चाइल्ड। मैनेजर ने उसे बताया ये प्रोजेक्ट कल भी यही होगा, तुम्हारे बच्चे का पहला दिन एट स्कूल सिर्फ एक ही बार होता
2: है, कल नहीं होगा। दैट इज सो अमेजिंग ना।
1: या
2: आई मीन इमेजिन शायद कोई यू नो नॉर्मल कहानी जो हम एक्सपेक्ट करते तो ऐसी अगर नहीं होती उसकी एंडिंग तो यही होती कि शायद मैनेजर को फ़र्क ही नहीं पड़ता कि वट्स द सिचुएशन लाइक, मैनेजर उससे कुछ कहता भी नहीं और शायद जाने की इच्छा भी होती अगर इसको तो उसकी इच्छा मार दी गई होती ये कहते हुए कि तुम्हारी ज़रूरत यहाँ है, अपना काम करो, तुम्हें काम करने के पैसे मिलते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला ब्ला ब्ला, जैसे कि आपने कहा जो स्टीरियोटिपिकल कहानी होती तो यही होती। बट जो हटकर होना है वो बहुत खूबसूरत है, बहुत बढ़िया है एंड आई मस्ट से ऐसी स्टोरी सुनते हैं तो सच में सुबह सुबह यू नो दिन बन जाता है।
1: और ऐसी ही दिन बनाने वाली कहानियां जो हैं सनी साइड अप में आपके लिए हम लेकर आते हैं।
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

0: वेट बीच को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माई एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी। बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशन, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वी've got the spotlight for your brand. Call me Kashika on 021-769-755. Media Works. Media that works.
1: Reliance Ventilation System.
2: Hi, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
1: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
2: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
1: Oh, that's not good. हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
3: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111। रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 ईयर्स।
4: दादी के हाथ की चूरी हो या माँ के हाथ के पराठे, सबका फेवरेट हलवा हो या तवे पे फूली हुई रोटी, हर याद में बसी है कशिश चक्की फ्रेश आटा की वही मीठी खुशबू, जो दिल भी जोड़े रिश्ते भी। Eat better, live better now with Kashish Chakki Fresh Atta and Multigrain Atta. Available in all leading stores nationwide. www.kashishfoods.co.nz.
5: The King Living Winter Sale is on now. Save up to 50% on Australian-designed, award-winning furniture. Come home to the future of furniture. Come home to King. Sale on now. Shop online or visit a King Living showroom today.
6: JB Hi-Fi is celebrating its stunning new store at Newmarket this Thursday from 5 p.m. with cost plus GST on products store-wide for 4 hours only. Don't miss out on huge savings only at JB Newmarket this Thursday 5 to 9 p.m. JB, you've done it again.
7: And then Mrs. Singh se maine pucha, enna achha khane ke saath kitchen mein reels aur TikTok kaise bana leti ho? Boli, bas, mera focus hai.
8: Achha,
7: batao, toada focus, saada kuch nahi.
8: Shh, Mrs. Singh.
9: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने।
10: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहूहू। कॉल 09281-3050 और विजिट focuskitchens.co.nz।
11: द बीट ऑफ बॉलीवुड,
12: वर्ल्ड्स बेस्ट, हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
11: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
13: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. Global Headlines.
14: आज सुबह के मुख्य समाचारों में, यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस स्विट्जरलैंड में ईरान के साथ बातचीत कर रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान और कतार मीडिएटर हैं और नेगोशिएशंस का फोकस लेबनान कॉन्फ्लिक्ट, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम्स पर हैं। एक तरफ जहां वांस ने शुरुआती प्रोग्रेस की बात कही, वहीं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर डील नहीं हुई तो वो फिर से बॉम्बिंग शुरू कर देंगे और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर कब्जा कर लेंगे, जैसे ईरान ने उनका डेस्परेशन बताया है। इसराइल और हेजबोला के बीच चल रही लड़ाई ने इस डिप्लोमेटिक प्रोसेस को मुश्किल में डाल दिया है, जहां लेबनान पर इसराइली स्ट्राइक्स के बाद ईरान ने स्ट्रेट को बंद करने की बात कही है। हालांकि यूएस मिलिट्री ने इस वोटरवे पर ईरान के कंट्रोल से इनकार किया है। भारत में सीनियर कांग्रेस एमपी शशि थरूर को जम्मू कश्मीर में एनकरेजिंग नॉर्मलसी की बात कहने पर अपनी ही पार्टी से भारी विरोध का सामना करना पड़ा है। थरूर ने श्रीनगर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मिलने के बाद एक्स पर पोस्ट किया था कि वहां हालात बेहतर हो रहे हैं, जिसे देखकर उन्हें काफी पॉजिटिव महसूस हुआ है। कांग्रेस के जम्मू और कश्मीर के प्रवक्ता रविंदर शर्मा ने बताया कि ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि थरूर को ग्राउंड रियलिटी समझने के लिए लोगों से मिलना चाहिए था। फिजी में लाओ ग्रुप में मिले 27 पार्सल्स जिनमें व्हाइट सब्सटेंस है की टेस्टिंग सुबह के फिजी पुलिस फोरेंसिक्स लैब में चल रही है, जबकि मुनिया आइलैंड के पास तैरते हुए मिले 35 और पार्सल्स को निकालने के लिए नेवी को भेजा गया है। फिजी विलेज की एक रिपोर्ट के अनुसार इससे पहले कंदावू में मिले एक प्लास्टिक पार्सल में कोकेन होने की पुष्टि हुई थी और अब गामिया के शो लाइन पर भी एक पार्सल मिला है, जिसके बाद पुलिस रीजनल और लोकल पार्टनर्स के साथ मिलकर इनके सोर्स का पता लगा रही है। फीफा वर्ल्ड कप के अंतर्गत मैचेस जो है ये आज एक बार फिर खेले जा रहे हैं। आज सुबह स्पेन की जीत सऊदी अरेबिया के खिलाफ 4-0 से हुई। सुबह 7 बजे बेल्जियम ईरान से खेलेगा, 10 बजे यूरुग्वे और केप वर्डे का मैच खेला जाएगा, जबकि 1 बजे ऑल वाइट्स इजिप्ट का सामना करेगा। इन मैचेस पर अपडेट्स आपके लिए हम जरूर लेकर आएंगे। उधर आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप जो है के मैचेस लगातार खेले जा रहे हैं। कल वेस्ट इंडीज वुमेन की जीत श्रीलंका के खिलाफ 5 विकेट से हुई, जबकि साउथ अफ्रीका ने इंडिया को 6 विकेट से हराया। इंडिया ने अपने इनिंग्स में 7 खिलाड़ी खोकर 158 रन बनाए। साउथ अफ्रीका ने 19.1 ओवर्स में 4 खिलाड़ी खोकर 161 रन बना लिए थे। उससे पहले इंग्लैंड की जीत स्कॉटलैंड के खिलाफ हुई थी। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 23 रन से हराया और ऑस्ट्रेलिया की जीत नेदरलैंड्स के खिलाफ 98 रन से हुई। कल रात 9:30 बजे न्यूजीलैंड की भिड़ंत स्कॉटलैंड से होगी और इस मैच पर अपडेट्स आपके लिए हम लेकर आएंगे। फिजी में बिग फिजी फैक्ट के सेमीफाइनल्स का फैसला हो चुका है। शनिवार को पहला सेमीफाइनल लंबासा और मबा के बीच खेला जाएगा, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में लंबासा नावुआ दूसरे सेमीफाइनल में लोटोका नावुआ से खेलेगा। इन मैचेस पर अपडेट्स आपके लिए हम लेकर आएंगे। ये रहे सुबह के ग्लोबल हेडलाइंस।
15: सीधा अंदर आऊं
16: मैं लाऊं अपना ए गेम।
17: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा आपके लिए जारी है और हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स। फिलहाल 25 मिनट रह गए हैं 7 बजे में और काफी ईगली अवॉइटेड मूवी जो है ये ओवर द वीकेंड रिलीज हुई, कॉकटेल 2।
1: Oh, okay. How was it? I mean, I don't know. I haven't seen it. पर आपने देखी क्या?
0: नहीं, मैंने तो अभी तक नहीं देखी। शाहिद कपूर, कृति सनोन, रश्मिका मंदना, इनका जो रोमांटिक ड्रामा है इसको, इसमें काफ़ी ग्रोथ जो है ये देखने को मिला है। कहीं कहीं पर इस फिल्म को कुछ मिक्स्ड रिव्यूज़ मिले हैं, लेकिन अच्छा ऑडियंस सपोर्ट जो है ये मिला, जिसके बाद आज बाद में चलकर कहा जा रहा है कि एक अच्छे वीकेंड की रिपोर्ट जो है ये मेकर्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
1: ओके, दैट्स गुड। फिल्म बनाने में बहुत मेहनत लगती है और जब उसे अप्रिसिएशन मिलती है या पसंद किया जाता है तो अच्छी बात होती है। बट द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इन दिस पर्टिकुलर केस इज कि इट्स बेसिकली एक बहुत ही पॉपुलर फिल्म जिसका एक पार्ट 2 और फ्रेंचाइज वी कैन से ये आया है विद अ डिफरेंट कैरेक्टर, विद अ डिफरेंट स्टोरी। बट इसे भी एक्सेप्ट किया जा रहा है जस्ट लाइक हाउ कॉकटेल 2 वाज एक्सेप्टेड, तो ये एक अच्छी बात है फॉर द मेकर्स ऑफ द मूवी। फिलहाल चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए, आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग बॉलीवुड खबरें तो हम लेकर आएंगे जरूर, लेकिन उससे पहले सबसे जरूरी आपके प्यारे प्यारे मैसेजेस जो आपने सुबह सुबह हमें भेजे हैं उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बॉबी वान जी, सुबह 4 बजे ही अपना मैसेज इन्होंने हमारे पास भेज दिया था आज, और इन्होंने आज कहा है कि गुड मॉर्निंग पूजा एंड विजय, हैव एन ऑसम वीक अहेड, महादेव्स ब्लेसिंग्स, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच बॉबी जी, आपको भी आज के सुबह की बहुत सारी शुभकामनाएं।
0: राम राम, जय श्री कृष्णा, हैप्पी मंडे एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे। मिस्टर माटा माटा की ओर से मैसेज आया है, आपको भी इस दिन इस सुबह की बहुत सारी शुभकामनाएं।
1: और इनके अलावा आज अगर देखा जाए तो मैंडी, जस्ट लाइक एवरी मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज एज वेल एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू।
0: गुड मॉर्निंग विजय जी, पूजा जी, हर हर महादेव, विशिंग यू बोथ अ वंडरफुल एंड ब्लेस्ड डे। विमलेश और प्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपके भी मैसेज के लिए।
1: वैसे अगर आप भी अपने गुड मॉर्निंग मैसेजेस हमारे पास भेजना चाहते हैं या कोई भी मैसेज हो डेडिकेशन के लिए या फिर बर्थडे है उसके लिए आप जानकारी देना चाहते हैं, तो व्हाटएवर द सिचुएशन इज जस्ट टेक्स्ट इट टू अस ऑन 5599। रिमेम्बर 5599, इस नंबर पर अपने मैसेजेस आप हमारे पास भेज सकते हैं और बदले में आपके मैसेजेस पाते हुए जबकि हमें बहुत खुशी होगी तो आपके लिए शाउट आउट भी हम जरूर करेंगे।
2: Breakfast show with Vijay and Pooja.
3: Don't mind, लेकिन आप दोनों की जोड़ी बड़ी क्यूट है।
4: Traffic. The LifeWise Trust Big Sleep Out. Please donate now.
5: A high of 17, Fines Vales increasing through the day. Citybound on motorways starting to slow a bit. Southern 22 minutes in from Manukau to town. 45 from Drury. Slow patches, Drury on and off to Manurewa. Northwestern 22 minutes in from Massey. Better traffic west of Massey and slow Massey to Te Aratu. Southwestern fine. Northern 20 in from Constellation. Slow there to Milford and around Esmen.
4: Support Auckland's homeless by donating at bigsleepout.org.nz.
6: रेडियो पे गानों की फरमाइश की जा सकती है, अपनों के नाम संदेश भेजे जा सकते हैं, मगर रेडियो पे अपने ट्रेडिशन की खुशबू भेजनी हो तो नहीं भेज सकते ना। उसके लिए अपनों को खाने पे बुलाएं, रिश्तों को और करीब लाएं। कशिश प्रीमियम बासमती राइस, ईट बेटर लिव बेटर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग इन टू www.kashishfood.co.nz, available at all leading stores.
7: Snooze and save at the Beds R Us winter sale on now with up to 50% off selected sleepyhead beds. Get 50% off Serenity Eden queen size now from 2799. Check out these deals and more at Beds R Us Manukau and Pukekohe, where dreams begin.
8: Want $500 to spend on your next interest-free phone? Simon's all over it. Join 1NZ on an eligible pay monthly plan this June only to redeem your phone dollars. T's and C's apply. One New Zealand. Let's get connected.
9: अरे सुनो, मुझे इस डोसा बैटर के साथ फ्री कंटेनर मिला।
10: फ्री कंटेनर तो अच्छा है, लेकिन डोसा कैसा था?
9: डोसा तो ठीक ही था, लेकिन कंटेनर देखो कितना अच्छा है।
10: फ्री गिफ्ट्स लोग भूल जाते हैं, असली टेस्ट के लिए ही वापस आते हैं।
11: इंट्रोड्यूसिंग द न्यू चटनी रेंज फ्रॉम अम्मास फूड, ट्रेडिशनल कोकोनट, टैंगी टोमेटो और क्रंची पीनट चटनी, परफेक्ट विद अम्मास इडली और डोसा बैटर। अम्मास फूड, 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव, नाउ अवेलेबल एट ग्रोसरी स्टोर्स नियर यू।

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
2: अभी इस समय की ओर देखे 20 मिनट रह गए हैं 7 बजने में। भाई 6 बजे की 7 एकदम बजने में देर नहीं लगती। ब्रेकफास्ट शो किस तरह से शुरू होता है, कैसे ख़त्म होता है, कुछ पता ही नहीं चलता। इसके अलावा आज 22nd ऑफ जून अगर आपका बर्थडे है, शादी की सालगिरह है या आपके किसी चाहने वाले का स्पेशल डे है, मेक श्योर समय से पहले अपने मैसेजेस प्लीज़ आप हमें भेज दें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि आपके मैसेजेस बहुत देर से आते हैं तो उनको समय ढूंढ कर किसी एक टाइम पर हम पेश करते हैं। एंड मे बी वो ऐसे टाइम पर होता है, बाय देन यू आर गॉन ऑफ टू वर्क और स्कूल।
3: यस, एंड देन आपके मैसेज भेजने का वो पर्पस जो है ये रहता ही नहीं ना, दैट यूड बी एबल टू मेक दैट पर्सन लिसन जिनके लिए आपने ये डेडिकेशन किया हो, या फिर आप खुद इसको सुन सके जब आपने स्पेशली किसी के लिए के हमारे पास भेजा हो। तो रिमेम्बर 7:40 इज द टाइम अराउंड विच हम नॉर्मली जबकि बर्थडे विश जो है ये करते हैं। तो अगर आज ऑन दिस वेरी स्पेशल डे 22nd ऑफ जून किसी का बर्थडे है, लेट अस नो। आप हमारे पास अपने मैसेजेस 5599 पर जरूर सेंड कर सकते हैं। ये रोमांटिक गाना जो है आपके लिए प्ले करने से पहले चलिए एक सवाल जो है ये हो जाए। देयर सो मेनी एनिमल्स अराउंड और अलग अलग एनिमल्स की अलग अलग यू नो स्पेशलिटी होती है, कुछ ना कुछ इतना खास होता है उनमें जो उन्हें इतना स्पेशल, जो उन्हें इतना अलग जो है ये बनाता है। पर क्या आपको पता है ऐसे कुछ एनिमल्स भी है इस दुनिया में जिनके अगर बॉडी पार्ट्स जो है ये कट हो जाए या फिर चोट लग जाए और उसकी वजह से वो बॉडी पार्ट इनका जो है ये यू नो इनके बॉडी से अलग हो जाए, they are capable of regenerating that particular body part. ऐसे बहुत से animals हैं, पर अगर आप हमें किसी एक ऐसे animal के बारे में बता सके which can generate or regenerate its body parts, तो आज आपके सवाल का या हमारे इस सवाल का जवाब जो आप देंगे वो सही होगा। पर देखना ये है कि क्या आपको पता है ऐसे किसी एनिमल के बारे में या नहीं। इफ़ यू डू नो तो 5599 पर हमारे पास आप टेक्स्ट कर सकते हैं।
2: तो क्या आपको ऐसे किसी एक एनिमल के बारे में पता है, पता है तो BF अपना आंसर, अपना नाम, ये तीन चीजें लिखकर 5599 पर हमारे पास जल्दी से भेजिए।

0: show with Vijay and Pooja.
1: Chubo jao, papi ho. Chubo jao.
2: Driving you home.
3: The Drive Show with Sandy and Rusby.
4: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
5: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने।
6: वो भी I love you वाला।
5: मैडम ने पकड़ लिया भी हाँ किसने बनाया? वो एक लड़की थी वो बोलती जहाज तो दूसरी बना रहा था बेटा।
6: अच्छा आप तो
5: आए आए बताओगे यार।
3: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku. Hum, accurate traffic.
7: New limited edition sweet sriracha chicken parma.
8: More sunshine through the day, got a high of 17. Southwestern motorway fine both ways, but heading to the airport terminal, just a bit of traffic slowing you on George Bolt. Southern 30 minutes, Manukau to town 55 from Drury, we're slow on and off Papakura through to Mount Wellington. Northwestern 25 and from Massey, slow there to Te Aratu and St. Luke's to the city. Northern 22 from Constellation, slow all the way from Greville.
7: Lips will tingle. Enjoy the sweet sriracha chicken parma at Peter Pit, egged and bold.
9: With the Genesis app, LPG delivery feels easy. Switch to Genesis LPG Empower to get $15 credit per bottle delivered, plus 50 free power shout hours. Eligibility criteria and terms apply. Genesis, with you. For you.
10: Whether you have a tickly or razor blade sore throat, there's a Difflam sore throat lozenge to soothe or numb your pain. Definitely Difflam. Sore throat sorted. Always read the label. Use as directed. If symptoms persist, see your healthcare professional. Radiant Health Auckland.
11: Tori and Ben didn't think they needed a DVS system.
12: We've got double glazing.
11: Have you still got that cold, damp feeling?
13: Yeah, we do.
11: So Tori and Ben got DVS home ventilation and its fresh air in, stale air out technology went to work, making their rooms drier and healthier. Say no to that cold, damp feeling. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without it.
14: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
15: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
14: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800-4626-26 today.
15: Available at selected branches. T's and C's apply.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
3: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
0: Breakfast catch up. Throwback.
16: Throwback ka waqt ho chuka hai, lekin usse pehle sawal aapne kuch pucha tha.
17: जी, एनिमल्स के बारे में आज सुबह सुबह हमने सवाल किया कि ऐसा कोई एनिमल जिसके बारे में आपको पता हो कि जो अपने बॉडी पार्ट्स को रीजनरेट कर सकता है. ऐसे बहुत से एनिमल्स हैं, पर अगर आपको ऐसा कोई पता हो, एक तो जिसके बारे में बचपन से जानते हैं, शायद हम सब ने देखा हो कभी ना कभी, और इसको देखने के बाद भाई बोलते हैं ना कि डर जो है वो फील हो जाता है. मुझे तो होता है, आई डोंट नो अबाउट अदर्स.
16: एंड
17: नहीं, सांप नहीं,
16: तो
17: दिस अदर लाइक इट्स नॉट एन एनिमल बट How do I say it? It's
16: I don't
17: like
16: know.
17: A chota sa insect jaisa, but hai animal mein counted mere khayal se. Anyways, to abhi tak agar dekha jaye, hamare paas Vandana ji inka message aaya hai aur inhone wahi jawab diya jiske bare mein main soch rahi hu. Ronald ka answer aaya hai, inhone Vandana ji jaisa hi jawab diya hai, matlab exact same answer. Aur Fiza ne apna answer jo hai ki hamare paas bheja hai, lekin inka jawab thoda alag hai.
16: निलेशनी का आंसर भी एकदम अलग है बाकी के सारे जवाबों से. सो इट विल बी इंटरेस्टिंग. आपको भी ऐसी किसी जानवर के बारे में, ऐसे किसी जीव के बारे में पता है जो अपने बॉडी पार्ट्स को रीजेनरेट कर सकता है, तो आप हमें बताएं. BF अपना आंसर और अपना नाम अभी अगर देखें तो 1, 2, 3, 4 चार लोगों ने अपने जवाब जो है ये हमारे पास भेजे हैं.
17: तो आप भी अपना जवाब हमारे पास भेज सकते हैं. फिर नो दी आंसर, रिमेंबर 5599 पर आप मैसेजेस हमारे पास सेंड कर सकते हैं. एंड सुबह 7 बजे वाले न्यूज एंड स्पोर्ट्स अपडेट के बाद विल सी कि आप में से और कितने लोगों ने आंसर्स भेजे हैं, या फिर कितनों का सही और कितनों का गलत जवाब है, ये भी हम जरूर चेकआउट करेंगे आप सभी के साथ. तो इसके लिए आपको बस हमारे साथ ही बने रहना है, और इसके अलावा चलिए आपके लिए जबकि आज का पहला थ्रोबैक हम पेश कर रहे हैं एंजॉय दिस वन सोनू निगम अलका याग्निक की आवाजों में. अगर रिमेम्बर कोई बर्थडे ग्रीटिंग है एनिवर्सरी ग्रीटिंग है तो अभी हमारे पास भेज दीजिएगा.

0: Welcome to Morning Madness on Hum, playing Bollywood's biggest hits. The breakfast show with Vijay and Pooja आपके लिए जारी है और अभी अगर देखें तो 3 मिनट हो रहे हैं 7:00 और इस घंटे भी तमाम चीजें होंगी.
1: Absolutely, जहाँ पर शुरुआत हम करेंगे आज के आपके दिन के साथ, मतलब आज का आपका दिन कैसा बीतेगा आपके हॉरोस्कोप्स के अनुसार, ये आपके साथ हम जरूर शेयर करने वाले हैं, जिसके लिए आप बस हमारे साथ ही रहिएगा. पर ऑन द अदर हैंड, हमने पिछले घंटे सवाल भी किया था और इसका जवाब जो है कि हमने कहा था 5599 पर आप हमें दे सकते हैं. सिंपल सा क्वेश्चन था कि ऐसा कौन सा एनिमल है जिसके बारे में आपको पता है जो अपने बॉडी पार्ट्स को रीजेनरेट कर सकता है, मतलब अगर ये इनके शरीर से अलग हो जाए तो इन्हें वापस से ये उगा सकता है. ऐसा कोई जानवर जिसके बारे में आपको पता हो. तो और भी लोगों ने अपने अपने मैसेजेस हमारे पास भेजे. एक अवनीत है, साथ में बॉबी है, इनका भी आंसर जो है ये आया है. थैंक यू सो मच आपके मैसेजेस के लिए. और सभी ने इनफैक्ट एक जवाब जो है कॉमन दिया है, वो है लिजर्ड, यानी कि छिपकली. लेकिन सिर्फ मेरे ख्याल से निलेशनी इनका आंसर अलग आया है.
0: अफीजा,
1: ओ हाँ अफीजा, इन्होंने भी इनफैक्ट अलग आंसर जो है ये दिया है. सो निलेशनी ने कहा है डिया, यानी कि हिरन ना, हिरन को ही डिया बोलते ना. ये यूनिक होते हैं. दे आर अमंग मैमल्स फॉर देयर एबिलिटी टू फुली रीजेनरेट द एंटायर सेट ऑफ बोन एंड Antlers covered in their skin each year. ये इन्होंने कहा है. तो देखिए तो काफी you know interesting है, काफी अनोखा है. But I've got a list जिसमें axolotl, साथ में green iguana, starfish जो कि pizza का आंसर था, flatworm और साथ में मेरे ख्याल से zebra fish और spiny mouse ये शामिल है, sea cucumber, salamander, साथ में crayfish एंड ऑक्टोपस के बारे में इनफैक्ट मेंशन किया गया कि वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं एंड दे कैन एक्चुअली रीजेनरेट सम ऑफ देयर बॉडी पार्ट्स अगर वो इंजर्ड हो जाए या फिर कोई प्रेडेटर उनको अगर चोट पहुंचाने की कोशिश करे, उनका कोई बॉडी पार्ट डैमेज हो जाए. उसके साथ साथ जो लेपर्ड गेको होते हैं इनके बारे में भी कहा गया है. आई डिडंट नो अर्थ वर्म्स कैन ऑल्सो डू दैट बाय द वे, लेकिन अर्थ वर्म्स के बारे में बताया गया है कि दे आर क्वाइट स्मार्ट और वो अपने बॉडी पार्ट्स को रीजनरेट जो है ये कर सकते हैं. सो बेसिकली द लिस्ट इज क्वाइट लॉन्ग, बट इसमें ज़्यादातर सी क्रीचर्स और साथ में वो शामिल है, क्या बोलते हैं उसको, रेप्टाइल फैमिली से जो बिलोंग करते हैं, इगुआनास एंड लिजर्ड्स एंड ऑल. बट यस, निलेशनी ने जो जवाब दिया था डिया, जो कि डिया एंटलर्स होते हैं, इनके बारे में इन्होंने मेंशन किया था, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर लिस्ट.
0: मुझे तो एक भी नहीं पता था,
1: मुझे सिर्फ लिजर्ड्स के बारे में पता था. आई डिडंट नो कि इतने सारे होते हैं. आई ओनली न्यू लिजर्ड्स, बट इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग ना, कितना फैसिनेटिंग है यार नेचर. एंड इफ यू एक्चुअली कम टू अंडरस्टैंड, तो देयर आर सो मेनी डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स यू कैन एक्चुअली टॉक अबाउट और उसे आप सेलिब्रेट भी कर सकते हैं.
0: Exactly. By the way, क्या आपको पता है Norway is one of the wealthiest countries in the world?
1: Yeah, recently पता चला मुझे.
0: Okay, और Norway का जो pension fund है, that itself is worth over $2 trillion.
1: Wow.
0: 2 trillion कितना होगा? कितने जीरो लगते होंगे ट्रिलियन में?
1: वो नहीं पता, इतना जरूर पता है कि recently क्या नाम है उनका?
0: पता नहीं क्या नाम है.
1: अरे जो टेस्ला के मालिक है यार, नाम भूल
0: गया. इलोन मस्क. हाँ,
1: इलोन मस्क जो है ये ट्रिलियनियर बन चुके हैं, ये मुझे पता है. और 1 trillion इनका जो नेटवर्थ है ये हो चुका है ना
0: भाई. इट्स फनी ना, कोई दुनिया में ट्रिलियन बन गया और हम जैसे लोग हैं जिनको
1: ट्रिलियनिया बन गया.
0: अरे हाँ, वो ट्रिलियनिया बन गया और हम जैसे लोग हैं जिनको ये नहीं पता ट्रिलियन में जीरोस
1: कितने लगते हैं. क्या फायदा इनके ट्रिलियनिया बनने का?
0: अरे भाई, ट्रिलियनिया जिसको पता ही नहीं कि जीरो कितने लगते हैं, वो बनेगा कैसे?
1: वो बात भी अलग है.
0: तो नॉर्वे का जो पेंशन फंड इज वर्थ $2 trillion और उसके 5.6 मिलियन सिटीजन्स हैं. अगर उसको देखा जाए तो रफली $385,000 फॉर ईच पर्सन.
1: वाओ,
0: ये है उसके पेंशन फंड में.
1: नॉर्वे जा सकते हैं क्या?
0: जा सकते हैं, वापस आना
1: नहीं,
0: पड़ेगा.
1: बस सकते हैं वहाँ पे जाके.
0: हाँ, बस
1: पेंशन
0: सकते हैं
1: का फायदा उठाने के लिए.
0: I really don't know, but yeah. अगर
1: I don't know हमारा क्या होगा by the time we reach the age of pension, you know.
0: चलो आज Google नहीं करते ना. आप में से किसी को अगर पता है ट्रिलियन में कितने, किसी ना किसी को तो पता है. There are so many financial experts around ना.
1: ट्रिलियन में कितने zeros होते हैं? मिलियन में 6 होते हैं, तो मिलियन में शायद एक होगा 7, ट्रिलियन में शायद 8 होंगे. एक एक जीरो अगर हम बढ़ा दे, लेट्स सी, आई एम सेइंग इट्स 8, बट लेट्स सी, अकॉर्डिंग टू दिस लॉजिक कि मिलियन में 6 होते हैं उस लॉजिक के हिसाब से आई एम गोइंग एंड मैं अपना जवाब दे रही हूँ इज 8. आई डोंट नो व्हाट इज द करेक्ट आंसर बट वी कैन फाइंड आउट.
0: ओके, अगर आपको आप हमारी कैटेगरी में फॉल होते हैं तो भी बताएं. फ्रेंकली डोंट गूगल, बगैर गूगल किए हम जैसे एकदम ऑनेस्ट होकर बता रहे हैं, हमको नहीं पता ट्रिलियन में कितने जीरोस लगते हैं. आपको अगर पता है तो वो आप हमें टेक्स्ट करके बताओ, और अगर नहीं पता है तो कम से कम हमें थोड़ी खुशी होगी कि हम अकेले नहीं है दो.
1: हाँ, हम ही दो बेवकूफ नहीं.
0: आप में से भी कोई है अगर जिसको पता नहीं है कि ट्रिलियन में कितने जीरोस होते हैं तो हमें जरूर बताएं. एंड इफ यू करेक्टली नो द आंसर तो वो भी आप 5599 पर टेक्स्ट करके हमें जरूर बता सकते हैं.
1: बट वी विल डेफिनेटली चेक एंड वी विल डेफिनेटली रिवील व्हाट्स द करेक्ट आंसर
0: थोड़ी देर बाद.
2: हेलो बोलो. हेलो दादाजी.
3: हेलो.
2: अरे वाह, फोकस कर रहे हैं, वेरी गुड. क्या सीन है भाई, कुड़ी पसंद तो

0: नॉन स्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम। हाँ।

0: So here are your Rashi vibes for today. सबसे पहले मेष यानी एरिस आपके लिए कहा गया है कि आज आपको काफी सपोर्ट मिलेगा, फायदा होगा. बिजनेस ट्रेवल या फिर किसी पर्सनल काम से भी आप बाहर जाएंगे तो आपका ट्रेवल अच्छा रहेगा, लेकिन बेकार में किसी के साथ ना उलझें.
1: वृषणी टोरस, आज आपके लिए कहा गया है कि अचानक से पैसे खर्च होंगे जिसकी वजह से फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम्स आपके लिए खड़े हो सकते हैं और दूसरों के झगड़े में ना पड़े, ये सलाह भी आपको दी जा रही है. चीजों को संभाल कर रखें, ऐसा भी आपके लिए बताया गया है. रिस्क से जितना आप दूर रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा, ऐसा भी आज आपको बताया जा रहा है.
0: मिथुन यानी जेमिनी, रुका हुआ पैसा आपको मिलेगा, बिजनेस ट्रेवल अच्छा जाएगा और आज आपका रोमांटिक लाइफ भी काफी बढ़िया होगा और रुका हुआ काम समय पर पूरा हो जाएगा, इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है ये भी बढ़ेगा.
1: कर्क ने कैंसर, आपके लिए कहा गया है कि कुछ लोग हैं जो आपके साथ रहेंगे, आपको एडवाइस भी करेंगे, आपको सहायता प्रोवाइड करेंगे जहां भी आप रुकने वाले हैं या अटकने वाले हैं, और इसकी वजह से आपके रुके हुए कामों में एक रफ्तार भी आएगी, समय पर पूरा करेंगे आप, जिनसे भविष्य में चलकर बहुत फायदा होगा. हेल्थ पर ध्यान दें, ऐसा आपके लिए बताया गया है, और थोड़ा केयरफुल हो जाए, जितना केयरफुल होकर आप अपना काम करेंगे उतना अच्छा आपके लिए साबित होगा.
0: सिंह यानी लियो, ट्रेवल एंटरटेनिंग होगा, इन्वेस्टमेंट के लिए दिन अच्छा है, बाहर से सपोर्ट आपको मिलेगा जिससे आपका काम आसानी से होगा और बिजनेस बढ़िया चलेगा आपका. और ये इम्पोर्टेंट है कि अपने जो रिलेशनशिप्स हैं विद फैमिली मेंबर्स और विद अदर पीपल, इनको आज आप इम्पोर्टेंस दें.
1: कन्या यानी कि वर्गो, आपके लिए कहा गया है चोट और रोग से बचने की पूरी कोशिश करनी चाहिए आपको, अदरवाइज भविष्य में चलकर बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है. जल्दबाजी आपके लिए हानिकारक हो सकता है और दूसरों पर विश्वास या अधिक विश्वास ना करें, इससे भी आपका बहुत बड़ा नुकसान होगा.
0: तुला यानी लिब्रा, आज घर बाहर खुशियां बनी रहेंगी और बिजनेस अच्छा चलेगा, पैसों का फायदा होगा, ऑफिस में दिन बढ़िया जाएगा और बाहर आपके काम में कुछ डिलेज हो सकते हैं विच कैन बी वरिंग और फैमिली लाइफ आपका ठीक ठाक ही रहेगा.
1: वृश्चिक ने की स्कॉर्पियो, आपके लिए कहा गया है कि प्रॉपर्टी के मामले में बड़े बड़े सौदे होंगे और इनसे जुड़ा बड़ा बड़ा फायदा आपके हाथ लगेगा. आप भी प्रोग्रेस के रास्ते चल पड़े हैं तो इस वजह से आपको काफी ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स जो है ये मिलेंगे, आप खुश रहेंगे. बिजनेस में भी जो परेशानियां आपकी थी ये दूर होंगी, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा.
0: धनु यानी सेजिटेरियस, आज किसी पार्टी वगैरह के लिए इनवाइट आपको मिल सकता है, पैसे मिलेंगे, कोई अच्छी खबर भी सुनने को आपको मिल सकती है. समाज में या फिर अपने पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट के बीच आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ने वाली है.
1: और इसके अलावा आपको ये भी हम याद दिला दें, मकर यानी कैप्रिकॉर्न, पैसों के मामले में आपके लिए काफी अच्छे चीजें जो है ये सामने आ सकती है. जो चिंता थी वो भी दूर होगी. आपके बच्चों को लेकर अगर आप किसी चीज को लेकर थोड़े वरित थे, उनके व्यवहार को लेकर आप थोड़े से वरित थे, तो ये भी आपका जो यू कह सकते हैं डर है ये दूर होगा. और कोई एक बुरी खबर मिल सकती है आज आपको, जिसके लिए मेंटली आपको थोड़ा प्रिपेयर रहना होगा.
0: कुंभ यानी एक्वेरियस, घर बाहर लोग काफी इंक्विजिटिव रहेंगे आपके बारे में और ट्रेवल एंटरटेनिंग होगा, खुशियां आज बढ़ेंगी आपको, एक्सपेंसेस थोड़ा कम रखने की कोशिश करें, फैमिली में बहुत ही प्लेजेंट एनवायरनमेंट रहेगा.
1: और फाइनली मीन यानी पाइसेस, आपके लिए कहा गया है पुराने दोस्तों के साथ, संबंधियों के साथ अच्छा समय बीतेगा, अच्छी खबर मिलेगी, खुश रहेंगे आप. जहां पर आपको ऐसे बहुत से सिचुएशंस का सामना करने को मिल सकता है जिससे आपको एक अच्छी खासी सीख जो है ये भी मिले. तो दीज वर योर राशि वाइब्स फॉर टुडे. उम्मीद करते हैं दिन आपका सभी का बहुत ही अच्छा और कमाल का गुजरे, और इसी उम्मीद के साथ साथ बस थोड़ी देर बाद आपके लिए मॉर्निंग मैडनेस में आज का सेलिब्रिटी अलार्म हम लेकर आने वाले हैं.
0: बाय द वे, हम ट्रिलियनियर्स या ट्रिलियन के बारे में बातें कर रहे थे तो कविता ने कहा, अपना आंसर भेजा है सतीश है. प्रिया ने कहा है नो आइडिया हाउ मेनी जीरोस इन ट्रिलियन.
1: वेलकम ऑन बोर्ड प्रिया, थैंक यू सो मच हमारे पास अपना मैसेज ये भेजने के लिए. और उसके अलावा सनी वेल से हमारे पास अश्मीत का मैसेज आया है, सनी वेल हैंडरसन से इन्होंने अपना जवाब दिया है, साथ में निलेशनी ने भी अपना आंसर जो है ये हमें दिया है.
0: अनुरीत, थैंक यू सो मच आपके जवाब के लिए. और उसके अलावा राजू का मैसेज जो है ये आया है, एंड राजू ने कहा है जय शिव शंभु, विजय भाई एंड पूजा जी, हैव अ ब्लेस्ड डे. राजू आपको भी ये सुबह बहुत बहुत बार शुभ और मुबारक हो.
1: और इसके साथ साथ हमारे पास एक और एक मैसेज आया है, इनका नाम नहीं है लेकिन 4281 से इनके मोबाइल नंबर के लास्ट फोर डिजिट्स फिनिश होते हैं. इन्होंने कहा है तुला, यानी कि तुला हॉरोस्कोप के बारे में, राशि के बारे में ये जानना चाहते हैं।
0: घर बाहर खुशियां होंगी आपके लिए, बिजनेस ठीक ठाक चलेगा, पैसों का फायदा होगा, ऑफिस में दिन बढ़िया जाएगा। बाहरी कामों में कुछ डिलेज से आप थोड़े वरीड हो सकते हैं बेसिकली, तो इंतजार करें, थोड़ी ही देर में आपके लिए सेलिब्रिटी अलार्म हम लेकर आएंगे।
2: बॉलीवुड का असली ब्लॉकबस्टर,
3: पूरे शहर पे कब्जा होगा, राज होगा,
2: प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स।
4: वो दिन जब मोहब्बत खतों में होती थी,
5: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज ना होना,
4: और गानों में ज-

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: अलार्म।
1: हिट इट। 25 मिनट हो रहे हैं, 7:00 सेलिब्रिटी अलार्म का वक्त हो चुका है। लेकिन इससे पहले ईस्टर वीकेंड के लिए आपके प्लान्स क्या हैं? अपने स्केड्यूल को क्लियर कर लें, क्योंकि वी हैव गॉट योर लॉन्ग वीकेंड सॉर्टेड।
2: Yes, and when we are saying Easter weekend, we are definitely not talking about the Easter weekend जो इस साल अप्रैल महीने में गया। We are talking about the Easter weekend जो अगले साल आने वाला है। But what is it all about? Well, surprise के लिए हमारे साथ ही बने रहिएगा।
1: फिलहाल आज का हमारा सेलिब्रिटी अलार्म पहचानने की कोशिश करें कि ये आवाज किन की है।
3: My weaknesses, man. I think I'm a very weak human being.
1: तो ये है आज के हमारे सेलिब्रिटी।
2: कोई आइडिया नहीं कौन है ये।
1: कोई आइडिया नहीं?
2: नो, नॉट एट ऑल। आई हैव नो सिंगल आइडिया कि ये कौन हो सकते इवन, वो भी नहीं पता मुझे।
1: अच्छा, एक बार फिर आप सुने, एक बार अच्छी तरह से आप सुने।
3: माय वीकनेसेस, मैन, आई थिंक आई एम अ वेरी वीक ह्यूमन बीइंग इन टर्म्स ऑफ माय वेरी एग्जिस्टेंस। आई कीप फॉलिंग एंड मैं गिरता हूँ, संभलता हूँ, बनता हूँ, बिगड़ता हूँ।
1: तो ये है आज के हमारी सेलिब्रिटी।
2: मुझे अभी भी पता नहीं चला आपका इतना एक्सटेंडेड ऑडियो सुनाने का कोई मतलब नहीं बना। बट हो सकता है देयर इज समवन आउट देयर हु हैज रिकॉग्नाइज्ड ये कौन है, बिकॉज सेलिब्रिटी अलार्म इज ऑल अबाउट दिस, अबाउट यू रिकॉग्नाइजिंग, अबाउट यू अंडरस्टैंडिंग कि ये कौन हो सकते हैं। बिकॉज इफ यू हैव फाउंड आउट कि ये कौन है, तो रिमेम्बर आप हमारे पास अपना आंसर जो है ये मैसेज कर सकते हैं ऑन 5599।
1: BF लिखे, उसके बाद अपना आंसर लिखे और अपना नाम, ये तीन चीजें लिखे और 5599 पर हमारे पास आप भेजे। और कोशिश तो कम से कम आप कर सकते हैं, कोशिश करें और उसके बाद विल सी हाउ थिंग्स गो। और क्या और कितने क्लूज देने हैं ये बाद में हम डिसाइड करेंगे, डिपेंडिंग ऑन कितने लोग कोशिश जो है कम से कम ये करते हैं।
2: Absolutely. See, this is what it's all about, ना? हम नहीं बोल रहे कि आप first attempt में ही सही जवाब दे दोगे। हम यही जानना चाहते हैं कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो सही जवाब दे सकते हैं to the voice that we play and you can easily recognize or at least recognize the voice. क्योंकि अगर आज आपने ये जवाब मतलब ये आवाज़ नहीं पहचानी, तो यही आवाज़ कल एक बार फिर आपके लिए हम लेकर आएंगे। तब तक लेकर आएंगे जब तक कि आप पहचान न ले, और फिर आएगा मज़ा, क्योंकि ये देखने में और अच्छा लगेगा, ये जानने में और अच्छा लगेगा कि कितने दिन लगते हैं आपको इनकी आवाज़ पहचानने में।
4: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: News Headlines.
1: सुबह के मुख्य समाचारों में नेशनल पार्टी के कैंपेन चेयरमैन सिमियन ब्राउन ने कॉलिशन पार्टनर्स को मिसबिहेविंग बच्चे और नेशनल को मम इन डेट कहा, जिस पर न्यूजीलैंड फिस्ट ने पलटवार किया है, जबकि एक्ट ने यूनिटी की अपील की है। ब्राउन ने वेलिंगटन कॉन्फ्रेंस में पार्टी वर्कर्स से कहा कि वो एक्ट या एनजेड फेस्ट को वोट ना दे, क्योंकि इससे नेशनल की वॉइस डाइल्यूट होती है। और साथ ही उन्होंने एनजेड फेस्ट पर पहले लेबर के साथ काम करने को लेकर निशाना साधा। इसका जवाब देते हुए न्यूजीलैंड फेस्ट के लीडर विंस्टन पीटर्स ने नेशनल को पेप्सी और कोक जैसा बताया, जो लेबर के साथ मिलकर बिल्स पास कर रही है, जबकि एक्ट के डेविड सीमो ने इस बिकरिंग पर हैरानी जताते हुए साथ मिलकर काम करने की सलाह दी है। ईस्ट ऑकलैंड के पेनमुआ में शनिवार शाम तकरीबन 6:30 बजे हुई एक सीरियस असोल्ट के बाद एक शख्स क्रिटिकल इंजरीज के साथ हॉस्पिटल में एडमिट है। पुलिस ने बताया कि दोनों आदमी एक दूसरे को पहले से जानते थे और इस मामले की इन्वेस्टिगेशन के चलते इलाके में पुलिस की प्रेजेंस बढ़ा दी गई है। इस हमले के आरोप में 28 साल के एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है, जो आज ऑकलैंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वुंडिंग विद इंटेंट टू कोज ग्रीवियस बॉडली हार्म के चार्जेस के तहत पेश होगा। ब्लैक कैप्स टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरा टेस्ट मैच जो है 253 रन से जीत लिया है। टीम अब अगले महीने वेस्टइंडीज या टीम के दोनों टीमों के बीच आखिरी मैच 3 दिनों बाद खेला जाएगा, जिसके बाद अगले महीने ब्लैक कैप्स वेस्टइंडीज का सामना करेगी। FIH हॉकी वेमेंस नेशंस कप टाइटल को न्यूजीलैंड ने अपने नाम कर लिया है। शनिवार को हुए फाइनल में FIH वेमेंस हॉकी नेशंस कप को इंडिया ने अपने नाम कर लिया है। शनिवार को हुए फाइनल में इंडिया की जीत न्यूजीलैंड के खिलाफ 2-0 से हुई है। उधर फीफा वर्ल्ड कप के अंतर्गत अभी बेल्जियम और ईरान के बीच खेल हो रहा है। प्रथम हिस्से में बेल्जियम और ईरान 0-0 से बराबर हैं। इससे पहले आज सुबह स्पेन की जीत सऊदी अरेबिया के खिलाफ 4-0 से हुई। सुबह 10 बजे यूरुग्वे केप वर्डे से खेलेगा, जबकि दिन में 1 बजे ऑल वाइट्स और इजिप्ट का मैच होगा। इन मैचेस पर अपडेट्स आपके लिए हम पर हमले कराएंगे। सुपर रग्बी कॉम्पिटिशन टाइटल को हरिकन्स ने अपने नाम कर लिया है। हरिकन्स की शानदार जीत शनिवार को ग्रैंड फाइनल में चीफ्स के खिलाफ 60-5 से हुई। ये रहे सुबह के मुख्य समाचार।
0: Football updates brought to you by PFSL, providing the best home loan advice for the last 20 years. Google PFSL today. Amma's food, 100% authentic and pure as mother's love. And Indelible Homes, your building experts known for subdivisions. Visit indelibleHomes.co.nz.
2: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
0: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every will, big or small. Bring home the fortune. Accurate traffic.
3: National Burns Awareness Month.
4: A little cloudy, mainly fine with a high of 17. Coming in on the northwestern, 35 minutes messy to the city. We're slow, messy all the way into the CBD. A little heavy at Point Chev to Great Lynn. Southern, 40 minutes plus from Mataco to the CBD. Slow most of the way from Papakura. Heavier spots building. Southwestern, slow northbound through Whitty. Northern, 32 in from Constellation. Heavy gravel on and off to the bridge.
3: Text BURN to 4499 for a $3 donation to help the BURN support group.
5: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा। न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काऊ घी। जब खाने में होगी इतनी शुद्धता, इतना स्वाद, तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा।
6: मुझे भी।
5: कशिश प्योर देसी घी, अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड। खुशियाँ पकाए, खुशियाँ खिलाए।
7: This is a huge reminder. Sorry, that was a bit much. This is your big reminder to do that little job of getting your winter immunizations, including flu, booked in now. They're available through bookmyvaccine.nz or your healthcare provider.
8: Sore throat that feels like razor blades? Get fast relief of pain and swelling with Difflam Plus Sore Throat Spray. Definitely Difflam. Sore throat sorted. Always read the label. Use as directed. If symptoms persist, see your healthcare professional. Radiant Health Auckland.
9: Dragon!
10: The global phenomenon returns.
11: You are the queen of dragons. You have absolute power within your grasp.
12: I'm going to kill my brother or die in the attempt.
10: Watch the series the world will be talking about.
13: Can we
9: shall be no doubt who the gods have chosen to rule.
11: This is the moment you become queen.
10: HBO Original House of the Dragon. Stream now only on HBO Max.
3: Just because you own a business, it doesn't mean your life is split in two. Your personal life shows up in your business space. And business shows up in your personal space. So shouldn't your bank see the bigger picture? At ASB, one banker handles both your business and personal worlds. Because you're one person, not two accounts. ASB, get one step ahead.
2: The beat of Bollywood.
13: World's best, hamari koi branch nahi hai.
2: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
0: Brought to you by Fortune.

0: to you.
1: Many happy returns of the day. Aaj 22nd of June, Savita Kay Bhatnagar ji, aur yahan mein aaj aap अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। खुशी के इस मौके पर जितने भी परिवार वाले हैं सभी शुभकामनाएं और बधाइयां आपको दे रहे हैं।
2: और इसके अलावा आपको हम याद दिला रहे हैं कि आज अपना बर्थडे जो है ये सेलिब्रेट कर रहे हैं निशांत, अ वेरी हैप्पी बर्थडे, मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे टू यू। जन्मदिन के आज खास मौके पर आपको हमारी पूरी हम टीम की ओर से अ वेरी हैप्पी बर्थडे, मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, स्पेशल लव एंड बेस्ट विशेस आपको मिल रहा है आपके सभी दोस्तों की ओर से। यही मैसेज खास तौर पर आपकी स्पेशल फ्रेंड भव्या की ओर से आया है, सो हमारी ओर से भी आपको वेरी हैप्पी बर्थडे।
1: अलाउद्दीन मिठा जी, नोट शो में आज आप भी अपना जन्मदिन मना रहे हैं, इस दिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं आपको भी, अ वेरी हैप्पी बर्थडे, मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे।
3: मॉर्निंग मैडनेस,
1: 19 मिनट रह गए हैं अभी 8 बजे में ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा। और लो भाई, हमने कहा था लेकिन जस्ट इन टाइम, हाय इट्स माय बर्थडे, माय नेम इज रायना, बेस्ट विशेस फ्रॉम राजेश, हरदीप एंड रिया। सो रायना, आपको अ वेरी हैप्पी बर्थडे, मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। सेलिब्रिटी अलार्म पर वापस आ जाते हैं। आज तो बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ,
2: इंटरेस्टिंग नहीं, बहुत बुरा हाल जो है कि हुआ है, बिकॉज एज आई हैड सेड कि आज का जो सेलिब्रिटी अलार्म है, जो भी सेलिब्रिटी है शायद इनकी आवाज़ पहचानने में लोगों को बहुत डिफिकल्टी होगी। और फिर आपने दो बार आवाज़ भी सुनाई, उसके बाद चलकर सिर्फ दो ही लोगों का अटेम्प्ट आया या फिर मैसेज आया। एक हमारे पास 4136 इन्होंने अपना आंसर भेजा, दूसरा जो है ये गुंजन का जवाब है। अब इसमें से कोई सही है या नहीं वो मुझे नहीं पता, बट इन दोनों ने एटलीस्ट कोशिश की, उसके लिए वी फील वेरी ग्रेटफुल।
1: तो अभी क्या करना है?
2: आई डोंट नो, क्या सही जवाब आ गया है? कोई
1: नहीं आया है,
2: नहीं आया तो एक सुनाना पड़ेगा एक बार फिर। बट अभी क्या कर सकते हैं हम कि एक बार आपको वापस से हम सुना रहे हैं थ्रोबैक। तक अगर किसी का सही जवाब नहीं आया तो यही आवाज कल फिर आजमाएंगे आपके साथ, देखेंगे आप में से कितने लोग सही जवाब दे पाते हैं।
1: सुनिए।
4: My weaknesses, man, I think I'm a very weak human being in terms of my very existence. I keep falling and मैं गिरता हूँ, संभलता हूँ, बनता हूँ, बिगड़ता हूँ।
1: तो ये है आज के हमारे सेलिब्रिटी। पहला क्लू, he is from the entertainment industry.
2: Okay.
1: और ये एक जाने माने प्लेबैक सिंगर है।
2: सिंगर है, ओके, लेट्स सी। वैसे गुंजन ने जो जवाब भेजा था वो था वीरदास, थोड़ा थोड़ा उनकी तरह उनका अंदाज है। और ओशो विश्राम ये किसी ने भेजा है, आई डोंट नो क्या है, कैसे है ये आंसर, बट थैंक यू कोशिश करने के लिए। अनफॉर्चुनेटली ये दो आंसर्स थे, दोनों में से कोई भी सही नहीं। आवाज़ हमने सुना दी, क्लू भी हमने दे दिया कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से है, जाने माने सिंगर है। लेट्स सी क्या आप आवाज़ पहचान पाते हैं या नहीं।
1: BF आंसर और नाम, थ्रोबैक तक का टाइम ही है आपके पास, कोशिश आप कर सकते हैं।

0: rock and roll. Download Rover to listen Hum 80s Jukebox.
1: Hum, accurate traffic.
2: Would you trade in your house?
3: A bit of cloud, but mainly fine, a high of 17 today. Coming in on the Southern Motorway, almost 50 minutes, Manukau Town now. Slow all the way in from Papakura with heavy patches on and off. Southwestern, but slow both ways, especially northbound through Whitty. Northwestern, 38 minutes in from Massey. Slow all the way from there, heavy around Te Aratu and Point Chef to Grey Lynn. Northern, 35 from Constellation, heavy gravel to the bridge.
2: Trade in your house with Generation Homes. Visit generation.co.nz for more information.
4: रेडियो पे गानों की फरमाइश की जा सकती है, अपनों के नाम संदेश भेजे जा सकते हैं, मगर रेडियो पे अपने ट्रेडिशन की खुशबू भेजनी हो तो नहीं भेज सकते ना। उसके लिए अपनों को खाने पे बुलाएं, रिश्तों को और करीब लाएं। कशिश प्रीमियम बासमती राइस, ईट बेटर लिव बेटर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग इन टू www.kashishfood.co.nz, अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स।
5: Reliance Ventilation System.
6: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि crying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
5: Moisture और ventilation का problem लगता है।
6: और पता है, मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है।
5: Oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer. और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं।
7: Contact Reliance Ventilation System on 0800-787-111. Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 18 years.
8: HBO Max is the all-killer, no filler.
9: So wait, a streaming service that's full of the good stuff and no boring filler?
8: Exactly.
9: Right, we'll see. What have they got?
8: There's HBO original series The White Lotus, House of the Dragon, Euphoria, The Last of Us, The Sopranos, hit movies like Wuthering Heights, Superman, one battle after another, and then there's Friends, The Big Bang Theory.
9: Whoa, okay, I get it. Fair call.
8: HBO Max, all killer, no filler. Stream now.
10: Zabardast hits.
11: Shuru ho jaye to rukte nahi.
10: Playing Bollywood's biggest hits.
1: Hum.
12: The Breakfast Show.

0: चलिए, अभी हमने आपसे ये कहा था कि थ्रोबैक के अराउंड आपको देंगे मौका पहचानने का कि किसकी आवाज है आज की सेलिब्रिटी अलार्म में। फिर जब हमने कुछ क्लूज दिए तो और भी मैसेजेस आए हैं। मोविन है, साथ में मुदित का आंसर आया है, विनील है मनुरेवा से, शील ने अपना जवाब भेजा है, सोनल का आंसर आया है, सोम ने अपना जवाब दिया है, नीति है और साथ में कुछ और लोगों ने आंसर दिए है पर नाम नहीं लिखा है। ना, इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जितने लोगों ने आंसर भेजे है उनमें से विनोद राठौड़, कैलाश खेर, लकी अली, ये सबसे कॉमन आंसर्स है, लेकिन दो थोड़े हटके आंसर्स है, एक हिमेश रेशमिया और दूसरा है अरमान मलिक।
1: तो इतने जवाब जो है ये पढ़ने के बाद क्या आपको लग रहा है कि इनमें से किसी की आवाज मिलती होगी?
0: एक हो सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है,
1: एक
0: जवाब हो सकता है सही और वो है लकी अली।
1: अच्छा, आपको लग रहा है कि लकी अली, क्यों आपको ऐसा लगा?
0: पता नहीं क्यों, आई थिंक लास्ट में जब वो हिंदी में बोल रहे थे थोड़ा उनके जैसा लगा मुझे, बट आई डोंट नो सही है या नहीं, पर ज्यादातर लोगों ने वही क्लूज दिए हैं, आंसर्स दिए हैं।
1: बट इतना आपको बता दें कि आपको जो लग रहा है उससे पहले कुछ और लोगों को ये लग गया
0: क्या
1: कि वो लकी अली की आवाज है।
0: हाँ, मैं वही बोल रही हूँ तो,
1: और वही जवाब लोगों ने भेजा, एंड दैट्स द करेक्ट आंसर।
0: Oh, it was Lucky Ali.
1: Yes.
0: That's interesting, यार. आज अगर आप बताते नहीं ना कि ये सिंगर है या दिस एंड दैट जो क्लूज आपने दिए तो शायद बहुत कम लोग क्या, शायद कोई भी सही जवाब नहीं दे पाता। कल शायद हमें एक बार फिर इनकी आवाज लेकर आनी होती, पर इंटरेस्टिंग था आज का जो हमारा सेलिब्रिटी अलार्म। फिलहाल चलिए आज का दूसरा थ्रोबैक श्रद्धा पंडित और कैलाश खेर की आवाज में।

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: जनरली ठीक ठाक मौसम आज रहेगा ऑकलैंड में, और शाम के वक्त कुछ बादल छाएंगे, हल्की सी बूंदें भी पड़ सकती हैं। अभी 11 डिग्रीज है, आज का हाई 16, ओवरनाइट कम से कम 10 डिग्रीज आज होने वाला है।
0: Breakfast show with Vijay and Pooja,
2: brought to you by Fortune, with whole grains and essential vitamins. Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
0: The Rush Hour, brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton.
3: So,
0: Trend Patrol.
3: सॉरी, आज थोड़ा ज्यादा ही एक्साइटमेंट है, मंडे है ना। ट्रेंड पेट्रोल की बात ही करें तो ट्रेंड पेट्रोल में एक ऐसी चीज फिलहाल ट्रेंड कर रही है विच इज बीइंग रिगार्डेड एज वन ऑफ वेरी गुड क्रिएशंस, स्पेशली जहां पर हम एल्डर्स की बातें करें तो जो एल्डरली लोग होते हैं जिनको कहीं ना कहीं कई तरह की जो मोबिलिटी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है उनके लिए। अपेरेंटली कहा गया है कि एक चाइनीज टेक कंपनी है जिनका नाम है यूबन, और इन्होंने एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज जो है इसे तैयार किया है। ये है सेल्फ ड्राइविंग रोबोटिक टॉयलेट फॉर एल्डरली या फिर मोबिलिटी इम्पेयर्ड यूजर्स के लिए, जो लोग यू नो अगर नॉट नेसेसरली उम्र ही उनकी ज्यादा हो, लेकिन अगर यू नो अच्छे खासे उम्र में भी उनको मोबिलिटी चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है तो उनके लिए भी ये काम आ सकता है। तो दिस चाइनीज टेक कंपनी जो है इन्होंने लॉन्च किया है AI पावर्ड सेल्फ ड्राइविंग रोबोटिक टॉयलेट डिजाइंस, जिससे असिस्ट हो सके उन लोगों की स्पेशली उम्र की वजह से जिनको कई तकलीफ होती है, या फिर यू कह सकते हैं कि शरीर में कुछ डेवलपमेंट्स नहीं हुए हैं, या फिर चोट वगैरह लगने के बाद उनको तकलीफ है होती है जिसकी वजह से वो उतने ज़्यादा चलते फिरते नहीं हैं। और कहा गया है कि ये जो डिवाइस है इट कैन ट्रेवल टू द यूज़र, असिस्ट कर सकता है उनको टॉयलेटिंग में, और क्लीन करता है खुद आफ्टर द जॉब इज डन, एंड उसके बाद वापस ये चार्जिंग डॉक तक पहुंच जाता है खुद को चार्ज करने के लिए। तो इतने बढ़िया फीचर्स हैं, आप कहीं पर भी हो आपको इस तक जाने की जरूरत नहीं है। ये एक किस्म का प्रोग्राम इसमें सेट कर दिया जाएगा एंड यू जस्ट हैव टू एंटर द डिटेल्स, जिसके बाद चलकर ये जो सेल्फ ड्राइविंग टॉयलेट है ये आप तक खुद आएगा, और फिर उसके बाद आप इसका इस्तेमाल करेंगे, ये खुद को साफ करेगा और फिर वापस से चार्जिंग डॉक पर जाकर खुद को चार्ज करेगा। सो दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। और इस पर्टिकुलर रोबोटिक टॉयलेट के लिए कहा गया है कि इसका रिपोर्टेडली प्राइस इज अराउंड 4,000 USD।
1: ओके,
3: या
1: 4,000 US dollars, आई थिंक अ गुड इन्वेस्टमेंट फॉर दोज पीपल जिनको इसकी जरूरत जो है ये पड़ सकती है। बट अमेजिंग क्रिएशंस होते रहते हैं आए दिन कुछ न कुछ, और अपडेट्स ये हम आपके लिए हम पर लेकर आते हैं। 5 मिनट हो रहे हैं 8 बजकर थोड़ी देर बाद आज का व्हाट्स योर टेक।

0: और एक स्पेशल चाय।
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja।
2: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
3: प्रोफेशनल फाइनेंशियल्स है साथ आपके लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे। नो ब्रोकर चार्ज, बस ट्रस्टेड एडवाइस। हर डील बनाए परफेक्ट राइट।
4: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स। लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक।
3: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो, हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो, सब कुछ मिलेगा यही। अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए।
4: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी। कॉल 09846-9934 और सर्च PFSL, T's and C's, लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई।

0: Lacrosse World ticket at your local Lotto NZ store and enter online. R18 T's and C's apply.
1: Step out of the cold and into the savings. It's the final day of Briscoe's massive midwinter sale and your last chance to shop jaw-dropping 60% off winter busters and peak store-wide savings. Shop Briscoe's massive midwinter sale. Final day. See online for T's and C's.
2: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
3: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
2: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton.
4: What's your take?
5: वक्त हो चुका है कि आज लाइन सम आपके लिए खोले और आपको अपॉर्चुनिटी दे कि आप हमें बताएं व्हाट्स योर टेक, जो आज का हमारा टॉपिक होगा उसके बारे में. तो एक बड़ी स्पेशल रिपोर्ट जो है ये मैं पढ़ रहा था और ये रिपोर्ट जो है इज़ अपेरेंटली अबाउट अस ओनली, हमारे बारे में ही इस रिपोर्ट में कुछ बातें जो है ये की गई हैं.
6: अस
5: ह्यूमन बींग्स. तो साइकोलॉजिस्ट एक हैं, इन्होंने तीन चीज़ें बताई हैं या तीन आदतें जो हैं ये बताई हैं जिसकी वजह से पीपल टेक अस फॉर ग्रांटेड.
6: ओके.
5: पहली चीज़ उन्होंने जो कही है, ऑलवेज बीइंग अवेलेबल, ऑलवेज सेइंग यस, चेंजिंग योर प्लान्स, या फिर जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसको आप छोड़ देते हैं जब किसी और को आपकी ज़रूरत होती है. ये लोगों को सिखाती है कि आपका टाइम आपके लिए वैल्यूबल नहीं है. व्हेन यू आर ऑलवेज एक्सेसिबल, अदर्स स्टॉप सीइंग योर अवेलेबिलिटी एज अ गिफ्ट और उसको बाय डिफॉल्ट ट्रीट करना शुरू कर देते हैं.
6: कि ये तो हमेशा हाँ ही बोलेगा ना, वो चीज हो जाती है.
5: आप ऐसे शख्स हो जाते हैं हु इज एक्सपेक्टेड टू बी देयर, ऐसे शख्स नहीं जिन्होंने चूज किया है टू बी देयर.
6: राइट.
5: और ये आदत जो है इट इरोड्स योर बाउंड्रीज, जो यू नो आपका प्रेजेंस जो है ये फील कराए ऑप्शनल इंस्टेड ऑफ प्रेशियस. तो एक है ऑलवेज बीइंग अवेलेबल. अब दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि अगर किसी को ज़रूरत हो तो आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आप किसी को दे सकते हैं वो आपका वक्त है,
6: समय है. राइट
5: राइट. तो एक उन्होंने ये कही है. दूसरी, व्हेन यू कीप गिविंग when they neglect your needs and drain you.
6: अच्छा.
5: जब आप exhaust कर देते हैं अपने आप को, एकदम थका देते हैं, थक हार जाते हैं किसी और के लिए जो आपकी ज़रूरतों को ignore करता है, आपका जो extra effort है वो कोई gift नहीं रहता है. ये उनका जो expectation basically बन जाता है. लोग आपके sacrifices को notice करना बंद कर देते हैं और ये उनकी ज़िंदगी का daily routine हो जाता है. You are no longer helpful. You are actively training them to take you for granted.
6: Right.
5: ये एक काफी toxic one-sided cycle बना देता है. ये दूसरी चीज उस psychologist ने बताई. और तीसरी चीज, you always let people cross your boundaries without consequence. ये चीज जो उन्होंने कही है कि लोगों को the thing how much people respect and appreciate you is a direct reflection कि आप अपने टाइम, अपनी एनर्जी और अपने बाउंड्रीज को किस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं. जब आप लोगों को मौका देते हैं कि वो अपने लिमिट्स क्रॉस कर दें और उसका कोई अंजाम भी नहीं होता, आप ये सिग्नल देते हैं कि आपके बाउंड्रीज का कोई मतलब नहीं है. द मोर एक्सेसिबल समथिंग इज, उतना कम लोग उसको वैल्यू करते हैं. इफ यू नेवर एनफोर्स योर बाउंड्रीज, अदर्स वोंट आइदर. वो टेस्ट करेंगे, पुश करेंगे, इग्नोर करेंगे. कहते हैं कि रेस्पेक्ट इज एन गिवन, इज अर्न्ड थ्रू कंसिस्टेंसी.
6: एब्सोल्युटली.
5: तो ये तीन चीजें जो है एक साइकोलॉजिस्ट ने कही, ये आज सुबह मैं पढ़ रहा था तो मैंने सोचा कि ये आपको सुनाता हूं, सुनाते हैं और आपसे पूछते हैं व्हाट्स योर टेक,
6: कि क्या आप इन तीन चीजों से एग्री करते हैं या नहीं.
5: हाँ, और भी कोई चीज है
6: जो आप इस लिस्ट में ऐड करना चाहे,
5: कि क्यों लोग हमें, क्या अपनी यू नो अपनी प्रॉब्लम्स का कारण हम खुद होते हैं.
6: Absolutely, I would agree with this. To some extent actually, not majorly, लेकिन to some extent. कि कहीं ना कहीं हम खुद के लिए प्रॉब्लम्स तब खुद बढ़ा देते हैं जब हम खुद की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं. If you don't respect yourself, that's why you are available for everyone and for everything. और कोई आपको disrespect कर रहा है बावजूद उसके कि आप उनसे अपना distance maintain करें, आप उनको और opportunities दे रहे हो वो करने की. तो of course that happens ना.
5: तो अब मौका है आपके पास. 0800 00 HUM 0800 00 4866 इस नंबर पर आप कॉल करें और बताएं व्हाट्स योर टेक. एक साइकोलॉजिस्ट ने कुछ बातें जो है ये कहीं कहीं ना कहीं ये हमको कंफ्यूज भी कर देती है कभी कभार कि भाई एक तो कहते हैं कि ये करना चाहिए और ऊपर से ये भी कह रहे हैं तो हम किस तरफ जाएं, हम क्या करें.
6: राइट, तो 0800 00 HUM 0800 00 4866 पर इफ यू फील लाइक गिविंग अस अ कॉल डू कॉल अस. आज अपने व्यूज जो है हमारे साथ शेयर करने के लिए. And if you can't call, to 5599 पे टेक्स्ट आप कर सकते हैं.
5: Good morning, Afaz.
4: Good morning, कैसे आप जी?
5: हम ठीक हैं, आप कैसे हो?
4: मैं भी ठीक हूँ.
5: जी.
4: वैसे मैं अग्री करता हूँ टॉपिक से.
5: ओके.
4: क्योंकि कई बार ये जो भी है वो सही है. अगर हम जैसे आपने बताया कि जैसे हम अगर किसी अपनी ही रिस्पेक्ट नहीं करते तो दूसरे भी नहीं करते हैं. और फिर उनको हम अपॉर्चुनिटी दे देते हमारे साथ और कुछ गलत करते.
5: आपके कॉल के लिए 0800 00 4866 ये हमारा नंबर है. तीन चीजें जो एक साइकोलॉजिस्ट ने कहा है जिसकी वजह से लोग पीपल टेक अस फॉर ग्रांटेड. वन इज ऑलवेज बीइंग अवेलेबल. सेकंड इज यू कीप गिविंग व्हेन दे नेग्लेक्ट योर नीड्स एंड ड्रेन यू. एंड थर्ड इज You always let people cross your boundaries without consequences.
6: तो आप क्या इन तीनों चीजों से agree करते हैं? Yes या no या फिर आपके पास अगर कुछ extra है to add onto the list कि okay this could be another reason जिसकी वजह से ये होता है तो वो भी आप हमें जरूर बता सकते हैं.
5: मौका है आपके पास, वक्त काफी कम होता है as usual हमेशा हमारे पास. तो 0800 00 4866 इस नंबर पर चाहे तो आप कॉल कर सकते हैं और अगर 30 सेकंड्स का टाइम आपके पास बाकी है टू कॉल इन और अगर चाहें तो 5599 5599 पर अपने टेक्स्ट मैसेजेस जो हैं ये भी आप हमें भेज सकते हैं इस प्रोग्राम में.
2: Bollywood's most wanted.
7: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ.
8: मैं लाऊं अपना ए गेम.
2: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: 25 मिनट हो रहे हैं फिलहाल, अब 8:00 कॉल्स जो है आ रहे हैं। गुड मॉर्निंग, हेलो।
1: हेलो
0: जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप?
1: अच्छे
0: जी सर।
1: सॉरी, आई वाज जस्ट ड्राइविंग, सो नो, आई फील के व्हेन यू आर द सिचुएशन, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन सर। बिकॉज़ आई एम अ प्रीस्ट, मैं पुजारी हूँ
0: जी,
1: तो अगर कोई गुजर जाते हैं कि कोई ये हो जाती है, तो वो टाइम पे अगर मैं ना बोलूं कि नहीं आई एम नॉट अवेलेबल, इट फील्स दैट आई एम नॉट परफॉर्मिंग माय ड्यूटी एज सच। आई विल लीव असाइड एवरीथिंग, माय वर्क आल्सो, एंड आई विल सी टू इट दैट आई गो एंड डू द परफॉर्म द ड्यूटीज व्हिच इज एसेंशियल करके
0: जी जी।
1: और उसमें मैं कभी भी, आज तक मैंने कभी भी मैंने वर्क को प्रेफरेंस नहीं दिया, या तो फैमिली को प्रेफरेंस नहीं दिया, अगर कुछ, अगर ऐसा कुछ घटना हो जाती है तो,
0: विच इज अंडरस्टैंडेबल।
1: आई एम अवेलेबल 24 आवर्स एनी टाइम करते, तो उसमें आई फील इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन एज सच। इट यू कैनॉट जस्ट पुट बेसिस के भाई तुम ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, नहीं। It really depends on, yeah, that's what it was, that's what I wanted to say.
0: Thank you sir, thank you so much aapke time aur aapke call ke liye. आपके पास अभी कुछ है यू नो दैट यू वांट टू शेयर, तो 5599 हमारा नंबर है जिस पर अपने मैसेजेस जो हैं ये आप हमें ज़रूर भेज सकते हैं। और मैचेस जो हैं ये भी खेले जा रहे हैं या मैच खेला जा रहा है, इस पर भी अपडेट कुछ देर बाद हम आपको देंगे।

0: शफकत अमानत अली को आप सुन रहे थे ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा, जिसके साथ अब 28 मिनट रह गए हैं 9 बजने में। और फीफा वर्ल्ड कप, इसके तहत बेल्जियम और ईरान के बीच सेकेंड हाफ में मैच जारी है और अभी भी स्कोर्स बेल्जियम नील, ईरान नील।
1: Football updates brought to you by PFSL, providing the best home loan advice for the last 20 years. Google PFSL today. Amma's Food, 100% authentic and pure as mother's love. And Indelible Homes, your building experts known for subdivisions. Visit indelblehomes.co.nz.
2: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
3: Chup ho ja, papi ho. Chup ho ja.
1: Accurate traffic.
4: Trust the experts at Alloy Wheel Repair.
5: Fine spells with cloud burning off, 17 hour high into the city. Southern 45 minutes, Manukau to town. We're slow all the way from Takanini. Heavy most of the way, Otahuhu to Remuera. Southwestern easing southbound through Mount Roskill, still slow northbound through Whitty. Northern 30 in from Constellation Drive, slow at Silverdale. Heavy patches from Greville. Northwestern 35 in from Massey, heavy on and off from the causeway.
4: Curbed your wheel? Restore it to factory finish today. Search Alloy Wheel Repair.
6: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111.
7: Indelible Homes, your building expert.
8: At Bunnings, you know you're going to get the lowest prices every day, because where you find a competitor's lower price on the same in-stock item, we'll beat it by 15%. Conditions apply. See website for details.
9: Bunnings Warehouse.
8: Lowest prices are just the beginning.
10: Imagine waking up a millionaire. Powerball's mid-year millionaire promotion is on now. For your chance to win one of three $1 million prizes, get a triple dip at your local Lotto NZ store or online. Prizes drawn Saturday 4th of July. T's and C's apply.
11: Get a $100 digital Visa card with AMI. Buy a new comprehensive car policy online before the end of September. Visit ami.co.nz. T's and C's apply. AMI. On your side.
12: Here for your chance to score a share of $250,000 Club Plus dollars. By simply scanning your Club Plus card at Foursquare, you could be a winner winner free chicken dinner. Yeah! Foursquare. What'll it be today? T's and C's apply.
13: Oh my. Oh my. Grey South Road. Greater than ever.
14: South Auckland's buses just became a lot better.
13: Weymouth Road. Way better buses.
14: With better bus routes, more frequent buses, more early morning and late night buses, and more.
13: Woody? No worries. MIT? A-OK.
14: Search AT Better South Auckland Buses for details.
13: Airport? Got your transport.
14: Then turn up and go.
2: The show with Vijay and Pooja.
1: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune.
2: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton.
15: फिलहाल चलिए आपके लिए जबकि रश हवा हम लेकर आ रहे हैं ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा, 25 मिनट्स अवे फ्रॉम 9 फॉर नाउ। ठीक नौ पर तो न्यूज एंड स्पोर्ट्स अपडेट आपके लिए जरूर रहेगा और उसके बाद हमारा व्हाट्स गोइंग ऑन सेगमेंट जो है ये भी आपके लिए हम बेशक लेकर आएंगे। बाय द वे, हर घंटे हम आपके लिए कुछ ना कुछ स्पेशल लेकर आते ही रहते हैं। इस घंटे भी एक बहुत ही स्पेशल चीज क्या है, वो
0: आपको बहुत ही शानदार इनाम जीतने का मौका हम देने वाले हैं। आपको तो पता ही है कि इन अबाउट अ मंथ उस्ताद राहत फतेह अली खान आ रहे हैं ऑकलैंड और इनका जो अनफॉरगेटेबल नाइट ऑफ म्यूजिक है इसमें आप जा सकते हैं। टिकट्स तो वैसे dryTickets.com पर आपके लिए अवेलेबल हैं, लेकिन आपको एक डबल पास जीतने का मौका जो है ये हम देंगे, बट थोड़ी ही देर में। करना क्या है आपको, सुनते रहना है हम, और जैसे ही हम आपको अपॉर्चुनिटी दे यू विल हैव टू टेक पार्ट और ये डबल पास जो है ये आप जीत सकते हैं। फिलहाल एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं पढ़ रहा था दौलत गिरी जी महाराज के बारे में। दौलत गिरी जी महाराज जो हैं ये एक साधु हैं भारत के, और ऑडिटरी सेंट्रल पर इनकी रिपोर्ट मैं पढ़ रहा था और उन्होंने कहा, उनके बारे में कहा जाता है कि वो 5 सालों से लगातार खड़े ही रहे हैं।
15: अच्छा, आई थिंक मैंने इनका वीडियो रिसेंटली देखा है कहीं पे।
0: अच्छा,
15: या आई एम नॉट श्योर इफ इट्स द सेम गाय नॉट, बट प्रोबब्ली एक और एक शख्स है या फिर यही वही होंगे जिनके बारे में मैंने भी पढ़ा है कि वो काफी लंबे समय से कभी बैठे ही नहीं है।
0: हाँ, 5 साल हो गए और उन्होंने कसम ली थी कि वो 12 सालों तक ना तो बैठेंगे ना लेटेंगे, जिसके बाद पिछले 5 सालों से ये खड़े हैं और इनको खड़ेश्वरी नाम से भी जाना जाता है। और उन खड़ेश्वरी बाबा जो हैं ये होते हैं, कुछ कुछ जो वचन लेते हैं या प्रण लेते हैं कि वो खड़े रहेंगे और साथ ही में अपने वचन को पूरा करने के लिए वो रस्सी, झूले और कई अन्य चीज़ों का इस्तेमाल जो है ये करते हैं। लेकिन 5 ईयर्स फॉर एक YouTube पर एक वीडियो है उनका मेरे ख्याल से, जिसमें फॉर ऑलमोस्ट 12 ईयर्स नाउ एक और साधु जो थे दुलाल गिरी जी महाराज हैज नॉट सेट और स्लेप्ट, ये रिपोर्ट में पढ़ा था।
15: वेरी इंटरेस्टिंग। कुछ डेडिकेशन की बातें अगर हम करें तो दिस इज समथिंग दैट वी कैन से कि हैज डेफिनेटली वर्कड आउट फॉर हिम। फिलहाल चलिए ऐसी और भी इंटरेस्टिंग अपडेट्स आपके लिए हम जरूर लेकर आते रहेंगे, पर रिमेम्बर थोड़ी देर बाद देंगे आपको वो अपॉर्चुनिटी जिसके तहत आप जीत सकते हैं अपने लिए एक डबल पास टू विटनेस नन अदर देन द मैजिकल द लेजेंडरी राहत फतेह अली खान, जेके स्टार प्रोडक्शंस, गोट लाइव, ड्रीम्स एंटरटेनमेंट, सिमरन प्रोडक्शंस और शहजादा प्रोडक्शंस की ओर से। बट ऑन द अदर हैंड ऑल्सो रिमेम्बर dryTickets.com, जहां से आपको अपने पासेस जो है ये लेने हैं।

0: Punjabi swag is on.
1: Hey, hey.

0: dear.
1: Streaming on Rover.
2: Accurate traffic.
3: New tasty cookie dough bars.
4: Sunny spells growing through the day, 17-hour high. Most motorways easing north and just 25 minutes in from Constellation Drive now. We're slow Constellation to the bridge. Northwestern, 28 minutes in from Massey, slow from the causeway. A lot of heavy patches. Southern, 40 minutes Manukau to town. Slow at Manurewa, fine to Otahu, then heavy there to the city. Southwestern, slow northbound from Whitty up to the airport link.
3: Tasty cookie dough bars. A delicious cookie dough snack bar that the whole family will love.
5: Say hello to the Club Plus Smart Shopping Buddies. They're here to help you shop smarter at New World, Pack and Save and Foursquare. They'll help you scan, score and save on all the stuff you love. And there's a Smart Shopping Buddy for everyone, even you. So join Club Plus to meet yours and get the best of New World, Pack and Save and Foursquare. Find out more at clubplus.co.nz.
6: Most Aucklanders are within 3 kilometres of an NZ Post store. With 110 stores across Auckland, it's easy to access the services you need close to home. Find your local at nzpost.co.nz.
7: I know about framing, but not how to keep our team connected on all the sites.
8: When you're a Spark Business customer, you get the number one mobile network coverage in New Zealand as awarded by Open Signal. Spark, the best bench in business.
9: It pays to switch to Tower. Switch today and get $200 off new house insurance and $100 off new comprehensive car insurance. Use promo code BIGSWITCH. T's and C's and eligibility criteria apply. Switch to Kiwi, switch to Tower.
10: This is your invitation to a bloody important meeting. This National Blood Donor Week, put time in the calendar to give blood or plasma. Go to nzblood.co.nz and book your bloody important meeting now. Give blood. Give plasma. Save lives.
11: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
12: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
11: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton. Throwback.
13: चौदह मिनट रह गए हैं अभी 9 बजने में ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा और कई एक्साइटिंग मौके जो हैं ये ऑन द ब्रेकफास्ट शो हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं
14: बिल्कुल और आज हमने कहा था कि ऐसा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी आपको हम देंगे जहां पर यू कैन विन योर सेल्फ डबल पासेस टू विटनेस नन अदर देन द लेजेंडरी राहत फतेह अली खान और अगर आपको ये डबल पास जो है ये जीतना है तो इसके लिए एक सिंपल सी चीज करनी होगी हमारे पास अभी आप कॉल कीजिए 0800 00 हम 0800 00 4866 पर द फर्स्ट वन टू कॉल विल गेट द अपॉर्चुनिटी और आपके लिए हम लेकर आएंगे 5 रैपिड फायर क्वेश्चंस अबाउट राहत फतेह अली खान जिनका आंसर विद इन 30 सेकंड्स आपको देना है इफ यू टेक मोर देन 30 सेकंड्स तो अनफॉर्चुनेटली यू वोंट बी पार्ट ऑफ द ड्रॉ पर अगर आपने 30 सेकंड्स के अंदर अंदर जवाब दे दिया इन सभी पांचों सवालों का वो भी सही सही तभी आपका नाम हम इस ड्रॉ में करेंगे जहां पर आप जीत सकते हैं एक डबल पास टू गो एंड विटनेस राहत फतेह अली खान
13: और नंबर हमारा जिस पर आपको कॉल करना है 0800 00 4866 इस नंबर पर आप कॉल करें 30 सेकंड्स का टाइम हम आपको स्ट्रिक्टली देंगे और आपको सवालों के जवाब विद इन 30 सेकंड्स देने होंगे क्योंकि बैकग्राउंड में एक म्यूजिक जो है ये चलता रहेगा 30 सेकंड्स का अगर म्यूजिक खत्म अपॉर्चुनिटी खत्म सिंपल एज दैट
14: Yes, तो फटाफट हमारे पास आप कॉल कीजिए और हमारे साथ जैसे कि हमने कहा वही शख्स पार्ट ले पाएंगे क्योंकि एक ही शख्स को हम अपॉर्चुनिटी देंगे तो वो ही होंगे जो सबसे पहले कॉल करेंगे
13: आगे एक हमारे साथ लाइंस पर गुड मॉर्निंग हेलो
15: हाय गुड मॉर्निंग
13: जी क्या नाम है आपका
15: एल्विना
13: एल्विना हाउ आर यू एल्विना
15: मैं ठीक हूँ आप कैसे हो
13: हम भी ठीक हैं आप ये बताइए एल्विना हाउ बिग ऑफ अ फैन आर यू ऑफ उस्ताद राहत फतेह अली खान
15: आई एम अ ह्यूज फैन आई हैवंट मिस्ड एनी ऑफ हिज कॉन्सर्ट ओह फैन में
13: अच्छा इंटरेस्टिंग चलो तो इस बार नहीं भी जाएंगी तो चल जाएगा ना
15: नहीं नहीं जाएंगे
14: जाएंगी वो कैसे आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि नहीं जाएंगे
13: अच्छा चलो ठीक कोई बात नहीं हम आप तैयार हैं अपने सवालों के साथ
14: मैं बिल्कुल तैयार हूँ.
13: ओके, तो अब टाइमर हम आपके लिए शुरू करेंगे. एंड रिमेम्बर, 5 क्वेश्चंस होंगे एल्विना, एंड विद इन 30 सेकंड्स इन पांचों सवालों के जवाब आपको देने होंगे. सो ऑल द बेस्ट. और आप दोनों का समय अब शुरू होता है.
14: राइट एल्विना, आपका आज का पहला क्वेश्चन, विच कंट्री इज राहत फतेह अली खान फ्रॉम?
15: पाकिस्तान.
14: What style of music is he most famous for?
15: Sufi and Ghazal.
14: Who was Rahat Fateh Ali Khan's legendary uncle?
15: Ustad Nusrat Fateh Ali Khan.
14: Which Bollywood song begins with the line Tujhe Dekh Dekh Sona?
15: Tujhe Dekh Dekh Sona, Tujhme Hai Zindagani, Tere Sang Bitani, Tujhme Basi Hai Meri Jaan Hai Re. Diya Dhadak Dhadak Jaye.
13: Oh my God.
14: 30 seconds up हो गए ना?
13: हाँ, okay.
14: और ये चौथा question था. I think अगर आपको इस गाने का title पता होता, तो आप पांचवे question का भी सही जवाब दे देती, because the last one just true and false. You had done really well, Elvina. आपने तीन जो सवाल मैंने पूछे, उसका सबका सही answer दिया. The last one, I think that was the thing, ki tujhe dekh dekh suna, you were trying to remember. So, acha, abhi, unfortunately, aapka naam hum draw mein isliye nahi kar payenge, because 30 seconds ke andar aapka answer nahi aaya. Plus, aapne fifth question ka bhi jawab nahi diya, kyunki we couldn't even ask you that question. So, abhi aapko kya
15: karna hai? Ask me.
14: Nahi, aapko bas confirm karna hai, number 4 jo question pucha tha, which Bollywood song begins with the line, tujhe dekh dekh suna. What is your final answer? What's the title of the song?
15: दिल धड़क झड़क जाए,
14: जिया धड़क धड़क
15: जिया धड़क जाए,
14: जिया धड़क धड़क जाए is absolutely correct. That is the title. If you would have just even that answer last one में तो सिर्फ true or false बोलना था and you would have been there. But unfortunately,
15: आप तुम उसका गाना सुन के excited हो जाते हैं.
14: I know, आप गाना शुरू कर दिया आपने. But we really appreciate you calling and at least trying your luck. Elvina, you can definitely go and try again. हमारे बाकी साथियों के साथ भी आप कोशिश कर सकती है. Who knows कि आप किसी न किसी शो में ड्रो में शामिल हो जाए for this double pass.
15: Right, sweet. Thank you
13: so much and all the best. तो आज Elvina को ये opportunity मिली, but by the narrowest of margins, she missed out. ऐसे और भी मौके आपको मिलेंगे. उस्ताद नुसरत फतेह अली खान को देखना है, एक डबल पास जीतना है, तो इतना
14: नुसरत
13: तो
14: नुसरत फतेह अली खान नहीं, अरे सॉरी,
13: उस्ताद राहत फतेह अली खान को सुनना है, देखना है लाइव, तो थोड़ी तो मेहनत आपको करनी होगी. और सुनते रहना है हम, क्योंकि डबल पास जीतने का मौका आपको हम देते रहेंगे. टिकट्स रिमेम्बर dryTickets.com एंड आई थिंक मोर देन 50% ऑफ टिकट्स वे ऑलरेडी सोल्ड, किसी दिन मैं देख रहा था. सो आप जल्दी से विजिट करें और टिकट्स ले लें, सो देट यू डोंट हैव टू यू नो
14: मिस आउट ऑन इट.
13: हाँ, पछताना ना पड़े बाद में.
14: बिल्कुल, तो आप अगली बार कोशिश भी कर सकते हैं और साथ में टिकट्स जो है एडवांस में ले भी सकते हैं, ताकि वो मिस ना हो जाए, आपका फेवरेट स्पॉट ना मिस हो जाए. बिकॉज इफ इवन देयर हैपेंस कि देयर इज अ पर्टिकुलर सीटिंग यू आर आफ्टर एंड दैट मिसेस आउट, तो आपको फिर भी मजा नहीं आएगा ना. तो इसीलिए जल्दी जल्दी टिकट्स ले लो dryTickets.com विजिट करते हुए, और हम सुनते रहिएगा अपने अगले मौके के लिए.

0: accurate traffic.
1: Denza premium plug-in hybrid SUVs.
2: Fine spells increasing today. Cloud burning off, 17 hour high. Motorways easing nicely. Northern just 22 minutes in from Constellation Drive. Find a Glenfield, slow there to the bridge. Northwestern 23 minutes in from Massey, slow from the causeway. Few heavy spots to St Luke's. Southern 35 Manukau to town. Find Otahu, heavy there to Ellerslie. Southwestern slow northbound from Whitty to the airport link.
1: Visit Denza Auckland City. Plug-in hybrids from $89,990 plus on-road costs today.
3: High five! High five? Anybody? No? Ah, that's right. It's $5 week at Pack and Save. Low five! Ah, that's more like it. Although this would make a lot more sense if I had fingers. $5 week, on now at Pack and Save.
4: दादी के हाथ की चूरी हो या माँ के हाथ के पराठे, सबका फेवरेट हलवा हो या तवे पे फूली हुई रोटी, हर याद में बसी है कशिश चक्की फ्रेश आटा की वही मीठी खुशबू, जो दिल भी जोड़े रिश्ते भी. Eat better, live better now with Kashish Chakki Fresh Atta and Multigrain Atta. Available in all leading stores nationwide. www.kashishfoods.co.nz.
5: At Spotlight, for 48 hours only, save a mega 30% off store-wide, including Manchester Home Decor, Fabric Craft, Knitting Yarn, Curtains and Blinds. Yes, that's 30% off. Sale on now. Open until 8 p.m. At Spotlight, it's what you make it. Discounts apply to full-price products. Excludes clearance. See website for details.
6: It's easy for life admin to slip down the list. So, we're politely interrupting this show to remind you that winter immunizations, including flu, are available now. Let's get them sorted at bookmyvaccine.nz or ask your healthcare provider. TradeDepot.co.nz.
7: Get 199 deals this week only at Trade Depot. Chest freezers, 199. 32-inch smart TVs, 199. Ceramic cooktops, 199. Laundry tub and cabinet, 199. Shop online or in store at Trade Depot, Nielsen Street, Onehunga. With minimum spends, you can get free home delivery anywhere in Auckland. T's and C's apply. TradeDepot.co.nz.
8: Oh no, we'll be late.
9: We'll be all right. I'll call the AA.
10: Award-winning road service. Just one of the many benefits of AA membership. With over 45 ways to save every day, it's the membership with more. Join us today at aa.co.nz.
11: Time check.
12: Good morning, it's Samit Hik 9 baj rahe hain.
11: Hum News, brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
13: Morning, I'm Grace Cocker with the latest at 9. A warning that the H5N1 bird flu strain could be devastating on the country's wildlife. It's now in Australia, with New Zealand the only significant landmass left to go. Ecologist David Heyman is most concerned for seabirds, sea lions and other threatened species.
14: The wildlife species are here that are nowhere else in the world, and we just don't know how they'll be impacted.
13: The Greens' new tax policy is facing pushback. The party wants to reduce income tax for most lower and middle class earners by taking aim at the wealthy and corporations. Ex David Seymour says it punishes success.
15: People succeeding is not a problem for New Zealand. In fact, it's a solution. If we choose to be a country that scares away people who try, then we'll just all be poorer.
13: Aucklanders are putting their pedal to the metal. There's been a massive surge in people jumping on their bikes all days of the week. May recorded a more than 14% spike in cycling trips compared to the same time last year, following on from a 20% bump in April. President Trump claims the UK's Prime Minister is stepping down on his social media. The US leader has wished him well, but also says Keir Starmer failed badly on his immigration and energy policy. There's no word yet from Downing Street. In sport, motorsport with Megan Turbo, home of the Free Steel with Muds, heartbreak for Marcus Armstrong in this morning's IndyCar race at Road America on Sky Sport.
16: Does Armstrong have a problem?
17: Yes,
16: and he must have a problem. You can hear it.
17: It sounds wrong. It sounds off. It's sick.
13: The Kiwi driver was on course to win for the first time before his car broke down three laps from the finish. And all eyes on fielding, with the All Blacks set to reveal their 34-man squad at midday.
11: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill. The beat of Bollywood.
18: World's best, hamari koi branch nahi hai.
11: Weather update. Brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
12: 11.7 degrees abhi aap feel kar rahe hain. Aaj ka high 16. Overnight कम से कम 10 degrees. Generally a fine day. शाम के समय हो सकता है कुछ बादल छाएं और हल्की बारिश हो. Sunset शाम 5:13 पर होगा.
11: The breakfast Breakfast Show with Vijay and Pooja.
0: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
11: What's going on? Kya bakte ho?
19: Are kehna kya chahte ho?
20: तो आज का क्या बकते हो जो आपके लिए हम लेकर आए हैं, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी आई वुड से. यार ऐसी बहुत सी चीजें दुनिया में होती है विच वी आर नॉट रियली अवेयर ऑफ अनलेस एंड अंटिल इट एक्चुअली हैपेंस, एंड दिस इज समथिंग विच इज बीइंग प्रेज्ड. वैसे तो क्या बकते जैसा ही स्टोरी है, लेकिन तारीफ इस स्टोरी की काफी हो रही है क्योंकि हरियाणा के एक गांव में जहां पर 55 जो लोग हैं, मेन है बेसिकली गांव में, इन्होंने क्या किया, इन्होंने वहां पर अपना अपना स्मार्टफोन जो है, अपना मोबाइल जो है, इसे लिया और पूरे गांव के सामने पत्थरों से और जो हथौड़ा होता है इससे उसे तोड़ दिया.
21: ओए होए,
20: उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए अपने स्मार्टफोन्स के.
21: क्यों?
20: और उन्होंने ये इसलिए किया बेसिकली क्योंकि उनका कहना है कि ये उनका एक पहला कदम है टुवर्ड्स लीविंग बिहाइंड द मोबाइल एडिक्शन, क्योंकि मोबाइल एडिक्शन उनके गांव में बहुत से लोगों को हो चुका है, खासतौर पर जो बच्चे हैं उनको, और इनफैक्ट हर एक को वो देख रहे हैं कि इस चीज़ से इतना एडिक्टेड हो गया कि अच्छी चीज़ नहीं है. सो दे टुक दिस फर्स्ट स्टेप लीविंग बिहाइंड द मोबाइल एडिक्शन और उसके जो हार्मफुल हैबिट्स होते हैं उससे जुड़े. ये इनिशिएटिव लिया गया था बाय द लोकल रेसिडेंट्स और वहाँ के कुछ पुलिस ऑफिशियल्स द्वारा, जिन्होंने बाकियों को भी एनकरेज किया टू लीड अ मोर डिसिप्लिन लाइफस्टाइल, ताकि अपनी पढ़ाई पर, अपनी नौकरी पर, अपनी पर्सनल ग्रोथ पर लोग फोकस कर सके रादर देन वेस्टिंग देयर टाइम ऑन मोबाइल. अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट कहा गया है जो पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने प्लेज किया था टू स्टे अवे फ्रॉम द एक्टिविटीज दैट वर नेगेटिवली अफेक्टिंग देयर लाइफ, और उनमें से एक था टू चूज टू रिप्लेस स्मार्टफोन्स विद बेसिक जो कीपैड फोन्स होते थे पहले उसके साथ. ये जो अनयूजुअल मूव है इट हैज सिंस गोन वायरल ऑन सोशल मीडिया एज वेल, और जैसे कि मैंने कहा काफी लोग इसकी तारीफ भी कर रहे हैं, यू नो जस्ट एन अटेम्प्ट टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द डिजिटल डिपेंडेंसी जिसको बोलते हैं, ताकि वो नया फ्रेश स्टार्ट जो ये कर सके. और कई लोगों का ये भी कहना है कि अगर लोग दृढ़ता के साथ, यू नो कंसिस्टेंसी के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ कुछ करते हैं तो वो चीज उनके लिए काम आ सकती है, मोबाइल तोड़ने की क्या जरूरत थी. बट वट एवर वर्क्स आउट फॉर द पीपल, यू नो दे हैव डन दैट, एंड इफ इट इज समथिंग दैट इज वर्किंग आउट फॉर देम, वो औरों को एनकरेज कर सके तो अच्छी बात है. आई डोंट नो आपने इस कहानी के बारे में सुना है या नहीं, बट यहाँ न्यूजीलैंड में रोटोरुआ में अ ग्रुप ऑफ टीनएजर्स ये बहुत पॉपुलर हुए थे. हैव यू हर्ड अबाउट देम?
21: या आई थिंक मैंने कहीं तो उनके बारे में कुछ पढ़ा था.
20: वो टीनएजर्स जो है दे आर बेसिकली यूजिंग फोन्स, लेकिन उनके पास स्मार्टफोन नहीं है क्योंकि वो भी इस बात से एग्री करते हैं कि मोबाइल एडिक्शन हमारे कम्युनिटी को, हमारे सोसाइटी को इतना धीरे धीरे जो ये खा रहा है कि इसके इफेक्ट्स जो है कि लोगों पर दिख रहे हैं, एंड दैट इज वाई दे डोंट हैव स्मार्टफोन्स. दे डिजिट स्मार्टफोन्स फॉर वो जो बटन वाले फोन्स थे उसके लिए, दे हैव मोबाइल फोन्स फॉर कम्युनिकेशन एंड ऑल. उनका कहना है मोबाइल का काम क्या होता है, कम्युनिकेशन के लिए, और दूसरा जैसे कि किसी को मैसेज वगैरह रिप्लाई कर दिया ना, अगर कॉल्स नहीं आप रिटर्न कर रहे तो उसके लिए, या फिर अलार्म लगाने के लिए ज्यादा से ज्यादा. और ये जो बेसिक चीजें हैं ये बटन वाले फोन में भी होती है, उसके लिए स्मार्टफोन की जरूरत है नहीं. स्मार्टफोन ऑन द अदर हैंड इज समथिंग विच इज नॉट रियली गुड फॉर अस, एंड दैट इज वाई एज अ ग्रुप ऑफ यंग पीपल ऑफ द कम्युनिटी वो इस प्लेज को अभी भी पूरा कर रहे हैं, एंड काफी तारीफ भी हुई थी उनको उनकी इस चीज के लिए.
21: ऑब्वियसली हर कोई अपना अपना तरीका शायद निकाल रहा है, एंड जो जिसके लिए काम करता है गुड ऑन देम कि एटलीस्ट अपनी ओर से कोशिश तो कम से कम वो कर ही रहे हैं. 6 मिनट हो रहे हैं 9 बजकर, ऐसी और भी कई कहानियां हैं जो आपके लिए हम लेकर आते रहेंगे. इस प्रोग्राम में शामिल रहना है आपको ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा.

0: What's going on?
1: What's up?
2: What's up, Auckland?
3: क्या हो रहा है हमारी कम्युनिटी में या आने वाले दिनों में क्या कुछ होने को है. सबसे पहले फिजी इलेक्शंस के लिए वोटर रजिस्ट्रेशन इसी बुधवार से शुरू होने जा रहा है और ये इसी बुधवार से शुक्रवार तक रहेगा. दिन में 12 से रात 8 बजे तक सेंटर पार्क मैंगरी में, और आप जाकर आगामी आम चुनाव के लिए वहाँ पर रजिस्टर हो सकते हैं.
4: और इसके अलावा आपको हम याद दिला रहे हैं अबाउट ऑकलैंड रामायण संस्था ट्रस्ट की ओर से उनकी जो मासिक रामायण कथा है, ये होगा इसी फ्राइडे को 26th ऑफ जून को ऑन एट ARST कम्युनिटी हॉल 53 स्किप्टन स्ट्रीट मैंगरी. इसके लिए आप जा सकते हैं और 7:15 PM से ये रहेगा. सो डेफिनेटली आप इसका हिस्सा बन सकते हैं.
3: न्यूजीलैंड आर्ट एंड कल्चर चैरिटेबल ट्रस्ट आपके लिए लेकर आ रहे हैं श्री राम लीला, और ये 8th of August को होने जा रहा है वैदिक सेंटर पापाटोई में. और अगर आप स्टॉल चाहते हैं तो मास्टर अशोक से बातें कर सकते हैं 021-179-5459 पर.
4: और इसके अलावा आपको याद दिला रहे हैं सिद्धार्थ रंडेरिया गुज्जू भाई प्रोडक्शंस लेकर आ रहे हैं आपके लिए गुज्जू भाई ने एक्सचेंज ऑफर, जिसमें द लेजेंडरी सिद्धार्थ रंडेरिया जो है ये आने वाले हैं अपना ये ब्रांड न्यू कॉमेडी शो लेकर. बहुत ही हिलेरियस और बहुत ही अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट के साथ आपको मिलेगा मौका एक फन फिल्ड फैमिली डे जो है गुजराती ह्यूमर के साथ इंजॉय करने का. आपकी पूरी की पूरी फैमिली इसका मजा ले सकते हैं. एंड एज यू नो कि जब भी गुज्जू भाई प्रोडक्शंस कोई भी शो लेकर आते हैं सिद्धार्थ रंडेरिया के साथ, तो ये हमेशा सोल्ड आउट ही होता है. एंड यू गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू बी पार्ट ऑफ दिस बिकॉज ये हो रहा है 3rd of July को, विच इज अ फ्राइडे, 7:30 PM से एट विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर. premiertickets.co.nz, रिमेम्बर premiertickets.co.nz, आप विजिट कर सकते हैं टिकट्स लेने के लिए. एंड वंस यू सिक्योर द टिकट्स और द सीट्स फॉर योरसेल्फ, तो आप गुज्जू भाई ने एक्सचेंज ऑफर का मजा जरूर उठा सकते हैं.
3: कम्युनिटी की कोई खबर आपके पास भी है तो उसे हमें जरूर भेजें buzz@hamfm.com पर, buzz@hummfm.com ये हमारा ईमेल एड्रेस है जिस पर अपने मैसेजेस जो है ये आप भेज सकते हैं.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
5: Hey, देखो मैं आ गए.

0: भागदौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: फ्यूल के दाम रोज बढ़ रहे हैं और स्मार्ट ड्राइवर्स अब स्विच

0: मैच कर रहे हैं। फ्यूचर है एफिशिएंट ड्राइविंग का और वेसिटी ओमोडा जेकू के साथ ये शिफ्ट और भी इजी हो जाता है। इंट्रोड्यूसिंग द पावरफुल J7 सुपर हाइब्रिड सिस्टम, परफॉर्मेंस भी, एफिशिएंसी भी, और ऑल इलेक्ट्रिक J5 EV, जीरो इमिशंस, मैक्सिमम सेविंग्स। आज ही वेसिटी ऑटो ग्रुप पहुंचे और जिमी टेलर और उनके एक्सपर्ट टीम से मिले। फॉर मोर इन्फो विजिट vesityautogroup.nz और सर्च फॉर वेसिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल्स।
1: रेडियो पे गानों की फरमाइश की जा सकती है, अपनों के नाम संदेश भेजे जा सकते हैं, मगर रेडियो पे अपने ट्रेडिशन की खुशबू भेजनी हो तो नहीं भेज सकते ना। उसके लिए अपनों को खाने पे बुलाएं, रिश्तों को और करीब लाएं। कशिश प्रीमियम बासमती राइस, ईट बेटर लिव बेटर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग इन टू www.kashishfood.co.nz Available at all leading stores.
2: At Spot Mart, for 48 hours only, save a mega 30% off store-wide, including Manchester Home Decor, Fabric Craft, Knitting Yarn, Curtains and Blinds. Yes, that's 30% off. Sale on now. Open until 8 p.m. At Spotlight, it's what you make it. Discounts apply to full price products. Excludes clearance. See website for details.
3: Sun Tours ke successful March 2026 Best of India Tour ke baad, ab bookings open hai for Best of India September 2026 Tour. Delhi ke shopping, Agra ka Taj Mahal, Jaipur Amer Fort aur Elephant Ride, में हाउस बोट का एक्सपीरियंस और आम छे मुंबई की बॉलीवुड स्टूडियोज विजिट विद ऑल बफे मील्स फ्लाइट्स और फाइव स्टार अकोमोडेशन ऑल फॉर जस्ट $8,500 पर पर्सन। कॉन्टेक्ट अनिल ऑन 0800 4 सन टूर्स, दैट्स 0800 4786 86। लिमिटेड स्पेसेस।

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
2: 19 मिनट हो रहे हैं 9 बजकर फीफा वर्ल्ड कप के अंतर्गत बेल्जियम ईरान का मैच अब पूरा हो चुका है. दोनों टीमें नील ओल से बराबर रही हैं और थोड़ी देर बाद इनफैक्ट 10 o'clock यूरोगवे वर्सेस केप वर्डे और दिन में 1 बजे न्यूजीलैंड वर्सेस इजिप्ट ये मैच खेला जाएगा. सो इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग. ऑल वाइट्स और ईरान का मैच आपको याद है, आपने देखा था वो मैच?
3: नहीं मैंने देखा नहीं, उसके बारे में सुना बहुत था इनफैक्ट, पर देखा नहीं अनफॉर्चुनेटली.
2: अच्छा कौन सा मैच, कोई मैच देखा?
3: मैंने एक भी मैच नहीं देखा अभी तक फीफा वर्ल्ड कप का, आई वुडंट लाई.
2: ओके वैसे बेल्जियम और इजिप्ट का जो मैच था वो एक एक गोल से बराबर ठहरा था एंड इट वाज प्लेड द डे ईरान और न्यूजीलैंड का मैच जो है ये खेला गया था. इंटरेस्टिंगली इस पूल में सारी की सारी टीमों के पास एक ही की पॉइंट था उस समय पर आफ्टर द फर्स्ट राउंड ऑफ मैचेस. और अब आज न्यूजीलैंड और इजिप्ट का मैच खेला जाएगा. इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग. अगर न्यूजीलैंड या ऑल वाइट्स ये मैच जीतता है दे कुड गो टू द टॉप ऑफ द पॉइंट्स टेबल.
3: दैट इज वेरी नाइस. या
2: एंड व्हाट डू यू थिंक, अभी इस पूल में सारी की सारी टीमें जो हैं एक जैसी ही साबित हो रही हैं. ऑल मैचेस आर एंडिंग, अभी तक जितने मैचेस 3 मैचेस खेले गए सारे के सारे ड्रॉ से समाप्त हुए. द फोर्थ वन टुडे न्यूजीलैंड वर्सेस इजिप्ट जो है ये रहेगा और न्यूजीलैंड का आखिरी मैच जो है ये बेल्जियम के खिलाफ होगा. सो व्हाट डू यू थिंक द स्कोर विल बी, हमें टेक्स्ट करके ज़रूर बताएं. न्यूजीलैंड वर्सेस इजिप्ट दिन में 1 बजे ये मैच खेला जाएगा, जिस पर अपडेट्स आपकी खातिर हम ज़रूर लेकर आएंगे. वैसे आपको पता है कॉफ़ी हम में से बहुत सारे लोगों की जिंदगी का एक इंटेग्रल पार्ट जो है ये है.
3: ऑफ कोर्स बहुत से लोगों की सुबह की शुरुआत जो इसके बिना होती नहीं है ना.
2: एक कॉफी मैगजीन मैं पढ़ रहा था उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मेरे सामने आई. ये 15th सेंचुरी की बात है. टेकिश लॉ के तहत उस समय पर एक महिला के पास अधिकार था कि वो अपने पति को तलाक दे दे अगर वो उसको इनफ कॉफी नहीं प्रोवाइड करता है.
3: रियली?
2: हाँ
3: इतना इम्पोर्टेंट था कॉफी?
2: इतना इम्पोर्टेंट. यू नो कॉफी हाउसेस वे हार्ट बीट ऑफ इस्तांबुल और यू नो बहुत सारा डिस्कशन, बहुत सारी चीजें जो है ये होती रहती हैं. एंड द स्टोरी बिगिंस विद अ मैन नेम्ड मेहमत. ये थोड़ा भुलक्कड़ टाइप ऑफ आदमी था और अक्सर बहुत डिफिकल्ट सिचुएशंस में अपने आप को डाल लेता था. उनकी पत्नी जो थी वॉज अ स्वीट वुमन और but had one unshakable passion,
3: coffee.
2: She just didn't enjoy it. It was like a worship for her. और एक सुबह उसने देखा उठकर कि कॉफी का जो जार है या पॉट जो भी आप कहना चाहें it was empty.
3: Okay.
2: And then panic.
3: क्या
2: घर में पैनिक हो गया भाई? उसको अब क्रेव कर रही थी फॉर कॉफी अर्ली इन द मॉर्निंग एंड पति जो है ये भूल गया था सुबह सुबह इसके बारे में. उसने पूछा कि मेरी कॉफ़ी कहाँ है. हस्बैंड को एहसास हुआ कि उसकी गलती है, एकदम डैमेज कंट्रोल मोड में चला गया. आई वॉज जस्ट अबाउट टू मेक इट, आई प्रोमिस इट जस्ट दैट आई हैड अ ड्रीम अबाउट फ्लाइंग गोट्स एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. अपनी कहानी जो है ये बना रहा है
3: पूरी सुनाई उन्होंने.
2: हाँ लेकिन वहीं से ये कहानी शुरू हुई. मार्केट गया जल्दी से कॉफी बीन्स लेकर आया एंड ऑल दोस थिंग्स कॉफी तैयार. बाय द टाइम दे फाइनली मैनेज टू सेल्वेट सम सेम्बलेंस ऑफ द कॉफी तब तक इट वाज मिड मॉर्निंग और बीवी जो है घंटों इंतजार कर रही थी और उसका पेशेंस जो है खत्म हो रहा था. जब पति ने कॉफी जो है ये दिया तब अपनी खुद की सांस ली. बीवी ने एक सिप लिया एंड उसकी आंखें जो है ये एकदम चमक उठी. उसके बाद उसका मूड जो है ये काफ़ी इम्प्रूव हुआ कहते हैं. एंड देन वहाँ से आगे चलकर आई डोंट नो कहाँ से ये कहानी आई कि 15th सेंचुरी में टेकिश लॉ के तहत एक महिला को ये अधिकार मिलता था कि अगर उसको इनफ कॉफ़ी ना मिले तो वो पति को तलाक दे सकती. शायद
3: वाओ
2: मजाक मजाक में ही शायद किसी ने ये कानून शुरू किया हो या मजाक ही किया हो।
3: But whatever it is, it's basically कॉफी कितना इम्पोर्टेंट है कहीं ना कहीं वो इस पर्टिकुलर स्टोरी में दर्शाता है। I don't know, is it really important for you? I know I have had mornings without coffee, जहाँ पे I woke up and coffee नहीं थी घर पे, खत्म हो गई, या फिर I wanted to drink coffee but it was not available, so I couldn't have it, and unfortunately उस सुबह बिना कॉफी की शुरुआत हुई। लेकिन इतना इतना एक्सट्रीम स्टेप शायद उठाने का ना तो ऑप्शन था ना ही कोई इंटरेस्ट है। बट इज इट लाइक आपके लिए कॉफी कितना इम्पोर्टेंट है?
2: मेरे लिए या
3: मैं सबसे पूछ रही हूँ ना।
2: अच्छा, सबसे पूछ रही
3: हूँ। अगर आपको इवैल्यूएट करना हुआ तो बिना कॉफी की आपकी सुबह की शुरुआत कैसी होगी? हाउ विल यू डिस्क्राइब योर मॉर्निंग विदाउट
2: कॉफी? हाउ इम्पोर्टेंट इज कॉफी
3: फॉर यू?
2: फॉर यू 5599 हमारा नंबर है जिस पर अपने मैसेजेस आप हमें भेज सकते हैं।
1: Football updates brought to you by PFSL, providing the best home loan advice for the last 20 years. Google PFSL today. Amma's Food, 100% authentic and pure as mother's love. And Indelible Homes, your building experts known for subdivisions. Visit indelblehomes.co.nz.
0: Bollywood's most wanted.
4: Gundi khadga ya seedha andar aao.
5: Main laun apna A game.
0: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: विशाल ददलानी और उनके साथियों से ये बहुत ही सुपरहिट गाना आपके लिए हम पेश कर रहे थे। और हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स 104.2 एफएम और रोवो पर आप हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच। यू नो द नर्मदा स्टोरी, इसके बारे में आपने सुना है?
1: नहीं, मैं तो नाम ही पहली बार सुन रही हूँ।
0: हाय, अच्छा, ये फिल्म है
1: नर्मदा स्टोरी?
0: इट्स अ मूवी।
1: मूवी, ओके, अबाउट व्हाट?
0: इट्स अ मूवी। और कई लोग इस फिल्म का जब नाम कहीं पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, क्योंकि उतना ज़्यादा मार्केटिंग एंड प्रमोशन इस पिक्चर का इनफेक्ट नहीं किया गया, तो कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये इंडिया में जो
1: नदी है क्या, या
0: ये नदी जो है ना नर्मदा,
1: हाँ, उसके ऊपर है,
0: उसके उससे रिलेटेड कुछ कहानी है, बट इट इज नॉट।
1: ओके, इज इट अबाउट अ पर्सन?
0: ये कहानी है एक महिला की। और इस फिल्म में अगर देखें तो अश्विनी कलसेकर, रघुबीर यादव, मुकेश तिवारी, जरीना वाहब है इस फिल्म में, और जयगाम इमाम, इन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है। और ये एक क्राइम ड्रामा है, और क्राइम ड्रामा जो है ये OTT पर काफ़ी पॉपुलर होता है अभी के टाइम पर। बट ये जो लेडी है, इज़ अ थिएट्रिकल रिलीज ये फिल्म जो है, ये एक बोल्ड अप्रोच है अबाउट अ ट्राइबल वुमन। और अश्विनी कलसेकर इस रोल को प्ले कर रही हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट जो है मध्य प्रदेश में नर्मदापुरम में। और इनका जो काम है, इनका जो ट्राइब है, कैसे उसके बीच में ये फंस कर रह जाती हैं, उनकी ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एंड इट्स गेटिंग एक्चुअली अ लॉट ऑफ प्राइस, 3.5 स्टार्स ऑलरेडी क्रिटिक्स ने इस फिल्म को दे दिए हैं।
1: सही, कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऐसी सिचुएशन जहाँ पे किसी का कोई बहुत ही ज़्यादा बड़ा प्रमोशन ना हो, ज़्यादा शोर ना मचाया जाए, हल्ला गुल्ला ना हो उसके बारे में, लेकिन वो इतनी अच्छी होती है कॉन्टेंट वाइज कि कहीं ना कहीं ऑडियंस तक पहुँच ही जाती है। और उसका जो भी ऑडियंस टाइप होता है, जब उन तक वो पहुंचती है, तो डेफिनेटली दे अप्रिशिएटेड। सो लाइक वाइज इस पर्टिकुलर स्टोरी के बारे में भी ऐसे ही कह सकते हैं, नॉट अ लॉट ऑफ प्रमोशन, बट येट इट हैज रीच द हार्ट्स ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल।
0: एग्जैक्टली, बॉलीवुड की और भी कहानियां आपके लिए हम पर हम जरूर लेकर आते रहेंगे।

0: सैंडी एंड रिस्पी, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ कहानियाँ होती हैं रॉ, इमोशंस होते हैं रियल और कॉन्वर्सेशंस होते हैं बिना मास्क के।
1: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ थे।
0: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पी ऑन रोवा, स्पॉटिफाई और एनीवेयर यू गेट योर पॉडकास्ट।
2: पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हो या आप फ्यूचर की तरफ शिफ्ट कर रहे हो, स्मार्ट चॉइस अब सिंपल है। वे सिटी GWM हैवल, हैवल का हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड रेंज पे डिस्काउंट्स और सिर्फ 4.95% फाइनेंस ऑफर्स। आज ही वे सिटी ऑटो ग्रुप पहुँचे और जिमी टेलर और उनकी टीम से मिले। लिमिटेड टाइम ऑफर, टीज एंड सीज अप्लाई। फॉर मोर इन्फो विजिट वे सिटी ऑटो ग्रुप .nz और सर्च फॉर वे सिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल्स।
3: Absolutely everything is on sale at Freedom. Get up to 60% off absolutely everything. Plus, take an additional 10% off for a limited time. Hurry, sale must end soon. Only at Freedom.
4: Step out of the cold and into the savings. It's the final day of Briscoe's massive midwinter sale and your last chance to shop jaw-dropping 60% off winter busters and peak store-wide savings. Shop Briscoe's massive midwinter sale. Final day. See online for T's and C's.
5: HBO Max is the all-killer, no filler.
6: So wait, a streaming service that's full of the good stuff and no boring filler?
5: Exactly.
6: Right, we'll see. What have they got?
5: There's HBO original series The White Lotus, House of the Dragon, Euphoria, The Last of Us, The Sopranos, hit movies like Wuthering Heights, Superman, one battle after another, and then there's Friends, The Big Bang Theory.
6: Whoa, okay, I get it. Fair call.
5: HBO Max, all-killer, no filler. Stream now.
7: Turn groceries into getaways, pit stops into points, and everyday spending into savings. Collect more rewards points with everyday rewards at Woolworths, Fresh Choice, BP, Gas, Petstock, and Milkrun. Join Everyday Rewards today.
8: Before you can vote, you need to be enrolled. We're making it easy, with Electoral Commission teams popping up at events and venues across Aotearoa New Zealand, so you can enrol, check, or update your details without any fuss. Find out where our teams will be at vote.nz.
9: It's Super Cheap Auto's big brand sale. Shop super deals like 40% off selected Penrite bull or semi-synthetic 4-litre engine oils, or save 15% on Ryco service kits. Sale ends June 28th. T's and C's apply. Make it super. Super Cheap Auto.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
10: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. What's going on?
11: 22 मिनट रह गए हैं 10 बजने में। डेली राउंडअप का वक्त अब हो चुका है। सबसे पहले 26 साल के एक पर्सन को अरेस्ट किया गया है कल रात वेमाउथ में एक एग्रेवेटेड रॉबरी के बाद। डिटेक्टिव इंस्पेक्टर कैरन ब्राइट ने बताया कि पुलिस को रिपोर्ट मिली कल रात 9:15 के वक्त कुछ लोगों के बारे में जो ज़बरदस्ती कई प्लेस में एक प्रॉपर्टी में घुसे थे आर्म्ड विद वेपन्स। पुलिस का कहना है कि उनके पास गन्स नहीं थे। अ नंबर ऑफ आइटम्स वे टेकन और उसके बाद वो वहां से भाग निकले। कुछ देर बाद पुलिस ने एक गाड़ी को रोका क्लेंडन पार्क में एंड वन पर्सन वॉज टेकन इनटू कस्टडी। इस चोरी के संबंध में छानबीन अभी भी जारी है और पुलिस बाकी लोगों की तलाश कर रही है जो इसमें शामिल थे। गिरफ्तार व्यक्ति को आज मैनुकाओ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश किया जाएगा।
12: और इसके अलावा एक और एक खबर जो है ये आ रही है दैट जो नेशनल पार्टी है इन्होंने रिसेंटली अपने फ्यूचर प्लान्स डिस्कस किए हैं अबाउट कीवी सेवा रिफॉर्म्स। नेशनल ने कहा है कि इट इज़ बेसिकली अगर देखा जाए तो सेंटरिंग इट्स इलेक्शन कैंपेन अराउंड द थीम बिल्डिंग द फ्यूचर। उन्होंने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी रादर देन शॉर्ट टर्म गिवअवेज पर ध्यान देते हुए एम्फोसिस डाला है। एंड एट देयर पार्टीज 90th एनुअल कॉन्फ्रेंस प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर लक्सन ने अनवेल किया है मेजर कीवी सेवा प्रपोजल्स, जिसमें है कंपल्सरी कीवी सेवा मेंबरशिप फॉर ऑल वर्कर्स फ्रॉम 2028, ऑटोमेटिक एनरोलमेंट ऑफ न्यू बॉर्न्स विद 1500 गवर्नमेंट किकस्टार्ट और गवर्नमेंट कीवी सेवा कंट्रीब्यूशंस ड्यूरिंग पेड पेरेंटल लीव, मैंडेटरी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशंस फॉर वर्कर्स ओवर 65 हु रिमेन एम्प्लॉयड। और पॉलिसीज में कहा गया है कि इसे काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल रहा है फ्रॉम पार्टी मेंबर्स एंड आर सीन एज द लेइंग ऑफ ग्राउंड वर्क फॉर अ मोर पॉलिटिकल एक्सेप्टेबल इंक्रीज सुपर एनुएशन एज को ध्यान में रखते हुए. लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर निकोला विलिस, इनके बारे में कहा गया है कि इन्होंने रिपीटेडली वॉर्न किया है दैट करंट पेंशन सिस्टम जो है ये इंक्रीजिंगली एक्सपेंसिव और अनसस्टेनेबल होता जा रहा है. तो ये जो स्ट्रेटेजी है इट अपीयर्स टू बी ऑफसेट एनी फ्यूचर रेज इन द पेंशन एज ताकि रिटायरमेंट सेविंग्स को और स्ट्रेंथन किया जा सके थ्रू आउट अ पर्सन लाइफ. लेट्स सी इनके इस कीवी सेवा स्कीम के या कीवी सेवा प्रपोजल को लेते ध्यान में रखते हुए कितने लोग इनके इस प्लान से एंटाइस होते हैं.
11: Only time will tell. वैसे KiwiSaver would become compulsory for every New Zealand worker from July 2028 अगर National Party चुनाव में re-elect होती है. Under a major election proposal, ये कल पार्टी ने रिवील किया. ये पॉलिसी जो है जो अनाउंस किया गया also included a $1,500 payment and automatic KiwiSaver enrollment for every child जिनका जन्म जुलाई 2027 के बाद होगा. अ गवर्नमेंट टॉप अप फॉर पेरेंट्स ऑन पेड पेरेंटल लीव एंड अ मैंडेट दैट एम्प्लॉयर्स कीप कंट्रीब्यूटिंग फॉर ओवर 65. कल के जो अनाउंसमेंट है वे जस्ट वन पार्ट कई चीज़ों में जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है फ्रॉम द पार्टी टू बी स्वीपिंग प्रपोजल्स ऑन रिटायरमेंट इंक्लूडिंग पोटेंशियल चेंजेस टू सुपर एलिजिबिलिटी. पार्टी लीडर क्रिस्टोफर लक्सन ने कल नेशनल के एनुअल कॉन्फ्रेंस जो लवाहट में हुआ था वहां पर ये अनाउंसमेंट किया. और अंडर द पॉलिसी एवरीवन इन वर्क वुड बी रिक्वायर्ड टू कंट्रीब्यूट टू KiwiSaver और एन इक्विवेलेंट रिटायरमेंट सेविंग स्कीम जुलाई 2028 से. ये चेंज जो है ये बिल्ड ऑन कर रहा है ऑन अनदर नेशनल कमिटमेंट टू ग्रेजुअली लिफ्ट कॉन्ट्रीब्यूशन रेट्स टू मैच ऑस्ट्रेलिया. और कंट्रीब्यूशन जो है वुड बी सेट एट द डिफॉल्ट रेट यानी कि बाय 2032 एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज मस्ट ईच कंट्रीब्यूट 6% फॉर अ कंबाइंड 12%.
12: या वेरी इंटरेस्टिंग.
11: वही तुम बता रही थी.
12: वही मैंने बताया. हाँ. आपने थोड़ा डिटेल तरीके से बताया. मैंने यू नो बेसिक्स जो है ये बताए थे. इफ बेसिकली नेशनल कम्स इन गवर्नमेंट अगेन देन That's going to happen.
11: And in case आपने मिस किया तो कैंटरबरी के एक शख्स हैं इज द न्यूएस्ट मिलियनेयर. शनिवार को लोटो ड्रॉ में द पर्सन टुक होम $1 million एंड पावरबॉल स्ट्रक नहीं हुआ था तो इट इज रोल्ड ओवर टू $12 million दिस वेंसडे.

0: आज की दो बातों से पहले कुछ लोगों को थैंक यू कहना है या शाउट आउट देना है. गुरमनप्रीत सिंह साथ में कामिनी कुमार हैं, थैंक यू सो मच. रोनील एंड ज्योति, सलमा अली, अनुराधा चंद, ममता शर्मा, सनील लाल, अश्नीर ऐश, सामवेद और अनुराधा चंद, थैंक यू सो मच आपके साथ के लिए एंड फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा. दो बातें
1: जी
0: दो बातें आज की. पहली बात कहते हैं प्रयास के बिना प्रगति नहीं हो सकती,
1: मतलब आप जब तक कोशिश नहीं करेंगे तो प्रोग्रेस नहीं करेंगे.
0: बिल्कुल. और दूसरी बात गौर करें इस पर, मैं गुजरे हुए कल को तलाशता रहा दिन भर, मैं गुजरे हुए कल को तलाशता रहा दिन भर और शाम होते होते मेरा आज चला गया.
1: बात है भाई, कभी कभी आपको भागना नहीं है किसी के पीछे, लेकिन उस मोमेंट को, उस पल को एंजॉय करना है, उस पर ध्यान देना है. वरना जब ये पल, ये मोमेंट भी आपके हाथ से निकल जाएगा तब आपको एहसास होगा कि भाई ये भी चला गया, ये भी छूट गया. तो चलिए इन्हीं बातों के साथ आपसे चाहेंगे अब इजाजत, जाने की जाने का समय हो रहा है. अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा. हम आपसे मिलेंगे अब कल एक बार फिर ठीक से बचे पर द ब्रेकफास्ट शो विद विजय पूजा लेकर आपके साथ हम जुड़ जाएंगे.

0: क्योंकि आ रही है
1: माय टाइम विद काशिका।
2: नमस्कार एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू पीपल। हाउ आर यू? स्टूडियो की घड़ी में वक्त आ चला है जहां पर आपकी मैं रिमाइंडर क्लॉक आ चुकी हूं। 12 बजे तक आपका और मेरा साथ बना रहेगा कशिश फूड्स के सौजन्य से। ये जो हमारा और आपका एक सफ़र होता है वो तय हो जाता है मंडे टू फ्राइडे 10 से 12 बजे के दरमियान। मैं यानी कि काशिका आपका साथ निभाती है और यही बताती है कि समय कितना मूल्यवान होता है और समय बहुत ही ताकतवर चीज़ है। अच्छा है या अच्छा होता है तो अपनी चलती है और अगर बुरा होता है तो सभी की चलती है। तो आपका कैसा समय चल रहा है? अच्छा चल रहा है या कि बुरा चल रहा है, ये आपको कैटेगराइज करना पड़ेगा। बाय द वे, अच्छा ही चलना चाहिए क्योंकि ओवर द वीकेंड आपने अपने लिए कुछ समय तो निकाला ही होगा। देखो ना, मैं आ जाती हूँ आपसे इन्हीं तरह की बातों को लेकर और इसी तरह की बातों से याद दिला देती हूँ कि समय आपके लिए और मेरे लिए कितना ज़्यादा कीमती है, कितना ही ज़्यादा मूल्यवान है और आप इसे किस तरह से गुजारते हैं अपने लिए। अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकाल के चिलैक्स रिलैक्स करने का टाइम डेफिनेटली होता है और अगर ऐसे में आप चिलैक्स रिलैक्स नहीं कर पाए तो सच बताऊँ इस भाग दौड़ में कहीं ऐसा ना हो आप खुद को भूल जाएं। और हम ये चाहते नहीं हैं क्योंकि अगर आप खुद को भूल गए तो बहुत कुछ भूलते चले जाएंगे। पीछे मुड़ के देखेंगे तो वो वक्त लौट कर नहीं आता। हो गई ना मैं शुरू? देखो ना ये बातें, ये ज्ञान देने की बातें जो मैं करती हूँ तो आपको याद दिला देती हूँ कि देखो समय मूल्यवान है, अपना टाइम सबको याद रखना पड़ता है। हम प्लेइंग बॉलीवुड बिगेस्ट हिट्स आपके लिए हम 104.2 FM के जरिए लेकर आते हैं। इसके साथ साथ रोवा ऐप के जरिए, रोवा ऐप के जरिए आप हमारे म्यूजिक स्टेशन भी सुन सकते हैं जैसे हम रिवाइंड, हम 80s जूक बॉक्स, फिजी कीर्तन, चढ़दी कला, फिजी कीर्तन संग्रह और राहत फतेह अली खान के म्यूजिक स्टेशन। थोड़ी देर बाद हमारा साथ निभाने के लिए स्टूडियो लाइन पर आ जाएंगे राज प्रदीप सिंह जी फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स। कोई सवाल 5599 पे टेक्स्ट करें।
1: बचाओ क्या

0: एक्सपर्ट्स अड्डा।
1: बिल्कुल एक्सपर्ट्स अड्डा में मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर आ चुके हैं राज प्रदीप सिंह जी फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, एंड सवाल भी मेरे पास आ चुका है एंड आई विल डेफिनेटली आस्क हिम द सेम क्वेश्चन। नमस्कार राज जी, हाउ आर यू?
2: नमस्कार कशिका जी, नमस्कार टू ऑल योर हम एफएम लिसनर्स।
1: सर मुझे आपसे एक सवाल पूछना है जो मेरे पास टेक्स्ट पर भी आया है। Is there any new update from on immigration from 24th of August? Please explain, text आया इनका।
2: हाँ, that's right, क्योंकि last week ही immigration की website पे actually update हुआ है।
1: जी।
2: As everybody is expecting from last year, कि 24 August से जो residence visa है उसमें changes आ रहे।
1: Okay।
2: चेंजेस क्या आ रहे हैं कि ज्यादा लोग क्वालिफाई करेंगे रेजिडेंस वीजा अप्लाई करने के लिए, और वो कैसे करेंगे? बेस्ड ऑन देयर क्वालिफिकेशन। अगर न्यूजीलैंड की किसी के पास मास्टर डिग्री की क्वालिफिकेशन है, दे कैन अप्लाई रेजिडेंस वीजा।
1: अच्छा,
2: स्टेट बाय विद एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर विद मेडन वेज। तो ये एक अच्छा चेंज आ रहा है, विच इज गुड, एंड आई थिंक हमारी कम्युनिटी के काफी सारे लोग 24 अगस्त की वेट कर रहे हैं, सो इट्स गुड न्यूज फॉर देम। उसके साथ में थोड़ा सा चैलेंजिंग टाइम भी है, क्योंकि जो कई ऑक्यूपेशंस हैं वो उन्होंने रेड लिस्ट में डाल दिए हैं, जैसे कि हॉस्पिटलिटी सेक्टर का है, रिटेल का है, जिसमें शॉप मैनेजर, स्टोर मैनेजर या रिटेल मैनेजर है, या ब्यूटी के थेरेपिस्ट है, या हेयर ड्रेसर्स हैं, तो वो उन्होंने रेड लिस्ट में, इट मीन्स कि वो सिर्फ बैचलर डिग्री के साथ ही अपना रेजिडेंस वीजा डाल पाएंगे, नॉट के जो दूसरे वो ऑप्शन लेके आ रहे हैं। एक है रेजिडेंस पाथवे 1.10 टाइम्स का है, वो भी स्टार्ट हो रहा है 24 अगस्त में, और एक है 1.20 टाइम्स का एम्बर लिस्ट जो नई लेके आए हैं, वो भी एक काइंड ऑफ अच्छी न्यूज है। लेकिन अगेन एज आई एम सेइंग के भी मेडन वेज से भी, क्योंकि मेडन वेज 2026 का है $35 पर आवर, तो उसका इस साल का जो 1.20 टाइम्स है वो बनेगा आपका $42। तो वो इजी नहीं है उतना लेके आना। और वो कौन सी एम्बर लिस्ट? वो है जो हमारे कम्युनिटी के मैक्सिमम बिजनेसेस चलाते हैं, या अपने कम्युनिटी के मैक्सिमम जो जॉब करते हैं, उसमें जैसे हो गया आपका होटल मोटल मैनेजर है, होटल सर्विसेज मैनेजर है, इसमें कैफे रेस्टोरेंट मैनेजर है, बेकर है, शेफ है, कस्टमर सर्विस मैनेजर है, या ऑफिस मैनेजर है। ऐसे ही आईसीटी के रोल है, आईसीटी कस्टमर सर्विस ऑफिसर, या आईसीटी सपोर्ट टेक्नीशियन, या वेब एडमिनिस्ट्रेटर। इट मींस ये वाले लोग हैं, इनके लिए अच्छी ऑप्शन तो ये है, अगर आपके पास बैचलर डिग्री नहीं है तो भी आप रेजिडेंस वीजा अप्लाई कर सकते हैं, 5 साल का अगर आपके पास न्यूजीलैंड का एक्सपीरियंस है, और उसमें पहले 3 साल लाइक कोई भी जो आपका साल था 22, 23, 24 या 25 वाला, वो 3 ईयर्स प्लस 2 ईयर्स मोर नाउ विद 1.20 मींस $42 पर आवर के साथ एंड मिनिमम 30 डिग्री। और ये सारा भी रोल है जो एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर के पास होना चाहिए, और वो उस पोजीशन पे आप काम करने चाहिए, तो आपका ये स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस काउंट होता है। ऐसे ही 1.10 का पाथवे है, उसके अंदर छूट है कि आपका ओवरसीज का भी वर्क एक्सपीरियंस हो सकता है, इंक्लूडिंग न्यूजीलैंड 3 साल का। वो आपका अगर ओवरसीज का जैसे इंडिया में होता 30-40-50,000 रुपीज मंथ वाला, प्लस न्यूजीलैंड में 38.50 वो 1.10 टाइम्स का, वो भी ऑप्शन है। और आपको पता फिर बहुत सारी ऑप्शन है, ग्रीन लिस्ट की है, वर्क टू रेजिडेंस है, ग्रीन लिस्ट में भी टीयर 2 है, स्ट्रेट टू रेजिडेंस।

0: बिल्डिंग्स है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, उनकी भी रेजिडेंस अभी तक चल रही है और काफी लोग हैं स्पेशली फॉर रेजिडेंस सेक्टर लाइक ट्रक ड्राइवर, बस ड्राइवर, वो बहुत सारे कंफ्यूज हैं कि भी हमारा जो ये मिडन वेज है ये किस तरह से काम करता है। तो जो सेक्टर एग्रीमेंट है उसमें जिस भी वीजा, जिस भी पीरियड पे उसका वीजा लगा था उसी के बेस पे दे कैन अप्लाई रेजिडेंस वीजा। एक बहुत अच्छा चेंज है इसके अंदर जो 24 को आ रहा है वो है अपना वर्क एक्सपीरियंस के साथ ही आप उसी पे रेट पे, क्योंकि अभी करंटली चल रहा है कि जो मेडन वेज है उसके ऊपर आप सिर्फ रेजिडेंस डाल सकते हो, लेकिन अगर आपका मेडन वेज से 2023 में अगर आपका मेडन वेज 2966 था या बाद में बढ़ के वो 3161 हुआ और उसी के ऊपर आप काम करे जा रहे हो तो आप उसके ऊपर भी, मतलब कि जिस मेडन वेज पे आपका वर्क वीजा लगा था, जिसके ऊपर आपका स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस चल रहा है, आप उसी के ऊपर आप रेजिडेंस वीजा अप्लाई कर सकते हो। आपको अपना करंट मेडन वेज लेने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज अ गुड चेंज फॉर एम्प्लॉइज एंड एम्प्लॉयज फॉर बोथ। ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं कशिका जी, एज यू अंडरस्टैंड
1: टोटली, टाइम बहुत कम है,
0: केस बाय केस बेसिस पे दे कैन, हां दे कैन डिस्कस विद अस।
1: ट्रू। एंड द नंबर टू गिव अ कॉल इज 0927994939। लीगल एसोसिएट्स लोकेटेड है लेवल 131 ईस्ट तमाकी रोड, पापा टोयोटो एंड फ्रैंकटन हैमिल्टन में भी। लीगल एसोसिएट्स की वेबसाइट है legalassociates.co.nz। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।
0: Thank you very much, Kashika.
1: Bye.
0: Bye. My time with Kashika. आजकल चल रहा है बहुत न्यूज़ में, अभी तो नहीं. Driving you home. The Drive Show with Sandy and Rusby. तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
2: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
3: वो भी आई लव यू वाला।
2: मैडम ने पकड़ लिया, अभी यहाँ पे किसने बनाया, वो एक लड़की थी वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा।
3: अच्छा आप तो
2: आए आए बताओगे यार। The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku. Ma, ek chhoti hoti na? Haan, ek chhoti mujhe bhi. Jab Kashish desi ghee se khana banega, to yahi to hoga. न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काउ घी, जब खाने में होगी इतनी शुद्धता इतना स्वाद, तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा। मुझे भी। कशिश प्योर देसी घी, अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड। खुशियाँ पकाए, खुशियाँ खिलाए।
4: Reliance Ventilation System.
5: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि drying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
4: Moisture और ventilation का problem लगता है।
5: और पता है मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है।
4: Oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer. और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं।
6: Contact Reliance Ventilation System on 0800-787-111. Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 18 years.
7: It's easy to see signage as a cost. The smart businesses see it as leverage. A clean, professional sign can bring in new customers every single day. If one extra job covers the investment, everything after that is upside. Speedy Signs design signage that builds credibility and drives action without ongoing fees. Ready for signage that pulls its weight? Call 0800 Speedy or visit speedysigns.co.nz and grow your business faster. That's 0800 Speedy or speedysigns.co.nz.
8: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो,
9: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
10: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेज, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 0927994939 और विजिट legalassociates.co.nz।
11: Oh my, oh my, Grey South Road, greater than ever.
12: South Auckland's buses just became a lot better.
11: Weymouth Road, way better buses.
12: With better bus routes, more frequent buses, more early morning and late night buses and more.
11: Woody, no worries, MIT, A-OK.
12: Search AT, Better South Auckland Buses for details.
11: Airport, got your transport.
12: Then turn up and go.
13: My Time with Kashika, brought to you by Kashika. Kashish Foods. Eat better, live better.
14: Office shout out.
1: आज ऑफिस शाउट आउट में आप गाड़ी चलाते हैं, ऊबर चलाते हैं और आपकी तरफ से ये शाउट आउट आया है और आपने कहा कि भाई कशिका थैंक यू सो मच फॉर प्लेइंग ग्रेट सॉन्ग्स और इतनी बातें जो आप करती हैं. अरे बहुत सारी करती हूँ है कि नहीं ये नहीं बोला बट कोई बात नहीं. थैंक यू सो मच. एंड आपके लास्ट फोर डिजिट्स लेट मी जस्ट गेट दैट राइट 2106. थैंक यू. सो ये आपके लिए जाता है ऑफिस शाउट आउट मेरी ओर से. और दूसरी बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, 3rd July के दिन भाई जितने भी गुजूज इन द हाउस आप सुन रहे हैं तो गुज्जू बाय नी एक्सचेंज ऑफर 6 यानी कि लेजेंडरी सिद्धार्थ रंधेरिया जो हैं एक जो यू नो गुजराती कम्युनिटी के लिए एक बहुत लव्ड कैरेक्टर है और इनकी कॉमेडी कमाल की होती है, वैसे ये आ रहे हैं 3rd July के दिन अपना सिद्धार्थ रंधेरिया गुज्जू प्रोडक्शंस का नया प्ले लेके एक एक्सचेंज ऑफर लेके जहाँ के एक सीरीज है मिसअंडरस्टैंडिंग्स की और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की. भाई इन सिचुएशंस पे और विटी डायलॉग्स पर आप डेफिनेटली अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कर सकते हैं दिस क्लासिक गुजराती रूमर ह्यूमर. और ये शो जो है पूरी फैमिली इंजॉय कर सकती है 3rd July के दिन 7:30 PM एट द विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर. सो आर यू रेडी? गुज्जू भाईनी एक्सचेंज ऑफर. सिद्धार्थ रंधेरिया के इस शो में आप डेफिनेटली जाना चाहेंगे. एंड मैं जब पहले आई थी पिछली बार तब मैं गई थी, मुझे प्ले का नाम अभी याद नहीं आ रहा बट येस आई रियली इन्जॉयड इट. जस्ट बींग अ नॉन गुजराती टू आई कुड रियली रिलेट टू हिम एंड सी हिज कॉमेडी हिज टाइमिंग्स और कुछ कुछ पंचेज मेरी समझ में आए थे. इट वॉज अमेजिंग.
13: टॉप हिट ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स बिल्ड योर ड्रीम्स.
15: हमारे सारे गाने ओरिजिनल हैं, काहे को पंगा लेने का. छोड़ दे आजकल जनता ना बहुत
16: पिक्चरस हो गई. इमेजिन हाउ द सॉन्ग वुड लुक इफ एली कुणाल एंड दिया डिड इट. आवर वर्जन. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. नाउ यू आर गेटिंग मी.
15: यू गाइस वांट ऑडिशन? या ट्रोल हो जाएंगे, मत करो.

0: The beat of Bollywood.
1: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
2: एक तो बात यह है कि ब्रांच नहीं है, लेकिन आपका ईस्टर वीकेंड का क्या प्लान है? अरे आपका स्केड्यूल आप चेक कर लीजिए, वो ये लॉन्ग लॉन्ग वीकेंड आपके लिए सॉर्ट आउट होने वाला है. डोंट मिस दिस, स्टे ट्यून्ड. ओके, सोच रही होगी ईस्टर के बारे में, क्या पागल है, क्या बात कर रही है. वेल, ऐसी ही कुछ बात है जो शेयर करूंगी. अभी नहीं, वेट कीजिए, इत्मीनान कीजिए. अब वैसे आपको याद दिला देती हूँ कि लेजेंडरी राहत फतेह अली खान आने वाले हैं हमारे ऑकलैंड में एक अनफॉरगेटेबल नाइट लेके 25 जुलाई के दिन एट द ट्रस्ट अरीना. और ऐसे में इनकी कैप्टिवेटिंग आवाज़ जो है, अगर आप सुनना चाहते हैं, जेके स्टार प्रोडक्शंस, गोट लाइव, ड्रीम्स एंटरटेनमेंट, सिमरन प्रोडक्शंस एंड शहजादा प्रोडक्शंस आपके लिए लेकर आ रहे हैं. टिकट्स आपको मिल सकती हैं dryticket.com के जरिए. एक डबल पास जीतने का मौका है, आपको मुझे कॉल करना है. मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी और उन सवालों के आप अगर जवाब सही सही दे देंगे तो समझ लीजिए मैं आपका नाम ड्रॉ में ऐड करूंगी फॉर अ डबल पास. इस गाने के ठीक बाद

0: Eat better, live better. लेकिन अभी आपको कॉल करने का वक्त आपके लिए रेडी हो चुका है, राहत फतेह अली खान साहब के लिए. आप इतना तो कर ही सकते हैं, कॉल मिला सकते हैं और उसके बाद मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी. बस उन सवालों का आपको जवाब देना है मुझे और आपका नाम मैं ड्रॉ में ऐड कर दूंगी. छोटे छोटे सवाल हैं, मोटे मोटे सवाल नहीं होने वाले. तो भाई 25 जुलाई के दिन इनका ट्रस्ट अरीना में एक कमाल का शो होगा और ये आने वाले हैं. तो कुछ सवालों के जवाब आपने देने हैं. आप मुझे कॉल कीजिए 0800 00 हम 0800 00 4866 पर और मैं कुछ आपसे चंद सवाल पूछूंगी, बस उनके जवाब आपको देने हैं मुझे, ठीक है. एंड मेरा टाइम शुरू हो चुका है अब और फटाफट लेट्स सी वी हैव अ फर्स्ट कॉलर ऑनलाइन. हम गुड मॉर्निंग, किन से बात हो रही है?
1: अमनदीप.
0: अरे वाह क्या बात है अमनदीप. मुझे आपसे सवाल जो पूछना है बहुत सिंपल है. पहली बात तो ऐसा कौन सा गाना था जो आपको भा गया उनका, जो आप उनके फैन बने?
1: राहत फतेह अली खान का.
0: जी जी
1: मैं सॉन्ग्स इतने सुनता नहीं, मुझे सिर्फ म्यूजिक ही पसंद है.
0: आपने फोन किया एंट्री लेने के लिए. कोई गाना बताइए.
1: हाँ
0: राहत जी का कोई गाना.
1: राहत जी का गाना
0: राहत फतेह अली. अच्छा तो अभी आपने ड्रॉ में कैसे भाग ले रहे हो? आप जाओगे उनका कॉन्सर्ट देखने, कोई तो गाना याद होगा राहत फतेह अली जी का.
1: म्यूजिक ही अच्छा लगता है तो
0: उनका. कहाँ के बिलोंग करते हैं वो, कुछ पता है आपको? कौन सी कंट्री?
1: पाकिस्तान से.
0: ओके एंड क्या वो बॉलीवुड के गाने गाते हैं?
1: हाँ बॉलीवुड में गाते हैं.
0: अच्छा कोई गाना नहीं याद आ रहा आपको इस समय?
1: मेरे को सिंगर्स के नाम नहीं याद, इवन कि मैं मूवीज भी कभी देखता हूँ तो नाम याद नहीं रखता मूवीज के, स्टोरी याद होती है.
0: ओहो ओहो बट आपको पता है कि ये आ रहे हैं, आपको डेट पता है कि कब आ रहे हैं? डेट कौन सी डेट?
1: 25th of July. तो
0: चलो सर मैं ऐसा करती हूँ, मैं आपका नाम ड्रॉ में ऐड कर देती हूँ. 3 सवाल मैंने रखे थे और आपने बता दिया, लेकिन हाँ अगली बार ध्यान से सुनिएगा. अगला गाना जो मैं लेकर आने वाली हूँ वो राहत साहब की आवाज में ही है. ओके सुनिएगा जरूर. थैंक यू बाय.
1: थैंक यू.

0: चाहे आप हम के दिन चैट बीस को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी, बसेस बिलबोर्ड्स ट्रेन स्टेशंस स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव कॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755. मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: If you've got an injury like a sprain or strain, staying active with gentle movement that's right for you can support your recovery and help you get back to what matters sooner. Find out more at acc.co.nz/recover sooner.
2: Step out of the cold and into the savings. It's the final day of Briscoe's massive midwinter sale and your last chance to shop jaw-dropping 60% off winter busters and peak store-wide savings. Shop Briscoe's massive midwinter sale, final day. See online for T's and C's.
3: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा। न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काऊ घी। जब खाने में होगी इतनी शुद्धता, इतना स्वाद, तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा।
4: मुझे भी।
3: कशिश प्योर देसी घी, अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड। खुशियाँ पकाए, खुशियाँ खिलाए।
5: Dad, I feel sick.
6: Yep, we've all been there, and so has Sea Legs. For over 55 years, Sea Legs has been answering distress calls and helping Kiwis prevent motion sickness for up to 24 hours. So, whether you're travelling by car, plane, boat, or walker, pack your Sea Legs and enjoy the journey. Sea Legs is a pharmacy medicine. Always read the label and use only as directed. May cause drowsiness. Avoid alcohol and driving. If symptoms persist, see your healthcare professional. Radiant Health, Auckland.
7: My Time with Kashika. Brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better. Dream Diary.
8: सो ड्रीम डायरी, इससे पहले कि मैं ड्रीम डायरी तक पहुंचूं, थैंक यू सो मच, आपने भी कॉल किया था, लेकिन अब ये मैं कल आपको दोबारा मौका दूंगी माय टाइम में जब आप कॉल करेंगे और आपका नाम ड्रॉ में ऐड करूंगी। बट ड्रीम डायरी की जब मैं बात करती हूं तो भाई कुछ ऐसी ड्रीम्स होती हैं जो आपके माइंड में रह जाती है। डोंट हेजिटेट, बट आई एम सो ग्लैड यू ओपनड अप। आपने ओपन अप किया, और जब आपने ओपन अप किया तो आपने एक पर्टिकुलर चीज़ जो थी आपने कही थी कि आपके साथ हुई है, और दिस इज़ बेसिकली इफ़ यू गो टू सी के क्या आपके साथ हुआ है उस समय। एंड मोस्टली जब लोग जब होते हैं, जब कुछ ड्रीम करते हैं तो वो ओपन अप नहीं करते हैं, लेकिन हाँ आपने ओपन अप किया और आपने बताया कि आपको ड्रीम आया था दैट यू आर प्रेग्नेंट। ओके, विच इज़ अ वेरी गुड न्यूज़, है ना। अगर आप कहें कि ये आपका ड्रीम जो है कुछ अलग है तो, बट डोंट वरी, इस तरह के ड्रीम्स बहुत लोगों को आते हैं। हो सकता है आप शायद खुद कोशिश जब करते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये ड्रीम कितना मीनिंगफुल हो सकता है, कितनी डिफरेंट चीज़ें इसके साथ हो सकती हैं। द इम्पॉर्टेंस ऑफ द ड्रीम इज़ दैट इट्स ओवरऑल हैविंग अ ग्रेट मीनिंग, है कि नहीं। और जब ये मीनिंग होती है, इट्स योर इमोशनल रिएक्शन, या प्रॉबेबली आपके अंदरूनी माइंड में कुछ कुछ खास चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे आपने ये ड्रीम किया तो यू वर्किंग हार्ड ऑन अ वेरी क्रिएटिव प्रोजेक्ट। ज़रूरी नहीं कि आप उस समय प्रेग्नेंट हुए तो आपका मतलब यह है कि आप आगे चल के प्रेग्नेंट होने वाले हैं। कुछ कोई आपका कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट है जिसे आप उभार कर लेके आना चाहते हैं, ये ड्रीम उस क्रिएटिविटी के साथ कनेक्टेड होती है। एंड वॉट इज़ द थिंग वॉट यू ट्राइंग टू एक्सपीरियंस एंड क्रिएट। जैसे कि एक बच्चा जब क्रिएट हो रहा होता है माँ के कोख में, उस समय वो एक क्रिएशन है वर्ल्ड के लिए, है ना। ठीक इसी तरह आपके माइंड में भी कोई क्रिएशन होगी शायद, जो आप पनप रही है माइंड में और उसको आप बाहर लेकर आना चाहते हैं। इट्स ऑलवेज इम्पॉर्टेंट अपने ड्रीम को किसी कॉन्टेक्स्ट के साथ ऐड करें व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग आवर्स, और ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको अच्छी लगती हैं, फ़र्क भी पड़ता है। ठीक है, चलिए। अमनदीप जी, आपका कॉल आया था और आपने कहा था आप गाने बहुत पसंद करते हैं, आपको सिंगर्स के नाम नहीं पता। अब ये गाना जो मैं बजा रही हूँ, लेट मी नो अगर आप इस गाने में पहचान पाते हैं। ये वही है राहत फतेह अली खान जी, जिनके लिए मैं बातचीत कर रही थी और आपका नाम ड्रॉ में मैंने ऐड किया फॉर अ डबल पास।

थ्रोबैक की तरफ हम चलते हैं। 1994 की एक ऐसी फिल्म है दिलवाले जो बहुत लोगों को पसंद आई थी। आई नो ये शाहरुख खान की दोबारा फिल्म बनी थी, लेकिन ये पर्टिकुलर सॉन्ग, ये पर्टिकुलर मूवी वाकई अच्छी थी। देखिए सुनिए।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: Valuable Homes wali kahani sunao na.
1: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year Master Builder Guarantee, awards pour in.
2: And award goes to Indelible Homes.
1: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favourite Master Builder.
3: Kahani of Indelible Homes.
4: Roadside drug testing is here. New Zealand police can now test drivers with a saliva test anytime, anywhere. This screens for the recent use of drugs, including cannabis, methamphetamine, MDMA, and cocaine. Learn more at police.govt.nz/drug driving.
5: Turn up the heat with a Subway 6-inch spicy meal from just $16.50. Get a new peri-peri style chicken sub or a Korean style barbecue steak sub, a drink and a cookie. Subway, good food, good value. Order yours now, T's and C's apply.
6: Happy is finding the sun and not moving all day long. Animates, we make happy happen.
7: As a baby, I was burnt in hot water.
8: At 5, I got burnt when I got too close to a gas heater.
9: When I was a toddler, my feet were burnt from a hot bath.
10: Serious burns happen every day over winter. Remember, this National Burns Awareness Month, everyday burn hazards are hotter than they look. Help the Burn Support Group support survivors and whānau. Text BURN to 4499 to make a $3 donation now.
11: Home. Time check. By Logic Finance Limited, changing lives with logic.
12: Morning, I'm Glenn Stewart with the latest at 11. A body has been found in the search for a missing 69-year-old woman in Christchurch. Police made the discovery in Dallington, a property on Gayhurst Road. The body is believed to be Adele, who was last seen leaving Eastgate Shopping Centre a week ago. The death will be referred to the coroner. Vulnerable species are expected to be most at risk, with the H5N1 strain of bird flu a step closer. Authorities are on alert here after it was discovered in Australia. Professor David Heyman says good biosecurity on farms will be absolutely key.
13: Also backyard chicken, anywhere where there's birds and wildlife, and trying to separate birds, wildlife and people. And also and our domestic animals as well, because they're at risk. And actually cats have been particularly sensitive to this virus.
12: A bus and car have crashed in central Wellington. No injuries are reported, but the Vivian and Taranaki Streets intersection has been blocked. And overseas, King Charles will release his tax returns at a first for the monarchy. Although legally exempt from most major forms of taxation, he's already agreed to pay them on income and capital gains. The details are due to be made public later on this week. In sport, football first, and All Whites captain Chris Wood wants more from their second Group G game at the FIFA World Cup today. They're taking on Egypt in Vancouver from 1 p.m. following their first up 2-2 draw with Iran.
14: Players dealt with the occasion extremely well, and now it's about backing it up and going again.
12: Earlier, Iran drew 0-0 with Belgium, who had a player sent off. Football updates brought to you by Hisense. And we're an hour away from the All Blacks squad of 34 being named for next month's tests against France, Italy and Ireland. That announcement being made just after midday from Fielding.
11: Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill.
0: Hum par shok suchnaye aap tak laate hai, Anne's Funeral Home and On-Site Cremations.
15: सूचित किया जाता है कि नागम्मा देवी के पति मोनिका प्रिया क्रिस्टीन और राहुल के पिता कृष्णमूर्ति आचार्य उर्फ बॉब हैंडीमैन की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई. अंतिम दर्शन के लिए कल आप 7 से 8 बजे तक जा सकते हैं. अंतिम संस्कार 24 तारीख को 3:30 बजे एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसेट क्रिमेशंस में कर सकते हैं जा सकते हैं माफ़ कीजिएगा अंतिम संस्कार 24 जून को 3:30 बजे एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसेट क्रिमेशंस में किया जाएगा. जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 02-11-77-11-81 पर संपर्क कर सकते हैं. सूचना दोबारा सुने. नागम्मा देवी के पति मोनिका प्रिया क्रिस्टीन और राहुल के पिता कृष्णमूर्ति आचार्य उर्फ बॉबी हैंडीमैन की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई. अंतिम दर्शन के लिए 23 जून यानी कि आप कल 7 से 8 बजे तक पहुंच सकते हैं. अंतिम संस्कार 24 तारीख को 3:30 बजे एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसेट क्रिमेशंस में होगा. श्रद्धांजलि और जानकारी के लिए 02-11-77-11-81 पर आप संपर्क कर सकते हैं. रीटा सरिता और पॉल की मां शनील प्रनील रिहा और सिमी की नानी बा मिशन हॉस्पिटल की भूतपूर्व कर्मचारी गोविंदम्मा की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई. अंतिम संस्कार आज दोपहर 1 बजे एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रीमेशंस में किया जाएगा। जानकारी श्रद्धांजलि के लिए 0220939749 पर आप संपर्क कर सकते हैं। सूचना दोबारा सुने, रीटा सरिता और पॉल की माँ, शनील प्रनील रिया और सिमी की नानी, बा मिशन हॉस्पिटल के भूतपूर्व कर्मचारी गोविंदा माँ की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई। अंतिम संस्कार आज दोपहर 1 बजे एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रीमेशंस में किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए 0220939749 पर आप संपर्क कर सकते हैं। सूचित किया जाता है कि ऑकलैंड के किरण सिंह, रोहिणी देव और उषा रानी की माँ, चार्ल्स स्ट्रीट सुबह के स्वर्गीय मनी राम की पत्नी चंद्रावती सिंह की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई। अंतिम संस्कार की सूचना बाद में दी जाएगी। श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए 19 रीगन रोड पापाटोटो आप पहुँच सकते हैं, नहीं तो 2799-3894 पर संपर्क भी कर सकते हैं। सूचना दोबारा सुने, सूचित किया जाता है कि ऑकलैंड के किरण सिंह, रोहिणी देव और उषा रानी की माँ, चार्ल्स स्ट्रीट सुबह की स्वर्गीय मनी राम की पत्नी चंद्रावती सिंह की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई। अंतिम संस्कार की सूचना बाद में दी जाएगी। श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आप 2799-3894 पर संपर्क कर सकते हैं। सूचित किया जाता है कि भूरा और झोकन लिमिटेड सुबह के स्वर्गीय जय नारायण झोकन की पत्नी रजनीश सेन, अंजनीश जयंत, मोहिनीश और रोविन जोकन की माँ, हॉटन स्ट्रीट सुवा फीदी के भूतपूर्व निवासी माउंट रॉस्कली की कमलावती जोकन क्योला की मृत्यु हो गई है। अंतिम संस्कार आने वाले सैटरडे के दिन 27 तारीख को 1 बजे वातु वाका सिमिट्री में किया जाएगा। श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए 0223326843 पर आप संपर्क कर सकते हैं। सूचना दोबारा सुने, भूरा जोकन लिमिटेड सुवा के स्वर्गीय जय नारायण जोकन की पत्नी रजनीश सेन, अंजनीश जयंत, मोहिनीश और रोविन जोकन की माँ, हॉटन स्ट्रीट सुवा फिजी के भूतपूर्व निवासी माउंट रॉस्किल की कमलावती जोकन क्योला की मृत्यु हो गई है। अंतिम संस्कार आने वाले 27 जून को 1 बजे वातुवाका सिमिट्री में किया जाएगा। जानकारी श्रद्धांजलि के लिए 0223326843 पर आप संपर्क कर सकते हैं।
0: शोक सूचनाएं वीकडेज पर सुबह 6 तथा 11 बजे, शाम 6 बजे और वीकेंड्स पर दोपहर 12 बजे पर प्रसारित की जाएगी।

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: The highs of 16, overnight temperature of 10. आज का forecast बताया जा रहा है, दिन सुहाना रहेगा लेकिन बादल बढ़ते चले जाएंगे. Chances है कि कुछ बारिश भी पड़ सकती है. South West की हवाएं धीरे धीरे कम होती चली जाएंगी. It feels like 15 degrees right now. 5:13 पर sunset बताया गया है.
0: My time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
2: Mid morning maza.
1: नमस्कार एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू पीपल. 22 जून का दिन है और आज किसी का बर्थडे एनिवर्सरी है, तो भी हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू. अच्छा, इसके साथ साथ मैं आप सभी को ये जो लॉन्ग वीकेंड आने वाला है उसकी प्लानिंग के बारे में भी पूछना चाहती हूँ. क्या प्लान कर रहे हो? मेरा प्लान तो फिक्स्ड है, मैं तो थोड़ा चिलैक्स रिलैक्स ज़रूर करना चाहती हूँ. सो आई विल बी आउट यू नो फॉर एट लीस्ट 5-6 डेज. देखा जाए तो यहाँ 5 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक आई विल बी 15 को वापस आऊँगी. तो मैंने अपना चिलैक्स रिलैक्स करने का टाइम बना लिया है, लेकिन आप लोगों ने क्या अपने लिए अपना टाइम वो निकाला या नहीं निकाला? भाई ऐसा है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने समय को किसी तरह से किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, उसका उपयोग करते हैं, क्योंकि समय बहुत ही ताकतवर चीज़ है. अच्छा होता है तो अपनी चलती है, और अगर बुरा होता है समय तो फिर सबकी चलती है, आप ही की नहीं चलती है कि नहीं. और इसी नोट पे कशिश फूड्स की तो चलती है, क्योंकि ओवर द वीकेंड आपने जाके शॉपिंग बहुत ज़बरदस्त तरीके से की होगी, और ऐसे में जब आपने शॉपिंग की होगी तो आपने कुछ सामान कशिश का खरीदा ही खरीदा होगा रैक्स पे से जाके, क्योंकि इनके दाम भी काफ़ी किफ़ायती रहते हैं. जब बातें करें हैं, बहुत कुछ जब होते हैं, हम आपको बताना चाहते हैं कि न्यूजीलैंड में ऐसा कौन सा इम्पॉर्टेंट जगह है डाइनिंग सीन जो एक बहुत ज़बरदस्त इंटरनेशनल मोमेंट लेकर आने वाला है. अच्छा ठीक है, इसके बारे में मैं आपके साथ बातचीत करूंगी, आपको बताऊंगी कि न्यूजीलैंड की ऐसी कौन सी सिटी है जिसका बेस्ट फूड सीन आप जानते हैं. अगर आपको पता है या आपको लगता है आप उसको वोट करना चाहते हैं 5599 पे, आप मुझे ज़रूर टेक्स्ट कर सकते हैं. बाय द वे, जितने लोगों ने अभी तक रिप्लाई दिया है, बता देती हूँ 6 वर्ड की स्टोरी अभी बाकी है दोस्तों, तो आप लोग 6 वर्ड की स्टोरी मुझ तक पहुंचा सकते हैं. रेस्क्यू मी रिसाइकल में क्या करना चाहेंगे, क्या सीखना चाहेंगे वो भी बताइएगा.

इनिंग का जो एक सीन है एक बहुत ही मेजर इंटरनेशनल मोमेंट लाने वाला है और कंट्री के फर्स्ट मिशलिन सेलेक्शंस जो हैं ये बहुत जल्दी रिवील होने वाले हैं जहां फ्रेश अटेंशन मिलने वाला है ऑन रेस्टोरेंट शेफ्स एंड डाइनिंग डेस्टिनेशंस अक्रॉस आउटरोआ। लेकिन इससे पहले कि वो अपना वर्डिक्ट दें, आप बताइए कि आपके हिसाब से बेस्ट फूड सीन कौन सा हो सकता है। कुछ लोगों ने जवाब दिया कि इसके स्केल्स को कंसिडर करते हैं, उनकी चॉइसेस बहुत सारी हैं और सिटी के हिसाब से ऑकलैंड, वेलिंगटन, क्राइस्टचर्च ये मेरे पास अभी लिख कर आए हैं, लेकिन आपके हिसाब से कुछ और है तो आप ज़रूर बताइए। लेकिन ये एक बहुत ही बिगेस्ट जो एक ऑफ़र होने वाला है वो है डाइनिंग का, फूड कोर्ट्स का, वाटर फ्रंट का, रेस्टोरेंट्स का, सबर्बन फेवरेट्स, नाइट मार्केट, पैसिफिक फ्लेवर, एशियन ईटरीज, बेकरीज, बार्स, नेबरहुड स्पॉट्स और ये सब कुछ होने वाला है। अदर पॉइंट ये कह सकती हूँ कि वेलिंगटन ने अपनी फूड के लिए एक आइडेंटिटी बना ली है और इसकी वेलिंगटन का एक रेपुटेशन है फॉर कॉफ़ी, क्राफ्ट बियर, वाइन बार्स और साथ साथ कॉम्पैक्ट रेस्टोरेंट्स, कोजी प्लेसेस जहां कोई जाके अच्छे मील्स खा सकते हैं। जहां तक मैं क्राइस्टचर्च को जानती हूं वहां पे एक मोमेंटम बिल्ड हो रहा है और कई सालों से एक फूड का सीन जो है वहां पे बढ़ता चला जा रहा है जहां नए रेस्टोरेंट्स, लेन वे बार्स, मॉडर्न बिस्ट्रोज और ब्रंच स्पॉट्स ग्लोबल फ्लेवर के साथ आप फेवरेट नेबरहुड में वहाँ पे पा सकते हैं। क्वींस टाउन की एक अपनी अपील है जहाँ वाइनरीज, डेस्टिनेशन रेस्टोरेंट्स, लेक साइड व्यू ये सब कुछ आप देखते हैं। एक रिजॉर्ट टाउन है जो कंट्री का मोस्ट टॉक्ड अबाउट प्लेसेस है फॉर अ स्पेशल मील। डनईडन की मैं बात करती हूँ तो बहुत ही लॉयल डिफेंडर्स हैं वहाँ के, जहाँ का सदर्न कैरेक्टर है चीज़ रोल से लेकर स्टूडेंट टाउन मैं कह सकती हूँ उसको। यहाँ क्लासिक्स हैं, सी फूड है, बेकरी है, डिस्टिलरीज है, कैफेज हैं, रेस्टोरेंट्स हैं। And probably the answer might not be for Napier, Nelson, या Pitoranga, Hamilton, Rotorua या New Plymouth. Around the country कुछ favorite spots जो हैं बढ़ते चले जा रहे हैं, but there are many ways to judge कि सिटी का फूड सीन क्या हो सकता है। And the best fine dining and the strongest food या coffee culture जो है with the most reliable cheap eats, ये bakeries ये सब कहाँ हो सकते हैं। बहुत जल्द आप तक ये बात पहुँचने वाली है। इस समय फिलहाल एक पोल चल रहा है जिस पोल पर लोग रिप्लाई कर रहे हैं। जैसे ही इसके बारे में पता चलेगा आई विल कम बैक टू यू अबाउट इट, बट यू कुड ऑल्सो सर्फ अबाउट इट टू सी मिशेलिन जो है, आप इनके नाम से अगर क्लिक करेंगे तो शायद आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप भी अपना ओपिनियन बिल्कुल दे सकते हैं। मिशेलिन सेलेक्शंस इज द नेम। 80s के रेट्रो गाने।

0: PFSL, providing the best home loan advice for the last 20 years. Google PFSL today. Amma's Food, 100% authentic and pure as mother's love. And Indelible Homes, your building experts known for subdivisions. Visit indelibleHomes.co.nz.
1: फीफा वर्ल्ड कप के लिए भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है. अभी देखो 11:30 के करीब बज रहे हैं और ऐसे में बस डेढ़ घंटे के बाद न्यूजीलैंड वर्सेस इजिप्ट जो है ग्रुप जी का वर्ल्ड कप में ये फीफा का मैच होने वाला है. वैसे एक बात और आपको मैं बता देती हूँ, फुल टाइम में बेल्जियम और ईरान एकदम निल पर थे और फुल टाइम में स्पेन और सऊदी अरेबिया में स्पेन की जीत हुई. तो भाई आज क्या होने वाला है न्यूजीलैंड के लिए, लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड एंड स्टे ट्यून्ड अपडेट्स के लिए on Hum, playing Bollywood's biggest hits.

0: 것.
1: कम्युनिटी में क्या हो रहा है जरूर आपको पता तो चल ही जाता है, लेकिन एक चीज जो होने वाली है, ऑकलैंड के फिजी इलेक्शन वोट रजिस्ट्रेशन जो है ये परसों से, यानी कि 24 जून से लेकर 26 जून तक 12 से 8 बजे तक मैंगरी सेंटर पार्क में होने वाले हैं। तो 101 रॉबर्टसन रोड मैंगरी में आप पहुंच सकते हैं, जहां पे फिजी इलेक्शंस ऑफिस जो है ये कंडक्ट करने वाले हैं सेकंड वोटर रजिस्ट्रेशन ड्राइव नॉर्थ आइलैंड की तरफ। साथ साथ ऑकलैंड रामायण संस्था रामायण का जो कथा है वो आपके लिए इस आने वाले 26 जून के दिन 7:15 बजे करने वाले हैं। ARST कम्युनिटी सेंटर मैंगरी में ये होने वाला है। प्रसाद का आयोजन भी किया जा रहा है। न्यूजीलैंड आर्ट एंड कल्चर चैरिटेबल ट्रस्ट आपके लिए श्री राम लीला लेकर आ रहे हैं, और स्टॉल इंक्वायरीज के लिए आप मास्टर अशोक से ज़रूर संपर्क कर सकते हैं ऑन 02117954 के ज़रिए। आपकी कम्युनिटी में भी कुछ खास हो रहा है तो bus@humfm.com पर आप हमें डेफिनेटली ईमेल कर सकते हैं।
2: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
3: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार।
4: क्यों, क्या हुआ?
3: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था, $20,000 चाहिए थे। बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत। एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स। फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में। गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है।
5: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री। कॉल 0800 LOGIC G, दैट्स 0800-564-424।
6: Turn up the heat with a Subway 6-inch spicy meal from just $16.50. Get a new peri-peri style chicken sub or a Korean style barbecue steak sub, a drink and a cookie. Subway, good food, good value. Order yours now. T's and C's apply.
7: Oh, don't slip up on a banana skin. Throw it in your food scraps bin instead of the rubbish, because every scrap counts. Tamaki Tūtaki, all together Auckland.
8: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है। जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है। हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है। वी आर ऑकलैंड्स वन स्टॉप फ्यूनरल सर्विस प्रोवाइडर वेयर रिस्पॉन्सिबल ऑप्शंस एंड प्राइसेस आर ऑफर्ड। एंड्स फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रेमेशंस, 11 बोल्डरवुड प्लेस, बीरी। कॉल 24/7 ऑन 0927-88-600.
9: My time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live

तो जब बात करें हैं रिसाइकल या रीयूज़ करने की, तो ऐसी कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद हम सोचते हैं इनका क्या करें। अब एक काम जो मैं करती हूँ वो बहुत डिफरेंट है। मैं क्या करती हूँ, एक दिन सारे प्याज काट लेती हूँ और फिर उसका टमाटर लेके अदरक लहसुन का पेस्ट लेके रेडी कर देती हूँ और पूरी की पूरी करी बना लेती हूँ। और फिर इनको करीज को मैं बना के भून वून के रख देती हूँ और फ्रीज करने के लिए रख देती हूँ। फिर इनको रीहीट करती हूँ और लगभग 8 से 10 मिनट में ये अपनी रिच खुशबू लेकर वापस आ जाते हैं। तो मैं इसी तरह से इनको रीयूज़ करती हूँ। घर में कभी कभी गेस्ट आ जाते हैं अनोइंगली एकदम से क्विक, तो उस समय जब ये फ्रोज़न करीज होती हैं ये बहुत हद तक काम आती हैं। आई एम वेरी श्योर आप में से कुछ लोग मेरी तरह इस बात को भी ट्राई करते होंगे। जब हम नौकरी करते हैं ना, काम करने जाते हैं, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं हम लोग हमेशा ट्राई करते हैं जो झटपट हमारे लिए एक रेस्क्यू बन जाती हैं। तो ज़रूर आप भी इसको ट्राई करें अगर अभी तक नहीं ट्राई किया तो।

तो भाई क्या बात है, आज का दिन भी बहुत ही खूबसूरत निकला और बहुत मज़ा आया आप सबके साथ बातचीत करके, एंजॉय करके। और पिछले घंटे में तो भाई वो ब्लैंक एक मोमेंट हो जाता है ना, जब आपसे कोई कुछ सवाल पूछता है आपको उसकी जवाब नहीं पता, बट वेरी स्मार्टली आंसर। भाई इसी तरह से अगर आप आगे भी, कल भी हम ऐसे ही कुछ करने वाले हैं कॉन्टेस्ट जिसमें आप भाग ले सकते हैं। बट चलो, ये मंडे की शुरुआत अच्छी हो गई, ब्राइट हो गई, और यही कह सकती हूँ कि कीजिए स्वीकार काशिका का नमस्कार। आज का दिन कहलाता है सोमवार, मेरी मुलाकात आपसे जो होगी वो होगी कल, दिन कहलाएगा मंगलवार, लेकिन आपके लिए आने वाला हफ्ता और भी रहेगा जोरदार, दमदार और शानदार, यही मेरी मनोकामना है। और इसी के साथ साथ मैं यहाँ से चलती हूँ, कल सुबह 10 बजे आपसे फिर मुलाकात करती हूँ। दिस इज काशिका साइनिंग ऑफ फ्रॉम द हम स्टूडियोज। लुक आफ्टर योरसेल्फ्स एंड स्टे वार्म।